0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
3: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशीता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, शुक्रवार 19 जून के इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर के बारे में बात करते हैं। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है। बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से एमबीसी चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। बजट भाषण के बाद विशेष कार्यक्रमों में विशेषज्ञ और हितधारक का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। महंगाई, आवास, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर जनता की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। बजट से लोगों को अपने दैनिक जीवन में सुधार और आर्थिक मजबूती की ठोस उम्मीद है। और वहीं पर पुलिस बल से जुड़े मुद्दों पर पुलिस फाइटर्स यूनियन ने वेतन, पेमेंट और प्रमोशन से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई है। साथ ही यूनियन ने पूर्व बजट परामर्श में शामिल न किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर आर्थिक क्षेत्र की नजर टिकी हुई है। वहीं एनजीओ और सामाजिक संगठनों को उम्मीद है कि बजट में जमीनी हकीकत से जुड़े ठोस सामाजिक फैसले किए जाएंगे। मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाने की अपील की है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं भी सुझाई हैं। मॉरिशस में उपभोक्ता संरक्षण के नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे, जिनमें कीमतों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने सब्सिडी और अधिकतम मूल्य

0: को दर्शाने के लिए नई लेबलिंग प्रणाली भी अनिवार्य की है। और लैग्रिमेंट सैंपियर में के इलाके में कल गुरुवार तड़के आत्सू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में दो कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद से भरे प्लास्टिक के कंटेनरों तथा थैलों में उगाया जा रहा था। आपको बता देते हैं कि बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपए आंका गया है। लैग्रिमेंट सैंपियर के मौके लेन के निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जारी है। और साथ में आपको हम बता देते हैं कुछ मैचों के बारे में। वर्ल्ड फुटबॉल कप, विश्व फुटबॉल कप 2026 की कुछ मैच जो खेले गए उनके स्कोर इस प्रकार हैं। कनाडा के साथ का आमना सामना हुआ कतर के साथ और स्कोर रहा कनाडा 6 और कतर जो है वो 0। और साथ में कल के खेले गए मैचों के स्कोर इस प्रकार हैं। चेक रिपब्लिक 1, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 1 और उज़्बेकिस्तान का आमना सामना हुआ कोलंबिया के साथ और कोलंबियन खिलाड़ियों ने स्कोर दागे 3, उज़्बेकिस्तान 1। गाना ने खेला पानामा के साथ, गाना 1 और पानामा 0। और एक बहुत ही दिलचस्प मैच रहा इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच। इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया के जो स्कोर है वो है 4-2, इंग्लैंड 4 क्रोएशिया 2। और हमारे अगले बुलेटिनों में हम अगले मैचों के बारे में इसको लेकर आएंगे। फिलहाल एक मैच अभी जारी है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में बात करते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस घटना में धुआं और काले तेल की बारिश जैसी स्थिति बनी, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी तथा बाद में मौसम सुहाना हो जाएगा। दोपहर बाद उत्तर उत्तर पश्चिम में कुछ बादल विकसित होंगे और थोड़ी देर के लिए बारिश होगी। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा सुबह के समय हल्की बहेगी तथा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यानी सेंट्रल प्लेटो पर 14-16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर।
1: RM3 रेडियो।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्यों ना हो हमारे चेहरे फूल से, क्यों ना हो हमारे चेहरे फूल से, हम तो बने हैं करबला की धूल से।

0: हुसैन।
1: मेरे अजीज सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी को नया हिजरी साल बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है ये नया इस्लामी साल हम सब के लिए सलामती, खैर व बरकत, आफियत और कामयाबियों का पैगाम बने। सामईन, आपकी समागतों की नज़र है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। वक्त का कारवां एक नए इस्लामी साल में दाखिल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, माह मुहर्रमुल हराम हमारे दरमियान साया फिगन है, वो माह मुकद्दस जिसकी अजमत को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमाया फरमाया, जिसकी फजाएं इबादत की खुशबू से महकती है और जिसके दिन इंसान को अपने रब के करीब होने की दावत देते हैं। सामईन, आइए इस मजलिस का बाकायदा आगाज कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बागौर वदब समात फरमाइए।

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। सामईन कराम, अभी आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, माह मुहर्रमुल हराम को अल्लाह तबारक व ताला ने हुर्मत वाले महीनों में शुमार फरमाया। ये महीना हर साल हमें शहदाए करबला, बिलखसूस इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन की याद दिलाता है। मैदान करबला में करबला वालों का इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करना रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए मशगले राहें।

0: मोहतशम सामईन, मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में नेकियों की फजीलत बढ़ जाती है। कुरान पाक की तिलावत, दुआ, जिक्र वस्कार, सदकात व खैरात और रोज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने का दरवाज़ा खुलता है। इस माह मुकद्दस में हर छोटा अमल गुनाहों से पाक होने और बुलंद दर्जात पाने का ज़रिया बन सकता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल रोज़े रमज़ान के बाद मुहर्रम के हैं। इस महीने में रोज़े रखने की बड़ी फजीलत है। सामईन, माह मुहर्रमुल हराम के ख़ास मौके पर आइए जामा मस्जिद पोटलवी के ख़तीब व इमाम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक ईमान अफरोज खताब समात फरमाइए।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अल-मुज्तबा, अम्मा बाद, फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीसुल गाशिया, सदकल्लाहुल अज़ीम, मुबल्लगना अर्रसूलुन नबीयुल उम्मीयुल मकीनुल मजीदुर रऊफुर रहीम। हम्दो सना के बाद सामीन मोहतरम, हमारा आज का मौजू है कि क़ियामत की होलनाकी से क़ियामत के दिन की उस सख्ती से नजात कैसे हासिल होगी। अल्लाह जल्ल मजहू ने क़ुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस तय्यबा में हमें ये बताया कि क़ियामत की होलनाकियों से नजात की शक्ल क्या होगी, हम कैसे बचेंगे, कैसे बच पाएंगे। सो सामीन मोहतरम, अगर आप उस दिन की होलनाकी से नजात चाहते हैं तो खुदा के लिए तक्वा को इख्तियार करें, परहेज़गार बन जाएं, गुनाहों से बचें, अपने आज़ा की उन तमाम कामों से हिफाजत करें जिनको अल्लाह जल्ल मजहू ने हराम करार दिया, जो हराम है। आपके हाथों से वो काम ना हो जो हराम है, कानों से वो ना हो जो हराम है, आँखों से बदनिगाही ना हो, वो निगाह और उस निगाह से अल्लाह की पनाह मांगें जो आपके लिए क़ियामत के अज़ाब का सबब बने। आपका चलना उन कामों की तरफ ना हो जो हराम के काम हैं, और उन तमाम हुकूक को बजा लाएं जिनको बजा लाने का अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है, जो फ़िक़्ह की किताबों में बहुत तफसील से मौजूद है, जिनका ताल्लुक़

हलाल व हराम से है, हुदूद व अहकाम से है। इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को इस तरीक़े पे तैयार करें कि फिर आपसे शरीयत का कोई मुतालबा, कोई डिमांड बाकी ना रहे। कोई फौत शुदा नमाज आपके ज़िम्मे ना रहे, कोई फौत शुदा रोज़ा आपके ज़िम्मे ना रहे, न कोई फ़र्ज नमाज आपके ज़िम्मे रहे। जो नमाज़ें मिस हुई, रोज़े मिस हुए, उन्हें रिप्लेस करें और ना हक किसी मुसलमान की गीबत न करें, न किसी से लड़ें, न झगड़ें, न किसी से दुश्मनी करें, न किसी से ना हक बुग्ज़ रखें। ये सारी चीज़ें अपने दिल से निकाल दें। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको जहन्नम के अज़ाब से बचाएगी। इस तरीक़े पे अमल करें कि तू अपने और अल्लाह के दरमियान हर किस्म के हक़ से और अपने और बंदों के दरमियान हर किस्म के हक़ से अपने दामन को साफ़ कर ले। इस तौर पर कि जो अल्लाह के हुकूक हैं, उसके नबी मुकर्रम के हुकूक हैं, उसे पूरी तरह बजा लाएं। वो हुकूक जो बंदों के हैं उससे भी मुकम्मल तौर पे अपने आप को और अपने दामन को साफ कर लें, उन्हें भी अदा करें। जब आप ऐसा करेंगे फसतकूनु मिन सालिहीन, तो इंशाअल्लाह आप सालिहीन की जमात में शामिल हो जाएंगे। और सालिहीन की जमात वो जमात है जो क़ियामत के दिन सुर्खरू होगी, कामयाब होगी, जो क़ियामत के हुलनाकियों से नजात पाएगी, जिन्हें अल्लाह जल्ल मज्दहू अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हर किस्म की तकलीफ़ से बचाएगा, जिन्हें नजात नसीब होगी, बल्कि उनके तुफ़ैल औरों को नजात नसीब होगी। अल्लाह पाक ने क़ुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में सूरह अल-क़ारिया में इरशाद फरमाया, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह, कि दिल दहलाने वाली, और क्या है वो दिल दहलाने वाली, और तूने क्या जाना कि क्या है दहलाने वाली। यौमा यकूनु नास कल फराशिल मबसूस, कल फराशिल मबसूस, जिस दिन आदमी होंगे जैसे पहले पतंग। व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ होंगे जैसे दुम की ऊन। व अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिन राज़िया, तो जिस की तोलें भारी हुई वो मन मानते ऐश में हैं। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी तोलें हल्की पड़ी, फ़उम्मुहु हाविया, वो नीचा दिखाने वाली की गोद में है। वमा अदरा कमा हिया, और तूने क्या जाना कि क्या नीचा दिखाने वाली। नारुन हामिया, एक आग शोले मारती। ये सूरह अल-क़ारिया है, मक्की सूरह है, इसमें एक रुकू है।

0: और 8 आयतें हैं, 36 कलमे हैं, 152 हरूफ हैं। इसमें अल्लाह पाक ने क़ियामत के उन होनलाकियों का, होलनाकियों का, हैबत का, हौल का तस्किरा फरमाया है। अल-क़ारिआ, ये क़ियामत के नामों में से एक नाम है। फिर अल्लाह पाक ने इसमें दोनों तरह के लोगों के अंजाम को बयान किया, उनका भी जो सालहीन है और उनका भी जो बद हैं, जो बुरे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुनाह में बसर की, जो दुनिया से इस हाल में गए कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ थे। सो इस सूरा को उसके तर्जमे के साथ, उसकी तफसीर के साथ पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि क़ियामत के दिन हैबत की क्या कैफियत होंगी, जिसमें दिल लरस जाएंगे, दिल कांप उठेंगे। उस दिन के आने से पहले खुदा के लिए इस दिन के लिए तैयारी करें, गफलतों से निकल आएं। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसमें अल्लाह को और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद।
1: मोहतशम सामईन, उर्दू प्रोग्राम सबा अल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। इससे पहले आपने जामा मस्जिद पोटलवी के ख़तीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक आलिमाना बयान समात फरमाया। बिलयकीन माह मुहर्रमुल हराम हमें इमाम आली वक़ार वारिस करबला इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन के हक व बातिल के पैगाम से रोशनास कराता है। सामईन अब ये नाज़ शरीफ मुलायज़ा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, माह मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख को अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम में से, अल्लाह पाक के दोस्तों में से एक अजीम वली कामिल सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैदना अस्सैयद अस्सनद पीर जमाल शाह बिन मुर्तुज़ा रहमतुल्लाही का विसाल हुआ था। आप रहमतुल्लाही सन 1848 में हिंदुस्तान से मॉरिशस इस गरज से आए कि मुस्लिम कौम की रहनुमाई, उनकी इस्लाह और रूहानी तरबियत हो। जब आपकी वफ़ात हुई तो उस वक्त आप रहमतुल्लाही की उम्र मुबारक 45 साल थी। आपने आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर की कि आप जामा मस्जिद पोटलवी के इहाते में दफन होना चाहते थे। बिलाखिर हज़रत सैयद पीर जमाल शाह रहमतुल्लाही का मज़ार जामा मस्जिद पोटलवी के इहाते में मरजाए खलाइक है, जहां अक्सर व बेशतर अकीदत

मोहतरम सामईन, इसी आखिरी कलाम के साथ सबाल खैर नशरियात अपने अख्ताम की जानिब रवां दवाहें। अल्हम्दुलिल्लाह, आमद मुहर्रमुल हराम के ख़ास मौके पर आज हमने इस माह मुबारक के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस महीने के फ्यूज़ व बरकात से मालामाल फरमाए। सामईन, अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: யாரு?
1: தாய் கிழவி.
0: ஏன் கோச்சிட்டு போதியா?

भक्ति में शक्ति। प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है जहां भक्ति वहां परमात्मा, और भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे मन में, मनुष्यों के मन में जो भी कुविचार हैं वो सभी भक्ति द्वारा ही, भक्ति के माध्यम ही मिट जाते हैं। आइए भक्ति और आस्था के साथ इस कार्यक्रम में हम भाग लेते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना के साथ।

श्रोताओं शुक्रवार माता रानी को समर्पित है। माँ के चरणों में शत शत नमन है। वह माँ है जो सृष्टि की शक्ति है। वह माँ है जो भक्तों की रक्षा करती है। वह माँ है जो अंधकार में भी आशा का दीप जलाती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा शक्ति, साहस, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। भक्त उन्हें जगदम्बा, अम्बे, भवानी और शेरावाली माता के नाम से पुकारते हैं। माँ का स्मरण मन में आत्मविश्वास

विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता का संचार करता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।

प्रिय श्रोताओं, कहते हैं संसार के हर दरवाजे हर द्वार पर शर्तें होती हैं, लेकिन परंतु माँ के सच्चे दरबार में केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। सच्चे दरबार की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि वहाँ कितने दीप जलते हैं, अब तो यह है कि वहाँ से कोई टूटा हुआ मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता। जब मनुष्य संसार से हार जाता है, जब अपने भी पराए लगने लगते हैं, तब आँखों में आंसू और हृदय में पीड़ा भर जाता है, तब माँ

का सच्चा दरबार उसे गले लगाता है। माँ कहती है, मेरे बच्चे, संसार तुझे ठुकरा सकता है, अपितु मेरी चौखट तेरे लिए हमेशा खुली रहेगी। जिसने भी माँ को सच्चे मन से पुकारा है, माँ की कृपा उन पर अवश्य रहती है।

श्रोताओं कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है तब वास्तव में एक नई आरंभ जन्म लेती है। इसलिए तो कहा गया है अंत ही आरंभ है। यह केवल एक वाक्य नहीं अपितु माता रानी की शक्ति का सबसे बड़ा संदेश है। जब महिषासुर के अत्याचारों से धरती स्वर्ग और मानव लोक त्रस्त हो गए

तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। वह शक्ति थी माँ दुर्गा। जहां सबको लग रहा था कि अब सब समाप्त हो जाएगा, वहीं से एक नए युग का आरंभ हुआ। यही माँ की लीला है। जहां मनुष्य हार मान लेता है, वहां से माँ अपनी कृपा की द्वार खोल देती है। कहा जाता है कथा अनुसार, कहा गया है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। वह अत्यंत श्रद्धा से हर शुक्रवार माँ संतोषी और माँ वैष्णव माँ लक्ष्मी का व्रत करती थी। उसके घर में गरीबी थी, भोजन की कमी थी, लेकिन उसके विश्वास में कभी कमी नहीं आई। लोग उसका उपहास उड़ाते थे, कहते थे व्रत रखने से क्या होगा, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती है, जब माँ का हाथ सिर पर हो, उनकी कृपा सिर पर हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। एक दिन उसकी परीक्षा का समय आया, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों के चेहरे पर उदासी थी, फिर भी उसने माँ के सामने दीप जलाया और कहा, माँ आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपका विश्वास है। कहते हैं उसी शाम एक अजनबी उसके घर आया और काम का अवसर देकर चला गया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी, घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। यह चमत्कार धन का नहीं था, विश्वास का था, उसकी आस्था का था। माँ की शक्ति क्या है? माँ की शक्ति केवल राक्षसों का संहार करने में नहीं है, माँ की शक्ति है टूटे हुए मन को फिर से खड़ा करना, निराशा में आशा जगाना, अंधकार में प्रकाश दिखाना और हार के बाद जीत का मार्ग बनाना। प्रेम से बोलिए जय माता दी।

शक्ति में शक्ति। चलिए श्रोतागण, आशा है आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। पूजा की ओर से आप सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: एक बार फिर नमस्कार निर्मनी श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज बजट डे है और पूरे देश में उम्मीदों का माहौल है। घर परिवार कामकाजी लोग उद्यमी और सेवानिवृत्त नागरिक सभी बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने के लिए ठोस उपायों की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित पूर्व बजट परामर्शों में भी सामने आई है। 1 मई के बाद से प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम लगातार विभिन्न सार्वजनिक बयानों में पिछली सरकार से विरासत में मिली कमजोर आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भू

0: राजनीतिक अनिश्चितताओं का असर भी बना हुआ है, जिससे ईंधन की कीमतें, समुद्री फ्रेट और आयातित मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। आपको हम याद दिला देते हैं कि आज शुक्रवार को सभी की निगाहें राष्ट्रसभा की ओर टिकी हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम आज शाम 5 बजे अलियांस डू शांजमा का दूसरा बजट पेश करेंगे। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच घोषित होने वाले उपायों का जनता और आर्थिक क्षेत्र के हितधारक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज आपको बता दें एक बार फिर कि बजट 2026-2027 के भाषण का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC प्ले पर देख सकेंगे। क्रेओल मॉरिशियन में समकालीन अनुवाद MBC 2 RM1 और AM1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3 और RM3 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि RM2 पर हिंदी अनुवाद। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महीन सिरतन, ओनावो मोरिस के पैट्रिक बेलकू तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। साथ ही आपको याद दिला देती हैं कि विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। आज मॉरिशस की राष्ट्रसभा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम बजट पेश करेंगे, जो कि अपनी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत वे करेंगे। इससे पहले आज सुबह कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने RM1 के मॉर्निंग इंटरव्यू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनसे बजट की दिशा को लेकर सवाल पूछे गए कि यह आम जनता के लिए राहत देने वाला होगा या फिर कठिन फैसलों वाला। साक्षात्कार में नई पेंशन व्यवस्था की समीक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। मंत्री ने इस विषय पर सरकार के विचारों और संभावित उपायों पर अपने विचार रखे और कहा कि सभी को जिम्मेदाराना रवैया से बजट को सुनना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के बढ़ते प्रकोप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। प्रयोगशाला परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस से 875 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 15 मई को महामारी घोषित किए जाने के बाद से इस बीमारी के कारण 202 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स संबंधी जानकारियों की ओर, जिसे पेश करेंगे गिरीश। गिरीश, स्पोर्ट्स संबंधी जानकारी आपके साथ।
1: धन्यवाद आशिता। जैसे आपने कहा, अब बात करें फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल की खबरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत कल रात चेक रिपब्लिक और दक्षिण अफ्रीका का 1-1 का ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप बी के मैच में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-0 से हराया। आज सुबह 2 बजे खेले गए मैच ग्रुप बी में कतार का सामना हुआ कनाडा के साथ, स्कोर रहा 6-0। और वहीं ग्रुप ए में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। चलते चलते आज के आने वाले मैच के बारे में आपको बता दें कि आज रात 11 बजे ग्रुप डी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, जिसका सीधा प्रसारण आप MBC प्ले पर देख सकती हैं।
0: तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। Choc Samachar Sonier, Réservoir Road Sottise, Grand Bémé, Réservoir Road Sottise, Grand Bémé, Bayalis Sal, qui, 42 years old, qui, Shrimati Sumita Ramchan, Shrimati Sumita Ramchan, Pedashram Bandhu, aur jin Shweta ke naam se bhi log zyada jante the, ki mrityu ho gayi hai unki arthi, कल सुबह 10 बजे उनके पति रिशा रामचंद के घर सोची गौम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम्बे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM सवान रोड नुवेल फ्रांस में। सवान रोड नुवेल फ्रांस में 66 साल के 66 years old के श्री गौकरण मंगरा, श्री गौकरण मंगरा जिन्हें कस्तेलो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: RM3 Radio.

0: you're listening RM Free Radio.
1: सुहाना सफर। दिन के 12:11 हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री पर जब सुहाना सफर यहाँ शुरू होता है ना, तो बस यूँ कह लीजिए हमारी जिंदगी एक नई मोड़ ले लेती है। यहाँ पे एक ऐसा सफर हम तय करते हैं जहाँ ना हम किसी को टेंशन देते हैं ना किसी की टेंशन लेते हैं, बस मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और गाने गुनगुनाते हैं। तो हमारा टिकटॉक थोड़ी देर में लाइव होने वाला है, जुड़िएगा जरूर।

सुहाना सफर, सुहाना सफर, सुहाना सफर कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। और 12:16 आज है 19 जून। तो आज अगर आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और चलिए इसी के साथ अभी समय हो गया अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। और आपकी पसंद के कुछ गाने जो आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में उसको शामिल करें, तो कोशिश करेंगे, ज़रूर वादा नहीं करेंगे लेकिन जी हमेशा हम यही करते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ गए हैं, विमी का स्वागत करते हैं। और साथ में अभी बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनका भी हम स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है। और हो सकता है कि आज फ्राइडे है, हो सकता है कि आज आपके कुछ प्लान्स हो। कई सारे लोग हैं जो समंदर के किनारे निकल जाते हैं। रेशमा राम की सुन का हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। कुछ लोग हैं जो घर पर रहना पसंद करते हैं, कुछ लोगों का घर का काम काज होता है। हाय परी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और फ्राइडे उनके लिए स्पेशल होता है। आपके लिए फ्राइडे कैसे स्पेशल होता है, आज गाने की फरमाइश नहीं करेगा कोई, आज सिर्फ हमें ये बताइए कि आपके लिए फ्राइडे अगर स्पेशल है तो वो स्पेशल क्यों होता है, कैसे होता है। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए। और यहाँ पर नंबर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, 4028070, कल्याणी हरी जी प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। मिस्टर नूरुद्दीन बुराही जो फ्रांस से हमें सुन रहे हैं उनका भी स्वागत है। और फिया आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करती है। और जैसे मैंने कहा कि आज फरमाइश नहीं होगी, आज हमारे पास बहुत सारे गाने हैं जिसकी फरमाइश पहले हुई है। और इसके चलते क्या होता है कि जब हम पुरानी फरमाइशी गाने जो होते हैं वो छूट जाता है कहीं, तो हमारे जो श्रोता है वो भी कहीं ना कहीं उनका दिल टूट जाता है। तो आज कोई फरमाइश नहीं करेगा, आज सिर्फ हम गाने सुनेंगे, झूमेंगे और अपने इस फ्राइडे को बनाएंगे खास स्पेशल। चलिए यही गाना हम जोर शोर से चला तो रहे हैं और गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुवैत से खान साहब, कैसे हो आप भाई? उनको हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है और इतने दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू सो मच। परी कहती है आज फ्राइडे है तो चिपूरी बनाए हैं, खाओगी? हाँ बना फिर। अनुष्का आपके लिए गाना।

0: सुहाना सफर
1: प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। दिन के 12:25 हुए हैं, पुराने गीतों का प्रोग्राम है यहाँ पर, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के कोने कोने से निकल कर आ जाते हैं बस हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, तभी तो ये सफर बनता है सुहाना, है ना। चलिए तो अगला गाना हम केशन कुमार के लिए, करुणा भोला के लिए डेडिकेट करेंगे। जिमी की तरफ से राखी गणेश जो बैंड में काम कर रहे हैं, प्रेमा खाइतू, मीनू अथवाल फ्रॉम जर्मनी, हाई मीनू, जर्मनी वाले कैसे हो, बाकी के लोगों को भी बोल दो शामिल हो जाए प्रोग्राम में। संगीता सुखारी, वी हैव माधुरी, अंजी आमगम, वी हैव लविन एंड धीरज दयादीन, साथ में निकिता, राकेश, वी हैव सरुजा की तरफ से गाना, सबीना, शैला और शिमला के लिए, साथ में यहाँ पर संजय गणेश हमारे साथ हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो साहिल, कैसे हो आप, ठीक हो? चलो जी, नेक्स्ट गाना बबीता बुलाकी के लिए, और यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा वो राजू के लिए, ये भी जर्मनी से है, हाय, लगता है जर्मनी वाले

0: या काफी पसंद करते हैं हमारे पुराने गीतों को. ठीक है, तो नेक्स्ट गाना आपके लिए राजू, और यहाँ पर शामिल ही हमारे साथ हैं, थैंक यू. और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए तरन दौलत. और वैसे तो हम आज फरमाइश नहीं ले रहे हैं, फरमाइश जो होगी वो मंडे को होगी, लेकिन फिर भी हम सारे गाने नोट करके रख रहे हैं मंडे के लिए. ठीक है, अभी के लिए अगला गाना होगा फर्स्ट सिस्टर सबीना, और नेक्स्ट गाना होगा लीना के लिए जो बेलरोज से साथ दे रही हैं. वहीं पे शिमला दियाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ है तनवीर खालिद. कैसे हैं जी, सब बढ़िया, सब ठीक? नीरू रामसन, नमस्कार आपको, स्वागत है प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी जी. और इसी के साथ पूजा महादाव, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं. बृंदा सोहन फ्रॉम इटली, ओह मेरी तितली, चलिए इसी के साथ गाना आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं. और यहाँ पर इंदिरा मुताव सिंह जी हमारे साथ है, एंड सब ने विश किया तो आप भी विश करें जी, हैप्पी म्यूजिक डे. चलो भाई, म्यूजिक नहीं तो हमारी लाइफ में और कुछ होगा ही नहीं, है ना. रेहा आपका स्वागत है प्रोग्राम में, एंड पूजा थैंक यू सो मच, बहुत सारा ब्लेसिंग भेजा है, हर हर महादेव आपको भी. और इसी के साथ नेक्स्ट गाना, जिनको प्यार करना नहीं आता उनको प्यार करना सिखा दे.
1: नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: Utrobe, utrobe, ikasku, kamizna.
1: Ikipa, ikipa, ku, ku, ku, baba.

0: ना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मैसेज भेजे। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं इनकी ओर। और यहाँ पर हम किसको हेलो कहें, यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और माधुरी कहती है कि कोई भी गाना माधुरी के लिए विनीता के पसंद का ज़रूर। वीर सिंह नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। और गाना होगा अनिल जी आपके लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो गाना अभी चला, या परी कहती है हमारी दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे, भाई कभी नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सागर जी नमस्कार, आपका प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। और वहीं पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश और प्रकाश, उनके लिए गाना होगा मदीहा, विमला, दैवी, राधिका नरकू, सुखलाल, साथ में थीता विरामा, वी हैव नजीमा गोवर्धन, राज उनकी गर्लफ्रेंड रजनी के लिए गाना मांग रहे हैं, केशनी जो कि फिजी आइलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ऋतिक, साथ में विकास, आयशा और वीना, मनीता और हमारे साथ है रोहन, हाय। और यहाँ पर रेना, हाँ, जुमन भी हमारे साथ हैं, इतनी ब्लेसिंग्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। अवनीश, सुदेवी, वुदन, जाकलजा, साथ में हमारे साथ हैं कविता, अन्नू, सुनीता भगवन, सभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अभी अगला गाना जो होगा ये हम आपके लेकर आए हैं, फिल्म का नाम है विश्वास। चलिए हम भी आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ बस प्यार ही प्यार हो और एक दूसरे का साथ हो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं पल जिसमें सुकून मिले इंसान को। कुछ गाने ना सुकून पहुँचाते हैं दिल को, जैसे कि ये गाना। चलिए तो ये गाना पोते रवि के लिए जिनका जन्मदिन है, बहुत सारा प्यार है पूरे परिवार की तरफ से इंदिरा जी। और बाकी हमारे दोस्त को पता है कि अगर आप डेडिकेशन करना चाहते हैं तो जरूर हमें फोन कर सकते हैं 4028 07 0 पर।

0: मुझे जीवन साथी प्यार ही प्यार हो जहां, प्यार तो यहां पर भी है बहुत सारा। अनिष्ठा राम तोहल जी 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद अभी घर लौटी है, मॉरिशस लौटी है, कहती हैं कि बेटे और बहू की याद आ रही है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: तो चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट गाना आपके लिए डेडिकेट करते हैं और आपकी फैमिली के लिए यही गाना हम डेडिकेट करते हैं, साइलेश के लिए और अफीजा के लिए भी जो साथ दे रहे हैं हमारे। और यहाँ पर माधुरी जी कहते हैं आज मेरे छोटे भाई ऋषि का बर्थडे है तो उनको हैप्पी बर्थडे। हेलो जी वीटी, कैसे हो आप? इक्वायल से देवान, श्रीता, श्वेता, साथ में है शर्वी, शालिनी और मिशित, उनके लिए गाना होगा। शवी को बहुत सारा प्यार, मुकाश टू यू ऑल्सो। धनंजय जी नमस्ते, कैसे हो आप? चलिए तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए निश्ता, एशना और अमद के नाम, रेहाना, आनिया और ममफिया के लिए भी संजना की तरफ से। और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं टू लेट ब्रदर राजेश, जो आज हमारे साथ तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे दिल में है। ये है ज्योति, रवि, निखिल और पूरी फैमिली की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर गाना होगा कौतिक सुबिता के नाम, जो साथ दे रही है ललिता। आओ ललिता, आ गई। चले जी, यहाँ पर अगला गाना मेरी बहन जोशीला, उनके लिए, साथ में बेटी अनसुया, तेशना, फैब्रिस और निखिल के लिए प्लीज़ ज़रूर। और यहाँ पर हमारे साथ हैं सरोज रग, जो कि साथ दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको साथ देने के लिए। बहन बीना का नाम ले लो नहीं तो वो मुझे मार देगी, ये है परी, कहती है भाई हमेशा सिर्फ तेरा ही नाम सुनाई देता है रेडियो पे, हमारा नाम का क्या हुआ। चलो भाई बीना जी आपके लिए। चलो नेक्स्ट गाना बेटा लवीश के लिए संजना की तरफ से, ज्योति और सुबह हमारे साथ हैं, उनके नाम भी।
2: RM3 रेडियो, रेडियो, रेडियो।

दिन के 12:55 हुए हैं अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 1 बजे के समाचारों की ओर और फिर उसके बाद हमारे आपकी मुलाकात फिर हो रही है ये गाना हम नंद के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में यही गाना जाएगा आप सभी लिसनर्स के लिए माधुरी जी चलिए जी साहिल के लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं नासिम कैसे हो आप हेलो विशाल थैंक यू सो मच आपको भी बना पेची और साथ में ये गाना हम चलिए सरोज जी आपके लिए डेडिकेट करते हैं और तमाम लिसनर्स के लिए जो ड्राइव कर रहे हैं

0: घड़ी मिलाते चले समय दिन के एक बजा है।
1: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज शुक्रवार को सबकी निगाहें राष्ट्रीय सभा पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम शाम 5 बजे से अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। आज सुबह कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल और M1 पर सुबह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उनसे विशेष रूप से इस बजट के दिशा के बारे में पूछा गया। इस इंटरव्यू के दौरान नई पेंशन प्रणाली पर फिर से गौर करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो आर्थिक रूप से कठिन माने जा रही इस दौर में घोषित किए जाने वाले कदमों का जनता और आर्थिक ऑपरेटरों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आप बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर देख सकेंगे। MBC 2, MBC 1 और AM1 पर क्रियोल मॉरिशियन पर एक साथ अनुवाद उपलब्ध होगा। बजट भाषण का अनुवाद भोजपुरी में MBC 3, MBC 2 और MBC 3 पर भी किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM1 पर एक विशेष कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व वित्तीय सेवा और सुप्रशासन मंत्री महेंद्र सिरतन, ऑनाफो मोरिस से पैट्रिक बेल्को और अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 में घोषित मुख्य कदमों का विश्लेषण इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे और चर्चाएं होंगी। तो उम्मीद बहुत है। जीवन यापन की लागत, आवास, खरीद शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि, ये ऐसे सभी विषय

0: रहे हैं जो मॉरिशस के लोगों को चिंतित करते हैं। जनता अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों की अपेक्षा कर रही है, जबकि आर्थिक सेक्टर के प्रतिनिधि उन कदमों पर नजर गड़ाए हुए हैं जो विकास को गति दे सकते हैं। वहीं गैर सरकारी संगठन एनजीओस और संघ समाज के प्रति अधिक संवेदनशील घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं जो जमीनी वास्तविकताओं का समाधान कर सके। विदेश स्तर पर जापान की राजधानी टोक्यो के एक प्रारंभिक प्राथमिक स्कूलों में 300 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मौजूद थे। वहां पर आग लग गई। दमकल कर्मियों और स्कूल प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Circonstance Saint-Pierre, 54 साल की 54 years old की बीबी अमीना कोरिंडन इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम गुलब। उनका जनाजा आज दोपहर बाद 2:30 बजे उनके पति कोरिंडन इंतियाज के मकान सैंपियर से निकालकर दफनाने के लिए सर्कमस्टांस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। रिजर्वर रोड सोटीज ग्रांबे में 42 years old की सुमिता रामचरण की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बंधु। लोग उन्हें श्वेता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के बल्कि कल शनिवार को सुबह के 10 बजे उनके पति ऋषाल रामचरण के मकान कांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांबे ही की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सावान रोड नुवेल फ्रांस में 66 साल की 66 years old के श्री गौकरण मंगा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। ब्रांच रोड न्यू क्रोव में 75 साल की 75 years old की दाऊमती ओगी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे विशाल ओगी के मकान न्यू क्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओगी लेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए जी, सुहाना सफर के जितने भी हम सफर साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1:10, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गाने जो हैं डेडिकेट करते हैं इन सभी लिसनर्स के लिए, और आप हैं नंद ऋषि जो कि अभी हमें सुन रहे हैं, वैदेही, शाहिद इकबाल, दीप्ति, जय सिंह, केशनी, पूजा धानवी और हेशान के लिए, भाई ओम प्रकाश के लिए, अखिल जिनका आज बर्थडे है, मम्मी देवंती, अनिष्ठा और साथ में मन की फैमिली की तरफ से, जीतन दुलवा, तरुण है दुबई से साथ दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में यहाँ पर साउल साहब हमारे साथ हैं, और कनाडा में हमें दीक्षा सुन रही हैं। साकुन कहती हैं कि मेरी बेटी सुन रही हैं आपको वहाँ पे, तो आपकी बेटी दीक्षा और सभी फैमिली मेंबर्स के लिए दीपक बिहारी का स्वागत है। कल अवनीश और वीश का बर्थडे था, उनके लिए गाना होगा वी हैव हंस वी, मोहिनी, प्रेमिला जद्दू, सूरज, अनुष्का, अमृता सुमारू, माला भवरव, साथ में नास्ती है फ्रांस से विमला, रमन, कोमल, प्रणय, रोहित फ्रॉम सुरीनाम, और सलोनी गयादीन के लिए गाना होगा। और वहीं पर वैदेही जी हमें सुन रही हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हमें सुन रहे हैं, साधना जी, आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए नेक्स्ट गाना होगा। वैसे रोहित कहते हैं कि यहाँ तो 6:10 हुए हैं और यहाँ पर 1:11। तो चलिए इसी के साथ एक खूबसूरत सफर में निकले हैं हम।

आप और इस सफर को सुहाना बनाता है आपकी बातें। तो टिकटॉक पे अगर आप चाहें तो हमारे साथ लाइव जुड़ सकती हैं। दिल की बात कभी-कभी लबों पे आ ही जाती है और हंसते-हंसते आंखें कभी रो जाती है, लेकिन आंसू अगर खुशी के हो ना तो चलता है।

0: दिल की बात लब पर आ ही जाती है जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो इतना आसान भी नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ और अगले गाने के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्यार से लेकर आए हैं जो गाने आपके नाम, तो बड़े दिल वाले फिल्म का ये गाना कैसा रहेगा? ये गाना हम बेबी जेन की तरफ से उनके फैमिली और विहान के नाम डेडिकेट करेंगे। नेहा लीना जुड़िया हैं काथो से उनके फैमिली के लिए, साधना विमला देवी और अंजनी जी जो हमें सुन रही हैं। हेलो जी आंटी जी, कैसे हो? प्यारे भाभी और भाई के लिए, अभी आज मैरिड हुई हैं, उनकी सिविल मैरिज हुई है, तो उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। ये है रविशन की तरफ से।
1: तुझ

0: RM3 Radio.
1: जी है, कैसा गाना जिसे सुनकर सब झूम जाते हैं, और इसीलिए तो हम ऐसे गाने आपके लिए लेकर आते हैं। नीलिमा की तरफ से उनके हस्बैंड राम के लिए, जिनका बर्थडे 21 जून के है, क्या बात है, म्यूजिक डे। अनुष्का कहते हैं उनके पति कैलाश पति के लिए गाना हो जाए जरूर। और यहाँ पर आ गई है आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अभी आई है, वैसे जैसे आती है वैसे ही भाग जाती है ना। शमिला चुनीलाल, आपका भी स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। सब यहाँ पर चॉकलेट की बात कर रहे हैं और मिठाई की बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम भी कुछ अपनी तरफ से ले आते हैं, ज्यादा नहीं, गाना सही। आशा अनुषा रक्तू आपका स्वागत करते हैं। आशा, मैं जानती हूँ आप काम पे हो, तो भूख आज आपको। बस हमारे गाने एंजॉय करते रहिए और जिंदगी में मिठास भरते रहिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर प्रोग्राम है सुहाना सफर। और सुहाना सफर में जो हम सफर बने हैं साधना मुकेश लालमाटी से मनोज फ्रॉम हॉलैंड कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, इसीलिए तो हम गीतों के जरिए थोड़ी ठंडक आप तक पहुंचा रहे हैं। यहीं पे हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ हमारे गाने आपके दिल तक ज़रूर ठंडक पहुँचाएंगे। और साथ में यहाँ पर जो हमारा अगला गाना होगा गीता कालीचंद जी, आपके लिए नमस्ते, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और यहाँ पर रेशमा जी कहते हैं मिथुन मेरा फेवरेट एक्टर है। ओहो, तब तो आप खुश हो गए होंगे, तब तो आपकी ज़िंदगी में मिठास डबल हो गई होगी, है ना। चले इसी के साथ आगे बढ़े। रोहित जी थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप जुड़े रहे हमारे प्रोग्राम में और हमारी गीतों के साथ इन्जॉय किया आपने। आपको कहेंगे बस आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप काम के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, आराम से प्यार से, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट जो होगा अभी बात करते हैं हम इनसे। हेलो
1: हेलो, हाय नमस्ते, आ गई हूँ मैं हंसते हंसते
0: आप तो जब भी आते हैं हंसते हंसते ही आती है, हंसते हंसते एक चली गई आशा आई और आयशा गई। चलिए बताइए जी कैसी हैं आप?
1: I'm fine, what about you? आप कैसी हो?
0: बिल्कुल बढ़िया जी, बताइए।
1: आज तो मौसम भी आपके गानों गीतों की जैसे मौसम भी है, थोड़ी थोड़ी बारिश थोड़ी थोड़ी धूप।
0: वैसे बारिश का तो पता नहीं लेकिन गर्मी बहुत है आजकल, सोच समझ में नहीं आता कि हम विंटर में। हाँ, विंटर का फील आ रहा है
1: यहाँ पर, ऐसा लगता है विंटर सिर्फ रात को है, दिन को फिर से समर ही
0: है। हाँ, इतने वही मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ समर जो है ना, नॉर्मली हमारा जो वेदर है या तो फिर गर्मी होती है या सर्दी होती है ना। तो अभी क्या हो गया है, हमारे यहाँ रात में सर्दी का मौसम होता है, दिन में गर्मी का मौसम होता है। एक दिन में दो मौसम छिलते हैं
1: जैसे जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है वैसे ही।
0: हाँ एकदम, एक ही दिन में कहते हैं एक दिन। हम जानना चाहते हैं कि मॉरिशस में की गर्मी कैसी होती है, आ जाओ दिन में पता चल गया। अच्छा सर्दी के लिए सर्दी में नहीं रात को पता चल जाएगा, ऐसी हो रही है हमारी हालत। बताइए आशा जी क्या सुनेंगी आप?
1: तो म्यूजिक डे है ना, म्यूजिक डे तो हर रोज होता है, तो आज म्यूजिक डे पर एक गाना, दो ऑप्शन लाई हूँ आपके लिए। मूवी है डांस डांस
0: जी,
1: उसमें जो एक आखिरी गाना होता है ना टाइटल सॉन्ग है, डांस इज लाइफ लाइफ इज डांस।
0: हाँ
1: अगर पॉसिबल हो तो वो चला दीजिएगा
0: जी,
1: और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो उसी में एक गाना है याद मेरा खो गया।
0: ओके, यानी कि आपको डांस डांस फिल्म का गाना सुनना है।
1: हाँ
0: आज आप डांस करने के मूड में हैं?
1: हाँ डांस, क्योंकि
0: वैसे मैंने उसी फिल्म का गाना भी चलाया था, हलवा आ गया।
1: हलवा वो तो बहुत अच्छा लगा
0: हलवा खा के मुंह मीठा भी हो गया,
1: यानी कि गीतों की हलवा को खाकर मुंह मीठा भी हो गया और डांस भी कर लिया, तो डांस डांस का और एक गाना भी मांग लिया।
0: अच्छा तो डांस डांस का वो गाना, वो कौन सा गाना है, जिंदगी मेरी डांस?
1: हाँ

0: ओके ठीक है ओके जी ठीक है मैं समझ गई मैं गाना जो है आपके लिए रख रही हूँ और एक वैसे दो गाने में दोनों गाने को चूज अब पहले सुन लेती हूँ कि कौन सा गाना है अभी के लिए तो मैं यादों की बारात फिल्म का गाना लेकर आई हूँ तो ये गाना आप सुन लीजिएगा थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आपका गाना कौन सा वाला गाना है मुझे चूज करना पड़ेगा
1: ओके
0: थैंक यू जी थैंक यू बाय
1: बाय
0: चलिए जी तो ये थी आशा जी इनका गाना तो इन्होंने बता दिया अब यहाँ पर हम अनीता पैतुब जी आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा वो होगा आप के लिए अंजलि चिथिया जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और गाना कौन सा लीजिए नहीं भाई साहब तो भूखे लग रहे हैं नहीं हु हा करते हुए आ गए ना अभी लंच टाइम भी है दिन के 1:32 हुए हैं आप चाहे तो हमारे साथ रेडियो के साथ जुड़ सकते हैं और रेडियो के अलावा आप चाहे तो हमारे साथ टिकटॉक पे भी जुड़ सकते हैं आज फ्राइडे है और जैसे मैंने कहा कि आज मैं कोई भी फरमाइश नहीं लूंगी आज मैं कोशिश करूंगी जो फरमाइशें गाने हैं उनको पूरा करूं हाँ जिन्होंने कॉल किया तो ठीक है अदरवाइज जब आप मैसेज पे भेजते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं साथ देते रहिए और लीजिए गाना आपके लिए आशा जी के साथ आवाज़ मिला रहे हैं किशोर कुमार

0: खाना सफर।
1: तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे में सारे जो हमारे लिसनर्स होते हैं ना, थोड़े नॉटी हो जाते हैं, बड़े नटखट हो जाते हैं, उनको डांस करने का शौक है। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, रह रहकर थोड़ा सा डांस करवा ही देते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राकी। यस, प्राकी कहते हैं सालसा करोगी, सालसा भी करेंगे, भरतनाट्यम भी करेंगे, डिस्को भी करेंगे, सब जितना डांस आता है सारा का सारा करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे टू माय बेस्ट फ्रेंड कविता आठबोपला, और ये हैं अंजनी कपिन की तरफ से। कविता चनू, आपका भी स्वागत करते हैं। और संजनी लता देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, कुछ जोता, हाय, कैसे हो आप? चलो, तो यहाँ पर अभी अगर आप लोग भी मूड में आ गए हैं डांस करने का तो चलिए। इसी के साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूलिएगा नहीं आपके मैसेजेस जो हैं आप हमें भेज सकते हैं 5250-6200 पर, या कॉल 4020-7070। यश आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। और बाकी जो दोस्त हमारे गीतों के साथ झूम रहे हैं, झूमते रहिए, रुकिएगा नहीं।

0: चलिए एक लगाना डेडिकेट करते हैं हम प्रेमचंद जमन जी के लिए जो यूके से हमें सुन रहे हैं. नमस्कार जी, स्वागत है आपका शारदा लखनऊ. देन वी आल्सो हैव दीनू फ्रॉम ट्रिनिडाड. दीप्ति जी बहुत ज़रा प्यार भेज के जा रही हमारे लिए और थैंक यू. साधना जी, सूर्या, आप सबों का भी स्वागत करते हैं.
1: RL Free Radio. Radio. Radio.
0: चलिए ये गाना हम अपनी प्यारी सी पूनम के

हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका प्यार तो भाई क्या बताऊं मैं आपको, बस यूं कह लीजिए प्यार का समुंदर है वो. सेंडिंग यू मच लव माय प्यारी सी पूनम जी. नेक्स्ट गाना आपके लिए. हाँ

0: और फिर क्या होगा
1: पार्टियां दावतें
2: yes!

0: you're listening, RM3 Radio.
1: चलिए जी, से गाने के साथ जाने का समय हो गया है। जाने से पहले विम लालचमन को हेलो कहेंगे एंड वी हैव अ बिग हेलो फ्रॉम नेदरलैंड्स। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वहाँ से थैंक यू। स्मिता जी स्वागत हैं, पीछे भी नू एंड वी हैव शर्मिला बुदन जो साथ दे रही हैं। बेलिया में भी काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं, सो थैंक यू। हाई विन, कैसे हो? तो बस जाने का समय और आपसे मुलाकात करूँगी अब मैं मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। एंड पीछे मीनू कहते हैं कि ये डैड का फेवरेट गाना है, सो आई होप डैड खुश हो गए होंगे, और डैड खुश तो पूरा वीकेंड खुश। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलती हूँ, आपसे मुलाकात करूँगी मैं अब मंडे को। आप लोग भी एओ एओ करते रहिए, गाना गाते रहिए, मूड बनाती रहिए। तेज सनातन जी स्वागत है आपका। और इस गाने की फरमाइश आशा जी ने की थी, तो लीजिए उनका गाना चल पड़ा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: 19 जून को बजट 2026-2027 प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा 5 बजे पेश किया जाएगा। आर्थिक रूप से कठिन मानी जा रही इस दौर में घोषित किए जाने वाले कदमों का जनता और आर्थिक ऑपरेटरों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और आप बजट 2026-2027 भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर देख पाएंगे। MBC 2, MBC 1, RM 1 और AM 1 पर खोल मोरिसे में एक साथ अनुवाद उपलब्ध होगा। बजट भाषण का अनुवाद भोजपुरी में MBC 3, MBC 2 और RM 3 और RM 2 पर भी किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM 1 पर एक विशेष कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व वित्तीय सेवा एवं सुप्रशासन मंत्री महेंद्र सिरहतन, ओनावा मोरिस के पैट्रिक बेलकू और अर्थशास्त्री इब्राहिम मालिक का बजट 2026-2027 में घोषित मुख्य कदमों का विश्लेषण करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीदें बहुत हैं। जीवन यापन की लागत, आवास, खरीद शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि, ये सभी ऐसे विषय हैं जो मॉरिशस के लोगों को चिंतित करते हैं। जनता अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों की आशा कर रही है, जबकि आर्थिक सेक्टर के प्रतिनिधि उन कदमों पर नजर गड़ाए हुए हैं जो विकास को गति दे सकते हैं। वहीं गैर सरकारी संगठन NGOs समाज के प्रति अधिक संवेदनशील घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं जो जमीनी वास्तविकताओं का समाधान कर सकी। जापान के राजधानी टोक्यो के एक प्राथमिक स्कूल में आगजनी की खबर। 300 से ज्यादा छात्र और शिक्षक वहां पर मौजूद रहे। दमकल कर्मियों और स्कूल प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला, हालांकि 10 लोग घायल।

0: हुई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हम आपसे मिलेंगे ठीक 3 बजे अन्य खबरों के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: since Thane School of Performing Arts ke Department of Curriculum Development ke adhyaksh pad ko sambhale hue hain aur sangeet में बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में हम आपसे मिलते रहते हैं और गीत संगीत और उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी रुचि संगीत से कैसे हुई।
1: वैसे तो मैं छोटे से, मुझे इस क्षेत्र के साथ लगाव है। ये आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटा सा
0: जी।
1: एक छोटी सी कहानी। एक 12-13 साल या 14-15 साल का लड़का है, वो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। कौन से एग्ज़ाम्स? प्रवेशिका, परिचय, प्रथमा, वो सब। अब उस 14-15 साल के लड़के से पूछा जाता है कि कबीर के दोहे पर लिखो
0: जी।
1: एक तो कबीर के दोहे उस टाइम में वो शुद्ध हिंदी में भी नहीं थे, बराबर। अब ये 14-15 साल का लड़का, उसको कैसा पता चलेगा कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय, संत सहे दुर्जन वचन, औरन सहा न जाए,
0: सहा न जाए।
1: ये सब, ये 14-15 साल का लड़का, उसके पल्ले ही में नहीं ये सब पढ़ता था। तो उसने क्या लिखा अपने, जब प्रश्न पूछा गया था तो उसने क्या लिखा जवाब में? कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खड़ी, कि दुनिया एक नंबरी, तुम्हें दस नंबरी। पिक्चर का गाना है दस नंबरी का, मुकेश ने गाया था
0: जी।
1: तो म्यूजिक का इतना प्रभाव था कि क्या बोले कि अब
0: परीक्षा में भी उत्तर देने के लिए आपने उसी को आधार बनाया। आज बहुत से स्कूलों में, बहुत सी संस्थाओं में संगीत दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस, संगीत दिवस, नृत्य दिवस क्यों मनाते हैं हम?
1: तो वैसे अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक
0: 1982 से ये शुरू हुआ संगीत दिवस, फ्रांस में
1: बराबर। तो
0: ये सभी लोग आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सबको ज्ञान है। पर मतलब हमारा चिंतन ये है कि इसकी आवश्यकता क्यों मनाया जाता है,
1: क्यों मनाया? अच्छा, मैं अपने दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो संगीत क्या है कि सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है आज।
0: बिल्कुल,
1: संगीत आज तो आप एक जीवनी भी बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: आप साक्षात हैं, हमारे सामने करियर बनाया है आपने संगीत से।
1: जी हाँ, और ऊपर से हमारे जो हम तो भारतीय संगीत परंपरा फॉलो करते हैं, और भारतीय संगीत परंपरा में संगीत का जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ गायन नहीं बल्कि गायन, वादन और नृत्य, तीनों कला, तो इन तीनों कलाएं
0: जुड़ती हैं
1: बस।
0: और शास्त्रीय संगीत, क्योंकि हिंदी सिनेमा में जब देखते हैं तो शास्त्रीय संगीत है, बहुत सारे गीतों में है, पर शास्त्रीय संगीत पर ही हम उसको आधार बनाएं तो शास्त्रीय संगीत आपके लिए क्या है?
1: तो शास्त्रीय संगीत, वो अगर

0: अगर मैं ज्यादातर जो लोग नहीं जानते हैं शास्त्रीय संगीत क्या है, मैं कहूंगा कि जो संगीत में नियम है वो शास्त्रीय संगीत है। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि शास्त्रीय संगीत पहले आया या फिर फोक संगीत पहले आया, आप क्या जवाब देंगे?
1: लोक संगीत पहले आया होगा।
0: एग्जैक्टली, तो लोक संगीत पहले से था जो परंपरागत सालों सालों से चलती आ रही है, फिर बाद में जब लगा कि चलो इसको हम कुछ विधि में, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लगाएंगे संगीत में, तो अलग अलग नियम बने, अलग अलग रागों राग का फिर निर्माण हुआ, ऐसे ऐसे सप्तक बने ऐसे, तो इन सब का पालन करना वही शास्त्रीय संगीत है। अभी आप हमारे जो दादा दादी जो गीत गवाए फॉर एग्जांपल में अभी वो नृत्य करते हैं शादी में
1: जी,
0: तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि चलो आपको ऐसा कमर हिलाना है या ऐसा हाथ करना है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आप फिर उसी को अगर आप कथक या भरतनाट्यम में आ गए तो वहां पर जो जो मुद्राएं हैं वो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा,
1: बिल्कुल।
0: तो बस वही डिफरेंस है। तो गायन में भी सेम कि अभी आप एक भजन गा रहे हैं तो 12 स्वरों में आप कोई भी स्वर लगा लीजिए, श्रोता को अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रही है, तो ठीक है। लेकिन वही गाना अगर आप शास्त्रीय क्षेत्र में आ गए और अगर मैंने बोल दिया कि चलो मैं राग मालकोंस गा रहा हूँ, तो मालकोंस में पंचम है ही नहीं और वहाँ पर मैं पंचम लगा रहा हूँ, तो वो फिर एक घोर अपमान जैसा हो गया।
1: बिल्कुल।
0: अभी फुटबॉल का सीजन चल रहा है, फुटबॉल का सीजन चल रहा है, तो जैसे हम फुटबॉल में बोलते हैं कि इसको एक रेड कार्ड मिल गया, प्रोफेशनल फाउल है
1: जी,
0: तो संगीत में भी ऐसा ही है। शास्त्रीय संगीत में अगर आप मालकोंस गा रहे हैं और पंचम लगा रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल फाउल है, इज नॉट अलाउड।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार आपने बड़ी आसानी से हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। कब आपने सोचा कि मैं संगीत में ही शिक्षा ग्रहण करूंगा और संगीत को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, अपना करियर बनाऊंगा?
0: मेरी HSC की पढ़ाई 92 में ख़त्म हुआ, सुखदेव बिशन दयाल स्टेट कॉलेज से
1: जी,
0: और फिर 93 से मैंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। 3 साल में मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ कंप्लीट किया और मैनेजमेंट स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं 3 साल तक हैमिल्टन कॉलेज जो मेबर्ग है वहाँ मैं पढ़ाने गया। अब आपको पता है कि स्टेट कॉलेज में अगर आपको रिक्रूट किया जाता है तो आप ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं
1: जी,
0: लेकिन प्राइवेट स्कूल में कैसा चलता है कि आपको 2-3 सब्जेक्ट जो आपके लाइसेंस में हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही मुझे दिया गया था गणित, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, ऐसा 4 सब्जेक्ट्स मैं ज़्यादातर पढ़ाता था, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज़। लेकिन चाहे मेरा जो डिग्री था वो मैथ्स में नहीं था, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, गणित था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो रियलाइज़ हुआ कि चलो शिक्षण में तो रुचि है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और अगर आप एक ऐसे विषय को पढ़ा रहे हैं जिसमें आप खुद आपकी रुचि है तो और मज़ा आता है। तो उसमें क्या हुआ कि 3रे साल में मुझे गणित डिपार्टमेंट से बुरा निकाल दिया गया था, मुझे कम्प्लीटली अपने डिपार्टमेंट जो बेसिकली नॉर्मल है क्योंकि मेरा डिग्री मैनेजमेंट में था, तो बिजनेस स्टडीज़ और कमर्शियल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में मुझे फुल टाइम रख दिया गया। और मुझे उस टाइम पे इकोनॉमिक्स का एक ग्रेड जो 11 बोलते हैं फॉर्म 5 उस टाइम पे स्कूल सर्टिफिकेट, मुझे एक स्कूल सर्टिफिकेट का एक क्लास दिया गया था, वो बच्चे एग्जाम्स देने वाले थे, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ी सी मैं नाखुश था कि मुझे एक तो मुझे खुद इकोनॉमिक्स ज़्यादा इतना पसंद नहीं था। तो मैं सोचा कि यार अगर मैं टीचिंग लाइन में रहूं ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिले जो मुझे बहुत पसंद हो तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसी दिसंबर में 98 में मैं अपना जो मैंने सर्टिफिकेट किया था MGI से, तो वो मैं सर्टिफिकेट लेने गया था कॉन्वोकेशन सेरेमनी में, तो वहाँ पे उस टाइम हमारे डायरेक्टर जनरल थे उत्तम बिशन दयाल जी, तो वो बोल रहे थे कि 1999 में MGI विल स्टार्ट फर्स्ट बैच ऑफ BA। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ मॉरिशस में BA लॉन्च हो रहा है तो कोई तो होगा जो पढ़ाता है। तो फिर दिमाग में बैठ गया कि चलो मुझे अगर कुछ अगर जिंदगी में मुझे फिर से मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा संगीत में। तो बस 99 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो बस अखबार पढ़ रहा था एक दिन स्टाफ रूम में, तो नज़र पड़ी एक एक विज्ञापन पर ICC और उसको स्कॉलरशिप मिल रही है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो मैंने अप्लाई किया तो फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं 3 साल के लिए मैंने BA किया बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी से, गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर 2 साल और एक्सटेंड किया, MA पूरा किया, और जब वापस आया 2004 में तो फिर मैं यहाँ फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ा, लगभग 13-14 साल काम किया, और 2017 में फिर मेरी जो सपना थी वो पूरा हुआ। मैं टर्शियरी के साथ जुड़ा, मैं MGI में
1: पहुंचा। ये यात्रा आपकी बहुत सुखद रही कि आप के मन में जो आपने सोचा था वो आपके समक्ष आ गया। और आपके लिए आज का छात्र अगर जो कि अभी फॉर्म 1 में गया है, उसके लिए स्कूल्स में ये प्रोविजन है कि उनको संगीत सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है, ये हमारी सरकार की सोच है। और आज जो परिवर्तन हमने स्वीकारा है, बच्चों को पाठ्यक्रम से अलग भी कुछ सीखना चाहिए, उनकी प्रतिभा बढ़ानी चाहिए, उनको अन्य कार्यक्रमों में रुचि ले पाएं, क्योंकि केवल पढ़ाई हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी कि आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ड्रग्स की ओर ना जाके नृत्य संगीत और ऐसी एक्टिविटीज से जुड़ पाएं?
0: बेसिकली हम
1: ये अभिभावकों के लिए भी है और गुरुजनों के लिए भी है कि छात्रों को कैसे प्रभावित कर सकें, कैसे उनमें वो आकर्षण पैदा कर सकें, आप इस पे अपना क्या विचार देंगे?
0: अपने में अनुभव से अगर मैं बोलता हूँ तो मैंने देखा है कि क्योंकि मैं खुद एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद परफॉर्म करता हूँ, तो बच्चे लोग वो एक तरह से उनको ये प्रोत्साहित वो करता है कि वो देखते हैं कि गुरुजी तो
1: विशाल मंगरू जी गा रहे हैं तो हम भी ऐसे ही मंच पे पहुंचे।
0: बस ऐसा ही है तो
1: ऐसे। और हमारे देश में वर्षा विशेषर जी हैं, वे भी खूब अच्छा गाती हैं, आप दोनों साथ मिलकर गाते हैं। MGI में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें आप भाग लेते हैं, तो कैसे आप प्रभावित कर पाते हैं?
0: तो वही ना, तो अगर आप टीचर हैं और आप खुद अपना जो गुण है वो आप बता सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग प्रोत्साहित होते हैं। ऊपर से एक दिन ऐसी बात हो रही थी कि जो स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप जितने भी लेक्चरर हैं आप उनके गाड़ियां देखेंगे मैं गाड़ियां का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, लेकिन बस सबके अच्छे अच्छे गाड़ियां वो चलाते हैं। तो कुछ लोग शायद सोचेंगे कि यार म्यूजिक में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं बन सकता है, लेकिन ये गलत बात है। अभी मैं मिनिस्ट्री की बात आप कर रहे हैं ना, कि हम सब जानते हैं कि बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों की
1: अभी हम 21 तारीख को योग दिवस भी मनाने वाले हैं संगीत दिवस के साथ साथ, तो योग के लिए भी तो पूरे देश में कार्यक्रम हुआ है जो कि संगीतमय है। योग के साथ संगीत है।
0: यस यस, नए फील्ड्स के साथ ये संगीत का जुड़ाव हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: अभी अभी हम बात कर रहे थे अपने दोस्त रोशन जी से जो इंडोलॉजिकल स्टडीज के हैं
1: जी,
0: तो हम सोच रहे थे कि रामायण जैसे है मॉरिशस में बहुत प्रचलित है, तो रामायण के 3 विभाग हो सकते कि 3 दृष्टि से हम देख सकते हैं रामायण को, एक तो उसका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, फिर उसका भाषा, और फिर संगीत का भी उसमें एक अंग आ जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे मंत्र भी तो उच्चारण हम करते हैं तो वो गीतमय होते हैं,
0: उसमें भी बराबर स्वर भी है, उसमें भी स्वर
1: है जी।
0: तो संगीत, और ऊपर से अगर आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे USA हो या यूरोप में हो, अगर आपके पास संगीत का एक सर्टिफिकेट है तो वो ज्यादा मायने रखता है आपकी क्वालिफिकेशन में,
1: प्लस पॉइंट हो जाता
0: बहुत है। बहुत ज्यादा, कुछ यूनिवर्सिटी तो बहुत ज्यादा वो मानते हैं अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं तो
1: जी।
0: तो मेरे ख्याल से और अभी जो भारतीय संगीत है वो ग्रेड 11 तक स्कूल सर्टिफिकेट में कैम्ब्रिज में अभी तक तो नहीं है उसका पेपर, लेकिन हम उस प्रोजेक्ट

0: पे भी काम कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से मिनिस्टर खुद ने उन्होंने अनाउंस किया था कि वो खुद जब कैम्ब्रिज जाएंगे तो ये चर्चा होगी। और मैंने ऐसा भी सुना था कि उस लाइन में संगीत भी है, भोजपुरी भी है, ये सब बात होगी। तो चलो, हमारी संस्कृति का जो
1: धरोहर है वही मैं उसी पर आने वाली थी कि पारंपरिक गीत जो यहाँ पर गाए जाते हैं, लोक गीत जिसे हम कहते हैं फोक सॉन्ग्स, वे भोजपुरी में हैं। आप भी भोजपुरी गाते हैं, लिखते हैं, और मतलब आप जुड़े हुए हैं इस भाषा से, पर आपके विचार में गीत गवाई जैसे चल रही है या कि उसमें जो मिश्रण हो रहा है हिंदी सिनेमा का, हिंदी सिनेमा के गीतों का, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, या कि हमें बिल्कुल जैसे उसका सेटअप है वैसा ही होना चाहिए, पहले ढोलक पूजा फिर धरती माँ की पूजा, ये हमारे पारंपरिक रीति रिवाज में आता है, उसे वैसे ही रहना चाहिए?
0: ये इसमें दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जो देखिए, वैसे संगीत जनरली में मनोरंजन का एक माध्यम सिर्फ नहीं है, बराबर, ये संस्कृति,
1: किसी के लिए डिसिप्लिन है, हाँ, किसी के लिए स्वाध्याय है, रोज उसे संगीत की शिक्षा से जुड़ना है, अभ्यास कार्य करना है जी।
0: और मैं सोचता हूँ कि संगीत ये संस्कृति और संस्कारों का भी ये एक वाहक है,
1: बिल्कुल,
0: और गीत गवाई हमारी पहचान है अभी मॉरिशस में,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम भोजपुरी बेल्ट वाले हैं और इसमें जो और इससे सुरक्षित रखना हम सब की ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है
1: जी।
0: तो ये मॉरिशस में एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हम बोल सकते हैं ना, तो यह केवल विवाह से जुड़ी परंपरा नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों की स्मृतियां, भोजपुरी भाषा और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित का जो जीवित प्रतीक है। तो गीत गवाई मेरे ख्याल से उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, मैं अपने दृष्टिकोण से कह रहा हूं, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यही मानेंगे कि इसमें नहीं होना चाहिए, जो इन्फ्लुएंस
1: प्रारूप है उसे ना बदलें,
0: हाँ उसे ना बदलें,
1: उस प्रारूप को वैसे ही सुरक्षित रखें, क्योंकि वे एक धरोहर है हमारे देश के लिए, तो उसको सुरक्षा करते हुए, हमें उसे सुरक्षित रखते हुए चलना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये तो रहा महिलाओं के लिए गीत गवाई, अक्सर देखा जाता है कि गीत गवाई में पुरुष वादन से जुड़ते हैं यंत्रों से, गीत गवाई में भाग नहीं लेते हैं, ना नाचते हैं ना गाते हैं, पर गमठ पुरुषों के लिए होता है, तो गमठ पर आपका क्या विचार है? ये पहले तो बहुत अच्छे से होता था, एमबीसी पर भी दिखाया जाता था, पहली तारीख को लोग बैठ जाते थे, दो तारीख को कि आज गमठ होना है, सोना नोयन और वसंत के बीच में, ऐसे ऐसे गायक थे हमारे देश में जो अब नहीं है, पर हमें गमठ रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए?
0: वैसे गमठ हमारी भोजपुरी लोक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विरासत है,
1: बिल्कुल
0: बराबर, जिसमें संगीत, ये इसमें अभिनय और सामाजिक संदेशों का सुंदर समन्वय होता है
1: जी।
0: लेकिन दुर्भाग्य से आज वो कला धीरे धीरे कम होती जा रही है और बहुत से युवा इसके बारे में अधिक नहीं जानते। मेरा मानना है कि हमें गमठ को क्या करें, विद्यालयों में या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में,
1: जैसे गीत गवाई के स्कूल खुले हैं, वैसे गमठ के लिए खोलना चाहिए।
0: एक बहुत अच्छी सुझाव है, एक्चुअली अभी तो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की प्रधाना हमारी जो
1: वर्षा विशेषर जी हैं,
0: बस वो खुद है, तो हम बात कर सकते हैं, उस पे चर्चा कर सकते हैं,
1: महात्मा गांधी संस्थान में ऐसा एक प्रयोग शुरू हो जा किया जा सकता है,
0: उसमें भी कर सकते हैं कि
1: जी,
0: कि गमठ का जो,
1: और आप ही उसके अध्यक्ष हैं ये सबसे बड़ी बात है, तो आप तक हमने विचार पहुंचाया, आप अपनी संस्था में विचार पहुंचाएंगे कि हमें आज की युवा पीढ़ी जो आज के बच्चे हैं उनमें गमठ का प्रयोग करना चाहिए, एक प्रयोग होगा वो,
0: यस डेफिनेटली। उस पे क्या है कि कुछ लोग उसको, अगेन अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें सब था, उसमें प्यार भी था, उसमें कटाक्ष भी होती है,
1: बिल्कुल
0: कुछ गुस्सा भी वो करते हैं कुछ लोग,
1: तो हेल्दी कंपटीशन माना जाता था, जब आप

0: अंदर में उत्तर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, बाहर मिलके तो वही आवा बनाने मनावा, ऐसा ही विचार आता था।
1: बराबर
0: बिल्कुल।
1: और जब हमारे बड़े लोग बात करते हैं, हम सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो लोग बोलते थे कि 2-3 बजे, कभी कभी सुबह 4-5 भी बज जाते थे और लोग बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं
0: जी,
1: बस बैठे हैं, सुन रहे हैं और मजा ले रहे
0: थे और साथ में गमट होता था जी। तो इस पर आपने बहुत अच्छा सोचा कि आप अपनी संस्था में या कहीं भी ये विचार पहुंचाएंगे कि गमट आज की युवा पीढ़ी से जुड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो मैं जैसे बोलते हैं ना, एक मैंडेट होता है 3 साल का, तो मैं 6 साल के लिए मैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के साथ मैं भी जुड़ा था
0: जी,
1: एज ट्रेजरर। तो दीदी सरिता जी के साथ बहुत काम किया, और लेकिन मेरी क्या है कि मेरी प्रॉब्लम कि मैं छोटे से मैं हिंदी सीखता आया हूँ
0: जी,
1: तो भोजपुरी बोलने में मुझे तकलीफ होती है, वो क्योंकि वो
0: अपनी दादी नानी के साथ बोलते हैं।
1: हाँ, मैं कोशिश करता हूँ
0: जी।
1: उसमें क्या है कि वो जो हम जब हिंदी में मैं करते हैं ना
0: जी,
1: अब वहाँ पर हम करते हैं भोजपुरी में, और हाँ, हम और मेरे लिए हम तो बहुवचन हो जाता
0: है, बहुवचन हो जाता है,
1: और भोजपुरी में हम वो एक वचन है। तो ये कन्फ्यूजन छोटे से था और अभी भी कभी कभी मैं 2 बार सोचना पड़ता है अगर भोजपुरी में आना है तो
0: जी।
1: मेरे लिए हिंदी ज़्यादातर फ्लूइड हो जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए विशाल जी ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं गीत के साथ, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का फिर से हम स्वागत करते हैं। जो अभी अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़े हैं विशाल मंगरू जी, और वे महात्मा गांधी संस्थान के जो संगीत का डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें वे अध्यक्ष पद पर हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरे देश में कितने छात्र होंगे और कहाँ कहाँ आप ये शिक्षा प्रदान की जाती है, हमारे जो सरकार की ओर से है या महात्मा गांधी संस्थान की ओर से है, ऐसा अच्छा। कहाँ कहाँ तक संभव है कि कोई नॉर्थ में बैठा है या के दक्षिण में बैठा है तो वो कहाँ पर शिक्षण पाता है।
2: वैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, हमारे पास काफ़ी रीजनल सेंटर्स हैं जहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट क्लासेस चलाते हैं
1: जी।
2: और ये कौन से लोग कर सकते हैं, तो जिन्होंने ग्रेड सिक्स ख़त्म कर लिया है, तो ग्रेड सिक्स से ऊपर, और जो अपर लिमिट है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसमें आप 70 हो या 80
1: के भी हो, तो आप भाग ले सकते
2: बस
1: हैं।
2: बस जी। तो अब सैटरडेज को चिल्ड्रंस कोर्स भी होता है, वो होता है ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 6 के बच्चों के लिए, वो प्राइमरी के लिए होता है
1: जी।
2: और ज़्यादा कम यानी कम उम्र वाले बच्चे नहीं हम लेते, क्यों? क्योंकि जितने भी कला हैं उसमें थोड़ी सी जो डिसिप्लिन होती है
1: वो,
2: हाँ, तो वो जो बच्चे जो एकदम से 3-4 साल वाले होंगे तो उनको ये डिसिप्लिन वो खुद अभी वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे
1: जी।
2: जैसे नृत्य में है आपको खड़ा रहना पड़ेगा, या अगर आप भरतनाट्यम कर रहे हैं तो उसको हाफ सिटिंग पोजिशन में करना पड़ता है, तो फिजिकली आपको यू नो यू हैव टू बी सम स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी ना
1: जी,
2: तो वो 7 और 8 साल के वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो ग्रेड 2 से हमने बोला है, तो वो चिल्ड्रंस प्रोग्राम के लिए है। वो क्लासेस सैटरडे को चलते हैं, और जो एक बार आपने ग्रेड 6 ख़त्म कर लिया, एक बार आप सेकेंडरी स्कूल में पहुँचे तो 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद एडवांस सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, वो 2 साल का होता है। फिर HSC करने के बाद पोस्ट HSC, फिर आप डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं, वो टर्शियरी लेवल पे आ गया। अच्छा, अब जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं आपको मौका नहीं आना पड़ता है उसके लिए, आप मॉरिशस के कोई भी कोने में हो तो आपके करीब या आपके नज़दीक कोई ना कोई रीजनल सेंटर तो होगा ही। जैसे आप ईस्ट में हैं तो MGSS फ्लक एक सेंटर है, अभी आप साउथ में हैं तो फ्रांस बॉयज राजे जो एक सरकारी कॉलेज है, शाम को 2-3 बजे के बाद वो फिर एक MGI सेंटर बन जाता है। अब नोवेल फ्रांस में भी एक है MGSS, तो वो वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं। सुल्फेरिनो में भी है एक MGSS, फिर RTI है नॉर्थ में, लेडी सुशील भी है, तो ऐसे हमारे फिर मौका खुद हमारा जो मेन सेंटर है वहाँ पर भी हम चलाते हैं, लेकिन टर्शरी के लिए वो आपको MGI ही आना पड़ता है,
1: आना पड़ता
2: और
1: है।
2: और ऐसे करेंगे देखेंगे तो 1000 से ऊपर भी हमारा बच्चे लोग क्लासेस कर रहे हैं, सर्टिफिकेट 1, 2, 3, Advanced 1, Advanced 2। अभी दो सैटरडेज के लिए हमने एग्ज़ाम्स लिया, तो काफ़ी स्कूल पूरा स्कूल लेना पड़ता है, MGSS पूरा सब क्लासेस कन्वर्ट हो जाता है एग्जामिनेशन रूम में, हाँ।
1: बिल्कुल।
2: तो और ऊपर से डिसिप्लिन भी कितनी, डांस में 3 स्टाइल्स होते हैं, भरतनाट्यम होता है, कथक और कुचिपुड़ी, फिर गायन में 2 स्टाइल अगेन, वोकल म्यूजिक हिंदुस्तानी और वोकल म्यूजिक कर्नाटिक, तो ये हुआ 5। अब इंस्ट्रूमेंटल में

0: वायलिन, सितार और तबला, ये हुए आठ। अब वीणा भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन वो सब सेंटर में नहीं, क्योंकि रिसोर्स पर्सन हमारा वो जो पढ़ाती है वो मुकाती है, तो वीणा भी है और मृदंगम है। तो दो पर्कशन हुआ, तबला और मृदंगम, फिर वायलिन सितार और ये वीणा। तो टोटल 10 ऐसे डिसिप्लिन हम
1: जिन पर आप परीक्षा करवाते हैं,
0: हाँ, कर पकड़ाते हैं और उसमें बच्चे लोग एडमिशन लेते हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे देश में ऐसी सुविधाएं हैं कि हम नृत्य भी सीख पाते हैं, गीत भी, संगीत भी सीख पाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जो कि एक परिवर्तन है आज की शिक्षण पद्धति में। हाँ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं बच्चे। जैसे कि आज ही बहुत से विद्यालयों में म्यूजिक डे मनाया जा रहा है और 21 तारीख को हम
0: इंटरनेशनल
1: म्यूजिक डे, अभी पिछले दिनों नृत्य दिवस मनाया गया था, अभी योग दिवस मनाना है हमने। तो ऐसे ऐसे दिवस मनाकर हम बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त भी कुछ करियर के लिए या कुछ डिसिप्लिन के लिए ही, ताकि वे ड्रग्स की ओर ना जाके ऐसे डिसिप्लिन, क्योंकि ये अपने चरित्र निर्माण के लिए भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तीनों के लिए होता है। इस पर आपका क्या विचार है?
0: नहीं नहीं, अभी आपने एकदम बिल्कुल आपने सही बताया कि ये सब बहुत ज़रूरी है युवाओं को, ये सब जो गलत गलत रास्ते हैं उनसे वो ना भटकें, और संगीत की ओर अगर उनको आकर्षित किया जाए तो बहुत समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और सब हमारे देश के लिए भी गर्व की बात होगी। और अभी अभी कुछ सप्ताह पहले जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी एक कंपटीशन हुआ था, अलग अलग कैटेगरीज थे, उसमें सोलो और ग्रुप परफॉर्मेंसेस थे, गायन में हुआ था, फिर डांसेस में भी, तो बहुत से स्कूल कॉलेजेस ने एंट्री दी थी और हमने जितना भी सुना, हमने देखा, क्योंकि मैं खुद जूरी बनने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश क्योंकि एग्जाम्स पीरियड चल रहा था तो फिर मुझे
1: अन्यों को अवसर दिया गया,
0: हमारा दूसरा एक एमजॉयस एक दूसरा ऑफिसर गया था रिप्लेस करने के लिए
1: जी।
0: तो लेकिन जितना भी मैंने, जब मुझे मौका मिला देखने के लिए डांस का, मैंने देखा फाइनल्स, तो इट वाज अमेजिंग। जो जैसे आरसीसी रॉयल कॉलेज की एक छात्रा आई थी, एक लड़की थी
1: जी,
0: और उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस किया था, वो शायद दूसरे नंबर पे आई थी, तो ओ माय गॉड, इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस। और एक लड़का था वो सुखदेव बिश्वनयाल कॉलेज से, उसको पहला नंबर आया था, तो और पूरी स्कूल के बच्चे उनके पीछे उसको सपोर्ट कर रहे थे, चीयरिंग कर रहे थे
1: जी।
0: तो माहौल ही एकदम अलग था,
1: सुखद माहौल कहेंगे। अच्छा, कुछ छात्र ऐसा भी प्रयास करते हैं कि वे अपने गीत को लिखें, लिरिक्स उनके द्वारा लिखे जाते हैं, आपने भी कभी कोई प्रयास ऐसा किया?
0: मैं जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरा एक कोलीग था फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, तो उसने बोला था कि विशाल, जो हमारे बड़े लोग हैं जो भोजपुरी बेल्ट वाले हैं, तो उन तक एक गीत के माध्यम से अगर हम ये मैसेज पहुंचा सके, तो क्या तुम कुछ लिख सकते हो जो मैसेज हैं? तो मैंने एक चैलेंज की तरफ से मैंने बोला कि चलो मैं ट्राई करूँगा कृष्णा जी। तो मैंने ट्राई किया, वैसे मैंने बोला ना कि मेरी भोजपुरी इतनी वो ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की। तो मेरे ख्याल से अभी अगर, क्योंकि 2020 में था, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि कोरोना से बचे के कि कोनो उपाय भात घर में रहिया, घर से नहीं निकला, किला पुलिस भी यही बोला था, सरकार भी यही बोला था कि घर से नहीं निकला।
1: बड़ी अच्छी भोजपुरी बोल रहे हैं वो, आपने संगीतमय करके संगीत उसको प्रस्तुत किया,
0: बराबर,
1: बहुत अच्छी बात है। आज आपके छात्र भी ऐसे गीत या कविता नहीं लिखते हैं?
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बीए स्टूडेंट एक है भारती करके, वो स्कूल में लाइब्रेरी में काम करती है।

0: वो बहुत अच्छी कविता लिखती है, वो शेयर भी करती है। तो कुछ लोग लिखते हैं और बहुत अच्छे भी लिखते हैं, और उसी को फिर बाद में अगर वो लोग कंपोज करके गीत बना सकते हैं
1: जी।
0: और आजकल तो अगर आप लिखना भी नहीं जानते तो एक मैजिशियन आया है हमारे जिंदगी में जिसको AI. हम AI बोलते हैं,
1: चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे हैं अब AI है।
0: बस
1: और
0: तो
1: कहीं आप पाते हैं कि आजकल कराओके ऑन करके कोई भी गीत गा सकता है या कि उसमें डिसिप्लिन की कमी पाते हैं आप?
0: नहीं, उसमें अच्छा एक फैसिलिटी हो गई है कि चलो YouTube पर इतने ट्रैक्स अवेलेबल हैं कि आप गा सकते हैं, लेकिन जो सही परख रखते हैं उनको पता चलता है कि ये सही गा रहा है और ये गलत गा रहा है, तो कुछ लोगों को पता नहीं चलता है
1: जी, क्योंकि उनमें वो शिक्षा नहीं है।
0: हाँ, बस वो ट्रेनिंग नहीं है,
1: जानकारी नहीं है। जी,
0: तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक और रेडियो स्टेशन से एक कॉल आया था एक इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपका क्या राय है आजकल के बच्चे, क्या उनको संगीत सीखना है, क्योंकि AI तो सब कुछ कर रहा है, AI लिख रहा है, AI कंपोज कर रहा है, AI खुद अपने आवाज़ में गा भी रहा है या रही है, क्योंकि फीमेल वॉइस आपको चाहिए तो आप बोलिए कि फीमेल वॉइस मुझे देना, या फिर उसका एंड प्रोडक्ट मुझे मेल वॉइस में चाहिए या कोरस में चाहिए,
1: बहुत सारे फिल्टर लग के हाँ, तो बस लगेगा कि आप ही गा रहे हैं।
0: तो मैंने वहाँ पर भी मैंने वही बोला था कि देखिए उसमें क्या है कि बेसिकली AI का जो मेन है वो है प्रॉम्प्टिंग, उसमें आप क्या प्रॉम्प्ट करते हैं। तो अगर आपका नॉलेज संगीत में ज़ीरो है तो आपका प्रॉम्प्टिंग भी इतना अच्छा नहीं होगा,
1: अच्छा नहीं होगा।
0: तो अगर प्रॉम्प्टिंग ठीक नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट भी कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि AI प्रॉम्प्टिंग पे चलती है। तो मैंने बोला एक इंग्लिश में एक टर्म है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो AI भी ऐसा ही है। तो अगर आप सीखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये हाँ ये ठीक है ये गलत है, तो उसमें एक सुधार की तरफ से या फिर एक कि चलो टू एनहांस आपका, आपने अपना अपना काम कर दिया है। तो मैंने अभी कुछ महीने पहले मैंने भी एक ऐसा ही, उस टाइम पे दिसंबर का महीना था तो हमारे काफ़ी कलीग्स छुट्टी पर गए थे और मुझे एक अर्जेंट सबमिशन करना था एक गीत का, तो मैंने लिरिक्स मुझे मिल गया था तो मैंने कंपोज किया। अब कंपोज तो कर लिया, अब बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब से पकड़ा और मेरी आवाज़ और मेरा हारमोनियम और मोबाइल पर रिकॉर्ड किया, तो जो क्वालिटी आया वो इतनी प्रोफेशनल स्टूडियो वाला रिकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं आया। तो फिर वो ट्रैक मैंने अपलोड किया एप्लीकेशन पे और मैंने AI को बोला कि चलो ये गीत मैंने बनाया है ऐसा ऐसा है, तो आप देखिए उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो उसने जो एंड रिजल्ट मुझे दिया
1: वो बहुत अच्छा
0: तो
1: था।
0: अरे बाबू बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आवाज एकदम से सुरीला वाला, उसमें कोई फोर्ट है ही नहीं, म्यूजिक भी सितार बज रहा है, तबला बज रहा है, सब इंस्ट्रूमेंटल आ गया, फिर उसका मेलोडी, उसका सब हारमोनिक्स, वो सब बहुत बढ़िया। तो जब ये गीत हमने यूज किया वो कॉम्पिटिशन, एक्चुअली कॉम्पिटिशन था, एक वीडियो
1: भेजना
0: था, तो फिर जो जिस अगेन संस्कृत डिपार्टमेंट से एक हमारी कलीग हैं तो उसने बनाया वीडियो इस गीत को लेकर, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया क्योंकि गाना इतनी अच्छी बनी और वीडियो भी अच्छा ही था।
1: अच्छा बना। पर कहीं आप सोचते हैं कि ये आपके छात्रों के लिए अच्छा है या गलत है?
0: नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जो टूल्स अभी एडवांसमेंट होता है अवेलेबल हैं उसमें दोनों पक्ष होता है, गलत भी होता है, बुरा भी होता है या अच्छा भी होता है, वो आप पे डिपेंड होता है आप उसका प्रयोग किस तरह
1: कर रहे हैं।
0: हाँ, अभी जैसे आप बता रहे थे ना कि हमारे कोर्स में जब टर्शियरी लेवल पे आते हैं तो कंपोजिशनल वर्क करके एक मॉड्यूल है, तो उसमें या तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिरिक्स लेकर आपको कंपोज करना है या तो फिर आप लिख कर खुद कंपोज कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, हम गाइडलाइंस देते हैं कि चलो कि गीत के लिए हम निबंध तो नहीं ले सकते,
1: बिल्कुल हाँ, कोई कविता ही होगी,
0: कविता तो अब कविता तो कविता कैसी होनी चाहिए, उसमें मात्राएं वो सब गिनना कैसे वो करते हैं, क्योंकि मात्रा जब छंद बनेगी तो छंद के हिसाब से फिर आपको

0: ताल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो सब हम बताते हैं कि कैसे होता है, कि चलो ये गाना दादरा में बैठेगा या ये गाना कहरवा में बैठेगा, ये 7 मात्रा का है, ये 10 मात्रा का है, ये 12 मात्रा का है। तो ऐसे ऐसे हम सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे कंपोजिशनल वर्क होती है। तो वहाँ पर उनकी जो रुचि है उसके हिसाब से, या फिर उनके जो अंदर अगर वो गुण है वो लिखते हैं तो हाँ, तो वो बाहर और निखर के फिर निकल के बाहर आती है।
1: अच्छा, हम आपको एक कविता देते हैं और आप उस पर कैसे जान पाते हैं कि ये कौन से म्यूजिक पर अच्छी लगेगी, मतलब शास्त्रीय संगीत के आधार पर वो जानकारी आपको उपलब्ध है क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपने वो प्रशिक्षण लिया हुआ है, या कि कोई भी बता सकता है नहीं ये सुनने वाले को ये लगेगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है?
0: वैसे तो कंपोजिशन में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप अगर एक कविता पढ़ते हैं तो जो भी रस स्वादन जो बोलते हैं कि आपको कौन सा रस की अनुभूति हो रही है वो कविता पढ़ के, तो उसके आधार पे आप
1: चयन करते हैं।
0: चयन कर सकते हैं कि नहीं चलो इसमें कि ये इसमें करुणा है, तो अभी जो कोमल स्वर होते हैं उस कोमल स्वर के जरिए हम करुणा का की अभिव्यक्ति करते हैं, तो आप बोलेंगे चलो इसमें थोड़ी सी कोमल स्वरों का भी प्रयोग करेंगे ताकि वो जो करुणा रस है
1: तो
0: श्रृंगार रस के हिसाब से कौन कौन से राग प्रसिद्ध हैं तो वो राग लेंगे। तो इस हिसाब से रागों की चयन, स्वरों की चयन और फिर मात्रा गिन के ताल की चयन, वो सब
1: जो सुर ताल सब बैठना चाहिए। फिर आप उसमें जो वादन के लिए भी यंत्र जो हैं वो अलग से चयनित करते हैं कि इसमें तबला अच्छा लगेगा, इसमें वायलिन अच्छा लगेगा।
0: वैसे तो जी हमारे जब आप वैसे आप जब क्रेडिट्स देखते हैं, जब आप एक पिक्चर देख रहे हैं या एक सीरियल देख रहे हैं तो उसमें आप क्रेडिट जब देखेंगे तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर आएगा, लिरिसिस्ट आएगा
1: जी,
0: सिंगर आएगा, फिर एक टर्म आएगा अरेंजर, म्यूजिक अरेंजमेंट या अरेंजर आएगा, बराबर। तो ये सब जो है भारत में अगर आप देखेंगे तो सब ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम है, राइट। अब मॉरिशस में ये एक तरह से एक कमी है,
1: स्थानीय लोकगीत बना रहे हैं तो कोई, वो सब तो उसके पास ये सुविधाएं नहीं होंगी
0: बस वो। और खासकर मैं जो भोजपुरी जो हमारे गायक हैं ये आप उसको आप एक क्या बोलते हैं खिचिक के तौर पर मत लीजिएगा, एक मैं ऐसे एक टिप्पणी कर रहा हूँ कि मॉरिशस में जो हमारे जो भोजपुरी गीत लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो खुद लिखते हैं, वो खुद म्यूजिक अरेंजर बन जाते हैं, वो खुद गायक भी बन जाते हैं। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बाहर जब आता है तो ऐसा नहीं कि वो हर क्षेत्र में वो अच्छा
1: है, हाँ बिल्कुल।
0: तो कभी कभी कुछ गायक बहुत अच्छे हैं लेकिन लिरिक्स आप देख सुनेंगे तो बोले यार ये क्या लिखा है इसने, या क्या बोल तो बहुत अच्छे नहीं है, या कभी कभी बोल बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर जो गाया है वो उसमें मजा नहीं आ रहा है कि चलो इसमें थोड़ा सा स्वर की कमी है वो सब। तो ये कमियां
1: लय नहीं बैठ पाई है या सुर नहीं बैठ पाया जो भी,
0: तो फिर ये सब जो है ना ये एक टीम वर्क होता है। जब इसीलिए जब आप भारत से आप कोई भी गीत या पिक्चर के गाने हो आप पहले का तो बात ही मत कीजिए, वो तो आप एक जो पुरानी धुन होती है वो दिमाग में क्यों रह जाती है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो गीत एक घंटे या एक दिन में नहीं बनता था, वो महीने काम करते थे एक विषय को लेकर, एक गीत को लेकर, उसमें सबका अपना कंट्रीब्यूशन होता था, म्यूजिशियंस अलग हैं, म्यूजिक डायरेक्शन अलग हैं, म्यूजिक अरेंजर अलग हैं, जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे सितार बजेगा, यहाँ पे वायलिन बजेगी, यहाँ पे वो सब, तो ये सब कौन करता है उसका डिसीजन, वो म्यूजिक अरेंजर करता है।
1: अच्छा।
0: सबको डायरेक्ट कौन करता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर करता है। मेलोडी कौन कंपोज करता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करता है, जो चून है, जो धुन है। लिखता कौन है, वो लिरिसिस्ट है।
1: हाँ।
0: बराबर। अब समीर को
1: गुलजार का काम,
0: हाँ बस
1: गुलजार का नहीं कर सकता,
0: गुलजार का काम कुमार सानू नहीं कर सकता, और जो कुमार सानू उदित नारायण करते हैं वो ये जो इंदिवर है या फिर समीर है वो जावेद अख्तर है,
1: बिल्कुल।
0: तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, क्योंकि जो लिखता है वो शब्द के साथ वो खेलते हैं ना, तो उनको भाषा
1: आपके देखने में लिरिक्स पहले बनने चाहिए कि संगीत पहले होना चाहिए, जिसपे लय सुर ताल है, फिर लिरिक्स लिखे जाए उसके।
0: मैं तो नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि लिरिक्स पे

0: पहले होने पहले, चाहिए हाँ।
1: अच्छा, हो सकता है कि आपके दिमाग में एक धुन बैठ गया हो
0: हाँ।
1: और फिर आप चलो आप बोलेंगे चलो मैं एक एक, एक कविता को लेकर उसको बीच में बिठा देता हूँ
0: हाँ।
1: वो भी होता है,
0: होता
1: वो
0: है।
1: भी, हाँ वो भी होता है,
0: संभव है,
1: संभव है
0: हाँ। संभावनाएं बहुत सी हैं। आज AI सब कुछ कर देता है जब हम मतलब अंत में पहुंचते हैं तो AI का भी रोल आज बहुत महत्वपूर्ण है। पर लोकगीत से ही शास्त्रीय संगीत बना। शास्त्रीय संगीत के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है।
1: बहुत।
0: आप एक गुरु हैं, आप कितने समय अभ्यास करते हैं?
1: मेरी जो तपस्या है वो ज़्यादातर जो 5 साल मैंने भारत में मैंने बिताया है, तो वहाँ पर हम लोग हमको कहा जाता था कि 8 घंटे का रियाज। तो अब हम सोच रहे हैं कि 8 घंटे का रियाज कैसे करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली हमने 8 घंटे का रियाज नहीं किया है, लेकिन हमारा जब MA का टाइम हुआ, मैं एक एक टाइम पे वैसे तो हम मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो अभी वो इंडिया ही में उनका देहांत हुआ था, तो वो हम साथ में रहते थे, तो हम अलग अलग रूम था, तो हम रूम में अपना अपना प्रैक्टिस करते थे। फिर जब मैं मास्टर्स में मैंने स्टार्ट ज्वाइन किया तो मैंने अप्लाई किया हॉस्टल के लिए, मुझे हॉस्टल लाइफ का भी एक्सपीरियंस लेना था।
0: बिल्कुल।
1: और MA के लिए आपको सिंगल रूम दिया जाता था, तो मैंने सिंगल रूम लिया। तब जाके ये मास्टर्स लेवल में जो 8 घंटे कैसे होता है, तो वो फिर हमको कम लगने लगे कि चलो 8 घंटे भी
0: कम है,
1: हम उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग फुल टाइम स्टूडेंट थे, हमारा काम वही था संगीत करना, संगीत पढ़ना।
0: पर आजकल पार्ट टाइम भी बहुत से लोग सीखते हैं
1: हमारे यहाँ। वैसे हमारा खुद हमारे संस्था जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, हमारा जो स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, हमारे सभी म्यूजिक के क्लासेस पार्ट टाइम ही हैं।
0: क्लासेस रेगुलर क्लासेस नहीं है,
1: नहीं हमारा 9 बजे वाला क्लास नहीं है। हम लोग जो
0: क्योंकि छात्र ही नहीं मिल पाएंगे आपको,
1: नहीं फुल टाइम, क्योंकि हम लोग फुल टाइम अभी नहीं चला रहे हैं। जैसे अभी सालों से हम लोग आफ्टरनून क्लासेस पार्ट टाइम ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे आप बोल रहे हैं कि एक तो मैंने इंडिया में भी जब मैं था, जब कोई भेंट या मिलता था तो बोले कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला नहीं संगीत कर रहा हूँ, बोले नहीं मेन क्या कर रहे हो, मैं मेन संगीत ही कर रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि अगर इंडिया में लोग मुझसे कि संगीत को मेन नहीं मानते तो मॉरिशस में तो और कम मानते हैं,
0: बराबर है।
1: तो मेरे ख्याल से उस फिलोसॉफी को लेकर ही शायद MGI में भी हम लोग ज़्यादातर हमारे क्लासेस 3 से 5:30 बजे इतने में क्लासेस चलती हैं। तो अब वो पार्ट टाइम है, लेकिन पार्ट टाइम होते हुए भी कम से कम 4 या 5 बार तो आपको आना ही है मौका तो नाम के लिए पार्ट टाइम है क्योंकि वो आफ्टरनून क्लासेस हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट आवर्स बहुत हैं। तो लेकिन अगर आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, टीचिंग में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, 4 बजे ऑफिस ख़त्म करके फिर भाग गए MGI आओ क्लासेस करो, तो फिर रियाज का टाइम फिर कहाँ मिलेगा?
0: बिल्कुल, यही मेरा प्रश्न था कि रियाज कितने, अभ्यास जो कार्य है वो कितना कर पाता है? सुबह जल्दी उठे 4 बजे
1: वही ना, तो फिर शायद वीकेंड में ही वो उनको
0: अभ्यास करता है।
1: अभ्यास का टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी दे हैव टू कीप अ बैलेंस लाइफ, उनका भी शायद परिवार होंगे या फिर जो भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर तुलना नहीं हो सकती जो भारत में आप
0: रेगुलर स्टूडेंट बने।
1: हाँ, तो वो रेगुलर स्टूडेंट होके जो जितना आप देते हैं एक क्षेत्र के लिए
0: जी,
1: तो वही फिर पूरे जिंदगी वही
0: काम आता है। आज आप प्रयास नहीं करते
1: कम
0: हैं
1: करते
0: तब
1: हैं,
0: भी काम
1: कम
0: चलता
1: करते
0: है।
1: नहीं कम करते हैं
0: हाँ। करते हैं
1: क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक हम भी सिखा रहे हैं, तो गा रहे हैं साथ में, तो वो भी एक तरह से प्रैक्टिस ही
0: हो रहा है अभ्यास हो रहा
1: हाँ। लेकिन जो सुबह वाला जो उठ के 1 घंटा अपने आप यू नो
0: अपने आप में स्वाध्याय करना,
1: तो वो कम हो गई है, वो डेफिनेटली कम हो गए हैं। लेकिन वही ना, जो 5 साल की साधना है ना, वही आप पूरी जिंदगी आप निकाल सकते हैं,
0: जीवन चल रहा है।
1: तो आप सोचिए कि अगर हम 5 साल के बजाय हम 10-15 साल दे सकते हैं, जैसे तब जाके फिर मॉरिशस में भी पंडित या उस्ताद बन सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। पर आज छात्रों के लिए जब आप प्रशिक्षण देते हैं तो उनको क्या आदेश देते हैं कि कितने समय अभ्यास करें?
1: तो आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग
0: जो कर पाते हैं वो अलग बात है, जो नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, पर आपके विचार से एक छात्र को कितना अभ्यास करना चाहिए?
1: मेरे ख्याल से तो एक दिन में कम से कम यानी 1 घंटा तो देना ही है।

हैं, और मैं सोचता हूँ कि आज बोलते हैं ना स्मार्ट प्रैक्टिस, कि यू नो यू शुड नो व्हाट टू प्रैक्टिस और हाउ टू प्रैक्टिस। तो अगर आप एक घंटा या एक ही लाइन में नहीं दे सकते हैं सुबह एक घंटा, तो फिर या सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे ऐसा कर भी कर सकते हैं, या तीन बीस बीस बीस मिनट

0: मिनट के बाद आप रेस्ट लीजिए या फिर ब्रेक लीजिए। फिर
1: एकदम से विचार आया जब आपने कहा कि आवाज, उसके लिए आपको कोई प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि मुझे ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए।
0: वैसे
1: एक संगीतकार
0: वैसे ये आपके बॉडी पर डिपेंड होता है, क्योंकि अब आप जैसे आप लता जी वो बोलती रहती थी कि वो कभी लाइफ में उसने आइसक्रीम कभी खाई नहीं, तो शायद वो यू नो ठंड के ठंड जो भी ठंड चीज है उसको शी वाज एलर्जिक टू दिस काइंड ऑफ फूड, तो इसीलिए वो अवॉइड करती थी। तो कुछ लोग ठंड खाने के बाद भी उनको कुछ नहीं होता है उनके आवाज को, तो कुछ लोग या फिर तीखी खाने से फिर गला खराब हो जाती है।
1: कोई कहते हैं नहीं जी मैं अचार नहीं खाऊंगा, मुझे मेरा तो गला खराब हो जाएगा। तो कोई कहेगा पानी पूरी नहीं खा सकते क्योंकि हमें गीत की का अभ्यास करना है, हम पानी पूरी नहीं खा सकते।
0: तो सब ये एक्चुअली वो इंडिविजुअल है, एक्चुअली इंडिविजुअल बॉडी पर डिपेंड होता है कि आपका बॉडी, वैसे आप वैसे तो आप, अगर आप थोड़ी सी वो योग जानते हैं तो आपके नेचर क्या है, कफ प्रकृति के हैं, वायु प्रकृति के हैं कि पेट प्रकृति के हैं, तो बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होती है,
1: अलग होता है।
0: तो फिर उसके हिसाब से आप खुद अपना बॉडी को आपको जानना पड़ता है,
1: जांचना पड़ता है
0: तो उस हिसाब से
1: क्या सह सकते हैं और क्या नहीं। और
0: हमारे गुरु जी तो कहते थे कि बोले विशाल गाने है ना वो रियाज पर डिपेंड होता है, वो खाने पे नहीं, उस डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल, मतलब अभ्यास की आवश्यकता है, बस अभ्यास कर लें तो आप जो मर्जी खा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी जगह, अब हम कार्यक्रम को अंत की ओर आ रहे हैं। हम आज की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे देश में गीत गवाई है, लोक गीत है, लोक नृत्य है, गमट है और प्रशिक्षित संगीत और नृत्य भी है, जब MGI जैसी संस्था सिखा रही है, तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या विचार देते हैं कि आज इतना ड्रग्स का बोलबाला है, एक तरफ AI का बोलबाला है, लोगों के हाथों से मोबाइल छूटता नहीं है, अभ्यास का समय कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हमें कैसी जीवन शैली होनी चाहिए, आप संगीत की ओर झुकाव बढ़ा पाएं, आप हमारी संस्कृति की ओर जोड़ पाएं, हमारी परंपराओं को सुरक्षित रख पाएं, इसके लिए आपका एक विशेष विचार युवा पीढ़ी के लिए।
0: नहीं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कला के साथ आप
1: खेल नहीं सकते,
0: आपको जुड़ना ही चाहिए,
1: जुड़ना चाहिए।
0: हाँ, और फिर लोक कलाएं के पीछे भी ऐसे एक मैंने पढ़ा था कि जिस समाज को अपनी लोक कलाओं पर गर्व नहीं होता वह धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देता है।
1: तो गमट सही।
0: या फिर गमट या गीत गवाए जो भी है वो केवल एक कला नहीं बल्कि हमारी विरासत, हमारी भाषा और हमारी आत्मा का दर्पण भी है। तो
1: वो एक आत्मा का भोजन है। जब लोक गीत लोक नृत्य से जुड़ते हैं तो वो हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को समृद्ध करने के लिए भी तो भोजन है, तो वो भोजन है जी। और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे?
0: तो वो बस जुड़े? वही, हाँ डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एक्चुअली इवन हमारे जो शिक्षा जो प्रणाली है उसमें काफ़ी डीप चेंजेस हमको लाना चाहिए, कि हमको सिर्फ एकेडमिक नहीं होना करना चाहिए। हमको जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हिस्ट्री भी नहीं जानते, मॉरिशस की हिस्ट्री खुद को हम नहीं पढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो शायद इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कला तो डेफिनेटली छोटे से ही। अब मैं एक रिफ्लेक्शन हमेशा करता हूँ कि बच्चे, अगर आप देखेंगे एक बच्चे को तो वो क्या क्या क्या करते हैं, बेसिकली वो ज़्यादातर खेल कूद में पसंद करते हैं, फिर म्यूजिक के साथ उनका जो रिएक्शन है छोटे से, और फिर पेंटिंग में
1: जी।
0: लेकिन जब मैं स्कूल में था तो ये तीन सब्जेक्ट था ही नहीं हमारे प्राइमरी स्कूल में, ना PE था, ना आर्ट्स था, ना म्यूजिक था। और आज भी प्राइमरी
1: जैसे
0: में तो
1: आपने
0: कम
1: कहा
0: है।
1: कि मैं संगीत सीख रहा हूँ। हाँ। नहीं, संगीत के अलावा आप क्या करते हैं, वो बात आ गई ना। हाँ। कि बच्चों के लिए था ही नहीं, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है संगीत का क्षेत्र या नृत्य का क्षेत्र जी।
0: तो ये तो बहुत यानी बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कि आज एनहांसमेंट या जो भी नाम अलग अलग सरकार आए अलग नाम बदलता गया, लेकिन द आर्ट्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो मेन है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको PE, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तीनों
1: से जोड़ना चाहिए।
0: हाँ, उनको छोटे ही से ही जोड़ना चाहिए।
1: बहुत अच्छे विचार आपने हमारे

0: साथ साझा किए स्थानीय गायकों में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप एक समृद्ध संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ के परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक अलग से भाग है, विभाग में आप कार्यरत हैं, आप इतने श्रोताओं को जोड़ते हैं, आप अन्य मंचों से भी जुड़ते हैं और गीत गवाई से ना जुड़ते हों पर अलग अलग कार्यक्रम जैसे भारतीय उच्चायोग है, भारतीय संस्थानों में, विश्व हिंदी सचिवालय में आपने बहुत सारी संस्थाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे गायक हैं, वर्षा रानी बिसेसर हैं, विशाल मंगरू जी हैं, निखिल हैं, ऐसे बहुत से गायक हैं जो आज हमारे लोक नृत्य लोक संगीत को साथ साथ हिंदी सिनेमा के गीतों को भी समृद्धता से और अच्छे से परफॉर्म करके मंचों तक पहुंचा रहे हैं जो कि आज की युवा पीढ़ी को प्रभावित कर पा रहे हैं। आपने बहुमूल्य समय दिया विशाल जी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हमारी टीम में अवि और दीपशिखा जी हैं जिन्होंने आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाने में सहयोग दिया, उनको भी आभार देंगे। और साथ ही जितने लोग फेसबुक लाइव से जुड़े हुए थे उनको भी हम धन्यवाद कहेंगे। रेडियो पर गीत नृत्य कार्यक्रम परंपरा का चलता रहेगा, फिर अगले शुक्रवार को मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, संगीत दिवस और योग दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को,
1: बहुत धन्यवाद।
2: और परंपरा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज देश की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम शाम 5 बजे वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगे। आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट से आम जनता, व्यापार जगत, निवेशकों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों को काफी उम्मीदें हैं। महंगाई, क्रय शक्ति, आवास, रोजगार के अवसर, कृषि सेक्टर की मजबूती तथा आर्थिक विकास को नई गति देने वाले कदमों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। वहीं सामाजिक सेक्टर से जुड़े संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे ठोस प्रावधानों की अपेक्षा कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। आज सुबह RM1 के कार्यक्रम में कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेन ने बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उनसे ये पूछा गया कि ये बजट जनता के लिए राहत लेकर आएगा या कठिन फैसलों का संदेश देगा। नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो बजट भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर किया जाएगा। साथ ही क्रियोल, भोजपुरी और अन्य माध्यमों से भी दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए विशेष अनुवाद की व्यवस्था की गई है। बजट प्रस्तुति के बाद विशेष विश्लेषण कार्यक्रमों में राजनीतिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक सेक्टरों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी तथा उनके संभावित प्रभावों का आकलन किया जाएगा। संगीत की कोई सीमा नहीं होती और यही संदेश लेकर MBC में इस वर्ष भी म्यूजिक डे मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने रोजमर्रा के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर अपनी एक अहम पहचान दिखाई है। किसी के लिए संगीत एक जुनून है तो किसी के लिए दिल की अभिव्यक्ति का माध्यम, और इसी भावना के साथ सभी एक बड़े कहाव के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उत्साह, मित्रता और संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रतिभा, मेलजोल और संगीत के प्रति प्रेम को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम दर्शकों के लिए इस शनिवार 8:30 बजे MBC 2 पर प्रसारित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा स्थगित कर दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार वार्ता की

0: तैयारियां अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौता हुआ था और अमेरिका ने ईरान पर लगाया गया नौ सैनिक नाकाबंदी भी हटा दी थी। हालांकि समझौते में लेबनान में हिंसा रोकने की बात भी शामिल है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और जारी तनाव के कारण वार्ता की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: सभी श्रोताओं को एक बार फिर से विविधता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जय श्रोताओं, हमारा जो कार्यक्रम है, अगर इसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो नंबर है 4028085, इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बाद में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो पिछले हफ्ते जो शीर्षक रखा था, हमने के जो नाम बा द यूज ऑफ नेम, हम उसी शीर्षक के साथ आज हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम आप MBC TV3 पर लाइव देख रहे हैं, साथ में हमारा जो प्रोग्राम है वो फेसबुक पर भी लाइव है और रेडियो मनोरंजन पर यही कार्यक्रम आप शाम के 3 बजे सुन पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ समय हो गया है आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलने का और उनके साथ हमारा जो आज का विषय है उसको आगे बढ़ाने का। तो चलिए हम लोग मिलकर स्वागत करते हैं कपिल देव रघुनंदन जी का, जो हमारे वकील हैं, हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान।
2: नमस्ते,
1: कैसे वा समाचार?
2: भगवान की कृपा से।
1: हाँ, बाहर के मौसम जन बात हमने की जन सेहत बाकर पर असर करता, लेकिन हमने की जन कार्यक्रम बा, इतना गर्म कार्यक्रम बा कि सबके जन तबियत बहुत ठीक हो जाए कर सके। कहे कि ढेर कोई के पास ऐसा ऐसा सवाल रहेला जेकर जवाब लोग के कहूँ नहीं मिलेला। हमने की एगो ऐसा कार्यक्रम लेकर आयला जा यहाँ पर, जहाँ पर वो लोग जब हमने के कार्यक्रम सुने लन जा तो कहीं ना कहीं किसी पर उम्मीद के एगो जन किरण बा लोग के जरूर मिलेला।
2: हमने के कैसे दिखेला तीन कार, हमने के भाई बहन लोग के रास्ता में ज्वाइन कर लन सन, बोले लन सन कि ये छोटा छोटा चीज जो बोले से वो कोसे ही नहीं अदेला सर,
1: फिर कोई नहीं जानेला।
2: हां, और लोग के बहुत मजे, लोग के मजे कर कपार कर बुद्धि खोल लेला कि ये ऐसा नहीं सनिच करी। अरे वो बोली कि कैसे एगो है, एगो मैडम है, गल है नोतिर हिया, बोले हुआ गल, बोले भैया जानेला हम का सीए कर ली, हम ही तो नहीं जानत है, हमके खाली बोलन सन हिया एगो सिया चिया डाल दे, कौन सी लिखल बा उमे है के, तो अब कहा उमेल उमे पढ़लक कि देखलक कि घर हुए बेच दिलक। तो हमने आनब सब पितार प्रोग्राम देखे के चाहला बहुत लिमन से कोनो चीज कर बस समझला नहीं, तो कोई से पूछ कि का लिखल बा उमे ताकि सीए कर बा,
1: कबो भी कुछो सीए कर बा, कबो भी कोनो कुछो सीए करे से आगे जरा पहला तोहरा तोहर कागज देखे के कर में लिखल को छिपा। तो आज के जो हमने के शीर्षक बा, हमने जैसे द यूज ऑफ नेम, हमने के जो नाम बा, पिछला हफ्ता हमने एक बार बात कर रही जा वकील जी, और एगो छोटा कुन रिकैप कर देला जा।
2: अरे हाँ, पहला हमने देखे ले सके हमने कि एगो नाम कौन चीज है, जैसे बोले सब आदमी के एगो चीते हुए ला ताकि वो नमो से जानेला भगवाने की पूजा करब तो करते नाम धर ले के चाहे तो इंसान के काकू मजे। तो हमने देखे ना सा एगो नाम सिग्निफाई करेला एगो आदमी के ओकर पिताशु ये कौन कालिते अजमी है, जैसे देख ले रही से ना एगो छित कोई के मिलेला QC हो, SC हो, कि बड़का बड़का नाम हो, फिक जैसे मैंने बोले सर एगो छीत ओके मिले बा ये रे ओसे ओकर वलेरो वे ओमे नहीं बा, मैं ओ का करेला रे ओसे करेला ओ आदमिया के नाम और ओकर पिता छु, एगो आदमिया के नहीं सकबा बोले ओकर एति नमवा बोलबा तब न ओके आई, जैसे कि हमने बोलतली सर होला एगो अवोका हो, एगो डॉक्टर हो, एगो प्राइम मिनिस्टर हो, मैं ये ओ लोग के आदमी बोला कौन डॉक्टर है, कौन अबुकाब के बड़ा थे, ये तो कौन प्रीमियर मिनिस्टर की, मैं ये देखिला सर वो आके ओकर कुमा जे है नमुआ ओके पहचान करेला कि वो आदमिया के आली। तो अब देख ले रही सर हमने के एगो नाम काहे चाहेला है, हाँ एगो नाम एगो कुमा जे एगो है कुमा एगो एगो दुआ एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एगो कॉम्बिने करेला जोड़ेला दूगो एलिमेंट से, जैसे देख ले रही सर एगो नाम सियनो जैसे बोला सा अरे गो पुनो, तो है दूगो वा चीजवा बड़ी चीज एपोत हाँ जो एदम चिफिये करेला एगो दुआ सिविल एगो आदमी के हर आदमी के चाहेला एगो पुनो आर एगो सियनो, तब ओके जन्म वो आदमिया के है। तो ये हमने के देख ले रही सर एपोतंस कौन चीज हर नाम के हर इंसान के चाहेला कहूँ जैब कोनो पापी रही फॉर्म भरे के चाहेला चारों बगल देखल जाए

0: तुहर नाम कहा, नाम नहीं रही था आदमी बोली भी कैसे नहीं दिखला रहे कर ले हुए माँ बाप नहीं दिखला रहे कर ले तुके वो नाम नहीं दिले बा अभी तो हम आप सब पितार आग देने सांस में कैसे सुसौजू चाहला चाहना दिखला रहे कर दे के लड़का के है। मैं अब एगो नाम के इम्पोर्टेंस दुनिया में जैब नाम नहीं रही तो कुछ नहीं सकब करे कैसे एगो पासपोर्ट सकब निकाले तोरा मन हो जाए के कैसे जैब एगो हई में एगो हई खते दाँचीते हई निकाले यहाँ तक मोह नहीं बा लाग देने सांस नहीं बा। मैं नाम बड़ी बड़ी एगो चीज इम्पोर्टेंस
1: निकल पाते चाहे नाम रही ना तो हाँ। लेके तो सगरे सगरे तोहरा कैसे तोहर पहचान बनेला
0: हाँ न तो नहीं रही था नहीं सकब करे अरे कैसे कॉम्प्ले करब तो लग दे सांस नहीं
1: बिल्कुल
0: हलो तो हमने बोलती सही था तीन कार्ड हमने जाने सब भाई लोग बहन लोग के कैसे लड़का होएला तो उजाला दिखला रे करे ले
1: हमने ये भी बोले रही जब माँ बाप नहीं रही तो लड़का कैसे कैसे चाचा कोई रही उस सखियों के दिखला रे करे और कौन नाम से दिखला रे करे जगह जा कैसे करिए जा। तो आज के हमने के जो विषय बा एक पर जब हमने आगे बढ़ब जा एगो रिकाप तो होगा हमने के
0: हाँ जी
1: होगा हमने के रिकाप तो चला अभी जो बा बतियाब जा हमने पिछले हफ्ते बतिया तली जा लेकिन समय नहीं रहा कार्यक्रम जो रहा हमने के रोके के कहे कि हमनी के पास समय उतना नहीं रहा था अभी जो बा हवे कार्यक्रमों में अब हमनी बात करब जा अब जो हमनी के विषय बा एकर में आगे कौन कौन कौन सीजे
0: अली पहला चीज हमने देखे आज है के लिए कैसे एगो हई मैडम जब शादी करेला तो कैसे ओके एगो नाम शियनो मिलेला एक बार मामसिल रही था तो कर मामसिल के नाम कर माँ बाप के नमो सा सिर्वी करी ना तो अब शादी कर ले बा आलू जोन दिन पहला चीज एगो है मादाम या मिशे ओके मन बा शादी करे की तो के जाए के चाहा लेता सिविल हाँ। लेता सिविल में तो हूँ मजे सदिया के कुमा जे फोमाली थी हुआ भरे के चाहेला ओहे दिन हुआ ओके स्वेते करे के चाहेला को नाम से शादी के बाद वो आदमिया जनाई
1: तो हमने जहाँ तक जानी ला जाए एगो महिला जब एगो छुकड़ी शादी करेला तब हमेशा अपन जो मेडन निम्बाओ के छोड़ के तब अपन पति के नाम अपनावेला ना
0: ई सुनी ला सर
1: हाँ ई हाँ। जहाँ तक हमने जानी ला जाए कि एगो छुकड़ा छुकड़ी शादी करे था तो जब छुकड़िया शादी कर लेला तो जब ओकर शादी हो गल तब ओकर जरा दूसर कच दम से निकाले के न मिसेज के तो जब देवा निकाली तो ओकर में ओकर पति के नाम रहला
0: हाँ जी
1: ना
0: अली ई एगो एक्सेप्शन
1: ई हमने जानी ला
0: नहीं अभी एक बार हां ई तो नॉर्मल में सब कोई जानी
1: है
0: अली तो पहला चीज है जब एगो मैडम शादी करेला तो ओकर नाम लेवेला ओकर मिशेवा के पति के नाम लेवेला जब शादी करेला सिबोजों सिविल कुमाजे पहला ऊ जाला ऊ दिन वा बोलेला कि जानेला हमर मिशे के नाम ऐतेल है हम चाहते हैं हमर मिशेवा के नाम से कुमाजे हमर सियनो जाने के पहले तो कर नाम रखे से उदे उस हाउस में मां बोतली सा तो हर नाम है कब शादी कर लेला त स्वाजगी कर लेला तो पति के नाम अब तब सूचित हुआ कि अरे काहे नहीं हम आइला अपन है राम खिलावन के कुमाजे है में अपन नाम अपन बाप के नाम अब ऋतु ने करबा तारेला भी देखब जीवोस के विषय तो हिया कब गईला शादी करे तो हुआ लेता सिविल के ऑफिस हुआ के तोरा जनाई के चाहेला कि देखा हम चाहते हैं हमर मिशे के सियनो हमर में आज से हम के जाने के
1: हाँ, यानी कि जब गईला शादी के अप्लाई करे हाँ? अप्लीकेशन कर बस शादी के अभी
0: हाँ?
1: तो जब दोनों जना गईलन सा तो छोकरिया के जाना बोले के कि हम जब शादी कर ले तब तो अपन पति के नाम से हम चाहते हैं कि हम के सब कोई जनियन जा
0: हाँ?
1: यानी कि वो अपन सिनाचा छोड़ा था अपन पति के सिनाचा अपनावा था
0: अरे एक है दूसरा हुआ सकी जाके लेता सिविलवा के बोले देखा हम के नई मन बा हमर मिशे के नाम सियनो लेके हम चाहते अपने नाम रखब समझल ना ओकर नाम कैसे थरुआ तो नमो बोलवा हर भगत
1: हाँ।
0: तो नाम रहल मामजिल के काम खेलावन तो बोले हम मिशेवा के नमो नहीं चाहते हम ओकर सियनो नहीं हमरे जोन बा हमर लाग देने सांस में हम चाहते औसने लेके हमके मन नहीं बा कि हमर मिशे के ओकर कुमाजिया नाम है डाले के हमर नाम संगे और सकेला उ मिशेवा कब जाय हुआ कब कुमाजे दिखलारी करी कुमाजे सदिया के ऑफिस में तब पूछे ना ओकरो से पूछेला कुंज लेता सिविल के ऑफिस हुआ का कर बे तू बोले अब ओकर इच्छा हो ओकर कुमाजे विश होई तो सकी बोले जानेला हमर मैडमवा के नाम है बासी बुजों काम खिलावन हम चाहते हैं हमर नाम ओकर नाम में भी जोड़े के अब देखला का होल ऊ जनाई मिशेवा मदम

0: ouan ke nemoise. I manad mina I janela. I l'état civil ke kanun likala, hein. Te declare nya ce qui Mishiwa ken lam lei, sa ki Mishiwa ken nam nei lei, sa ki Mishiwa madamwa ken nam me ajoute kare.
1: Acha, apan nam me ajoute kare.
0: Haan, ajoute kare. Kasi tum ram ke lawa na, si bozoan maaf kare. Yo, jay samni sadi kare lehen sa. Ta hamar nam Raghunandan, ta hamulab hamar nam chantan tuar nam. Ta tuar nam, hamar nam ab se rahi Raghunandan. Akuma jay sa jaya ram ke lawa, tab Raghunandan. Nei ki kali sif Raghunandan. इखेला ये एगो बड़ी इम्पोर्टेंट है आली ये हमने जैसे बोली लासा सकी ओकर नाम जुन आगे रहल जैसे कैसे बोलते हैं राम खेलावन के ये चीलीजे करे जैसे ओके मन हुई जैसे कुमाजे तुरा मन हुई वही नमुआ रखे के बोले हम नहीं समझे करम तलिविता सिविलवा हुआ है लिखेला कि ये अदमिया ओके मन नहीं बस समझे करे के अपने नाम ये कानून देवेला हक उकरे नाम रहे के एगो बड़ा चीज असर भी अच्छा रहल अपने नमुआ रहल दे देखत हम मिशवा के नमुआ से बुझो साउंड नहीं करता लिमन से तब था ए नहीं हमार नाम तो बड़ी जोली रहल या एक बार अभी तारेल देखो सर एक बार आदमी न एगो इम्पोर्टेंट चीज है कोनो अपना आदमी अपन नाम तो ओकर लिए बड़ा बहुत बड़ा चीज है
1: ढेर कोई अपन नाम से एगो बड़ कैसे बोला बहुत बड़ा काम कर देवे लन जा और सब कोई उही नाम से लोग के जाने ला
0: अभी तारेल आप
1: समझे कर दे बना नमुआ
0: जब एगो पति पत्नी शादी कर ले बा सिबुजो ओकर नाम रखल है मिशिवा के नाम में दिखलारे कर कब सदिया रखल मडमुआ कब मिशिवा मर जाला मिशिवा मर जाला तब मडमुआ सकी उही नमुआ रखे ओकर पति के नहीं रे तू ने होवेला ओकर होई ई जे ओके चाही ता समझला ना तो साबिया नमुआ रखी अनमन मेम की पतिया है मर गलबा कुछ नहीं समझे करी ओकर नमुए ओके रखी मिसिल मा उरम नमुआ रखी पति पतिया के तब लेक नहीं से रे शादी करी रे मार गई जैसे हमने बोला था जब शादी करी तो अब तो हुआ सांस में हो जाए ना तो अलग वेव जैसे हमने बोला था जो को वेव रही तब कुमार जी तो ओके मन बान नमुआ रखे के हमेशा के तब लेक मर जाए तो उसकी नमुआ रखे ओकर पतिया के नमुआ जो कब गरल शादी करे ओकर नाम में दिखला रे करे लो उस दिया
1: अच्छा यानी कि अजय पति के देहांत हो गल बा तो हो जन अजय पत्नीवा जन बा वो चाहे तो अपन पति के नाम सकी रखे
0: जरूर हाँ और कोई नहीं सकी हम पैसे करे अरे दिखा कितना कुमार जी एपोटा हो जाना है अभी गोदमी के कब हो गल तारल देखब सलाख देने सांस अब यहाँ ओके कुमार जी मिल गल ओकर नमुआ में ओके कुछ की तरह का नहीं बा वही नमुआ से ओके जानल करी चाह ओके रही जैसे तरलवा बोला सिबुजो ओकर नाम उ सांझे नहीं कर रहल ममजिल हुए के नाम ले ले रहल कब हुआ गरहल उ अदमिया सकी एगो दुखतेर एगो बोली के हुई तो उ एगो दुखतेर कब रही तो सब कोई ओके जाने उ नमुआ से दुखतेर एतिल तो उ सकी नहीं सांझे करे बोली काहे ओकर प्रोफेशन से सब आदमी जाने ला उ नमुआ दुखतेर वाके काहे
1: दुखतेर लोग के ज्यादातर जब बतियाई ला जाता सब के लोग के सियानो जस्ती रेवेलन जा
0: हां तो देख ला हाँ अरे नो शियनो से ओके ज्यादा जाने अनसन मैं तीन कार चार जाला तो ओके बोले ला दुखतेर कैसे वकीलों के तो नहीं बोले ओकर नमुआ तो बोले ला हाई अब वो का कैसे बोला उसे वकील तू का बोला तू समझो ओकर नमुआ नहीं ली मैं ओकर नमुआ से ज्यादा जाने अनसन अब एगो लड़का के ओकर है माँ बा ओके ओकर पतिया के अब जीवोश हो गल अब ओके मन बार वो नमुआ रखी के हाँ बिचारे देखो जब जीवोश के बाद वो भी सकी रखे सकी तो नहीं साझे करे बस ओकर लड़को के ऊ नमुआ से जानल जाए अभी कोई तो बड़का एगो आदमी जो बड़का पोस्ट करता मॉरिशस में भर दुनिया में सबको योग जाने ला तो नहीं बचा क्योंकि मन साझे करे कि ना बस कुछ हाँ पत्नी रहल एतिल के समझ ले अब ओकर मजे ओकर वाले एगो अतासे हुए ला ओकर कमुआ से ये ओकर नाम हो तो ओकर नाम से जनाई सब आदमियों के जानी पहचान हुई उ नमुआ से तो उधर नहीं जाके साझे करी ना वो चाहे कि उही नमुआ रखी आली ये तो बड़ी अच्छा बा जब एगो एगो मैडम बा ओके मन बा है रखी के ओकर है नमुआ मेम की जीवोस ओकर बूढ़ा के नमुआ कोई नहीं सकी पैसे करे और ओके जीवोश मिलल होई रिप्चिय दे ला वी कोमिन ई एगो रिप्चिय दे ला वी कोमिन हो मतलब ई हो तीन बरिस से कुमा जा से पारे हो गल रलनसन शादी तब जीवोश देल बा रिप्चिय दे ला वी कोमिन हमने के दिखब सक अब जीवोश आप सा तब दूसर दूसर रीजन बा जीवोश जीवोश पैसे गोद में के मिले फुट में जीवोश में

0: लेला दोनों मजे म्यूचुअल है कि एक मजे अग्रीमेंट में एक मजे है कर दे रनसन कभी दस ऑन सेपरेशन कभी सिंक ऑन सेपरेशन तो उस सब आदमी के लोग के मिले ला जीवोस तो हियाँ जब एगो जीवोस प्रोनोंसे होल बा लाकुर में रिप्चर दे ला वी कोमिन तीन बरी से सेपारे होल बा वो आदमियाँ सकी वो नमुआ रखे जो नोकर मिशे हुए के रहल
1: अब अजे म्यूचुअल हो गल तब
0: हाँ जी नहीं जी म्यूचुअल होल था अब तू दीपा कैसे ही करता ना नहीं ओके मन बा उन नमुआ रखे के जोन रहल कि कुमार जो कर पति के कोई नहीं सके ओके आप ऐसे करे
1: अच्छा एक बारे में बतिया ला जाए गो गो कॉलर पकड़ से मिले ला जा हेलो
2: हेलो हेलो नमस्कार जी
1: नमस्कार जी आपका नाम
2: वेदिका जी नमस्कार मैं ध्यानी हूँ
1: हाँ जी ध्यानी जी बताइए कैसे हैं
2: परिस्टर जी आपको भी नमस्कार
0: आपको भी भैया
2: और आपको बहुत धन्यवाद परिस्टर जी एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में
0: बोले
2: आप बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं नाम के बारे में पहले जैसा अब मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ ये बंटवारा के बारे में ये क्या होगा अगर जीविया के बंटवारा होगा या किसी विषय पर भी तो ये कैसे होगा क्योंकि पहले जैसे शैक्ष्य के नाम पर पत्नी जब विवाह कर लेती थी तो पति के नाम पर ये जीविया के बारे में क्या होगा
1: देखो अगर अगर हाँ मैं समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात तो अभी बोले ई बोले खोजत हमन कि मान ला एगो पत्नी शादी कर लन और अपन नाम जुनबा उ सौजे नहीं कर लन होवे नाम पर हवन अब पत्नी पति पत्नी संगे हवन जा सब कुछ संगे हवन जा मान ला काल पति के कुछ हो गल तब पत्नीवा जुनबा ओकर तनाचे पति के नाम पर नहीं बा हाँ
0: जैसे देख लिया शादी कर ले बा सिविल और हमनी तो सब कोई जाने ला सा मया सिविल वही रिकोनेट करेला कि एगो पति पत्नी हो वनसन और दूसरा नहीं बा मयाज गलीजिए हमने के तलीजो नहीं बा हमने के रिकोनेट नहीं होला हमने के कानून में तो हिया मेम की कुमा जे ओकर मिशेवा के नाम नहीं बा ओकर है लाख देने संसवा में और हिया मिशेवा से बोझो गुजर गल बा अब एगो पताज करे खोजे था वनसन हाँ तो हिया मडमवा रख ले रल ओकर मामजिल के नमोए तो लोहा देख ले से ना जब एगो आदमी शादी करेला वो मडमवा ओके मन नहीं बा मिशेवा के नाम ले के तो हिया रख ले बा कर अपने नमुआ में जब शादी कर ले लग कपताज के विषय आई तो सैफ पोमे तब मांगल जला लग देने सांस कहाँ बा जब लाफी दाविद दे सक्सेशन करल जला तो ये मांगल जला सब जिगिचे के हो तो हम सब कोई तो जैसे जानी ला सर जब पति मर गल तो पत्नियाँ तो एगो पारवो के मिलबे करी और ओकर लड़का हो तो ओकर लड़का के भी मिली संगे तो हियाँ देख ल कब लाग देने सासुआ कब देख लन सन तो हुआ कब लाफी दा विधवा करी तो बोली ना ओकर नमुआ से भूसों ओकर वेदिता ऐतिल बाकू मजे ओकर नमुआ तो ये ओकर जिगिचे गिरेला
1: भाई
0: हाँ मया सिविलवा एपोता हाँ नमुआ यहाँ बड़का चीज नहीं खेली बस कि ओके धोआ लकेला वही नमुआ में ओके एक मजे रखी जो नुकर मामजिल के रहल मैं लेता सिविल के देखी ओकर लाग देने सांस लाख मयास लाख देने सांस में तो भूल जा यहाँ देखी ना लाख मयास तो हर चीज जोन अरे गो चीज भैया ये बोलते हो अंसन बोल दे से कुछ छोटा चीज जब एगो भाई शादी करेला उ नमुआ बा ओकर कुमा जब ममजिलवा के या मिशेवा के कब ओके शादी करेला उसका शादी करी कोगे भी है या शादी करी सेपरेशन जी भी है जब मर जला है पतिया या पत्निया जो ओकर धन दौलत हुई तो ओके ओकर मादाम के मिलेला और मिशे के मिले तैया और मेम की सेपरेशन जी भी है एक बार भाई सोचेला हमने आपसे शादी के बाद जीवोश में कैसे पता चल जाला जब एगो आदमी शादी करेला मैम कि सेपरेशन जी भी है एक नाम कोमिनोते ते भी है कब शादी करेला सेपरेशन जी भी है जब मर जाला तो छोड़ के जाला के मिशेवा छोड़ के जाला ओकर पत्नी के ना तो ओकर पत्नी तो ओकर जगीची है सब धन दौलत ई कुमा ज एगो कन्वीनियंस नियर है कि शादी कर ले बा सेपरेशन जी भी है नहीं सोचिए कि नहीं मिली जे नई लड़का रही सब ओकरे मिली और जे लड़का मिली तो लड़का हो तो बाँटल जला एक पार मदमुआ के मिली और हर लड़का वालों के एक एक पार मिली
1: बहुत बढ़िया चला भाई जी की जवाब मिल गल हुई और कोनो कॉल बा नहीं कोई नहीं, बात कोई बात नहीं। हमने के छोटा लोग सके अंजाम के फोन करे 4028085 पर और

0: चले एक साथ हमनी आगे बढ़ब जा। अब हमनी के जोन कार्यक्रम बाय कर में अभी हमनी बतिया तली जाना कि कैसे एगो नाम जोन बा हम कौती दौची थे कैसे एगो पत्नी सके अपन अपन पति के नाम नहीं ले।
1: हाँ जी।
0: तो अभी पत्नी पति के बात कर थे जा, अब लड़का लोग के बात करी ला जा। हमनी के जोन लड़का लोग बा मान ला माता जी जोन हवन, एक मिनट है, हाँ माता जी हवन वो पति के नाम नहीं ले ले हवन, उनका नाम एक सा पति जोन बा का नाम वाई है। अब दोनों शादी कर ले हवन सा लड़का और बा। अब लड़का के नाम ले।
2: हाँ लड़का हमेशा दिखलारे हुए के कानून में बगल बाप के नाम में। एक दिखलेर ली सर। दूसरा जब बापुआ नई गल बात दिखलारे करे है, है के उकर उकर लड़का है, उकर नाम हो लड़का के कभी नहीं जाला एक बार बाप में सिलमा का मऊआ गल हुई दिखलारे करे तो वहाँ लेता सिविलिया में पूछी ना बापुआ के है तो बोली ऐतिल उकर बाप ऐतिल तो वहाँ डाली उकर बाप में दिखलाशो होल बा मऊआ बगल से मैं बापुआ के नाम हुआ तो वहाँ लेबे करी और यहाँ तो पूछी ना लेता सिविलिया के ऑफिस हुआ तो शादी कर लेबे कहाँ तुर लाख मवयास बा तो तले जाइबे करी।
0: हाँ।
2: पस की जब एगो लड़का नहीं हुए ला या एगो आदमी गुजर भी जला तो चाहे ला को मजे लाख मवयास या लाख देने सौ ते जाए कि कहते दौची थे उ सब तो वहाँ बोली ना तो बोली हाँ ओकर बाप यहाँ शादी कर लेबे सिविल हाँ तो बापुए के नाम ले कानून हमने के जोन बा है कुछ सिविल मोशिया लिखल बा फ्रांसे में और हमने गुवेरे हो सर लालुआ फ्रांसे में वहाँ जहाँ बोले ला कुछ सिविल एलेता सिविल के कब सिविल से चस आठ जिसे हमने वैसा बोले ला एगो लड़का हमेशा दिखला रे हो ला अपन बाप के नाम में।
0: अच्छा एक और कॉल बा ले ली राजा। हेलो
3: हेलो विनीता जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी आपका नाम?
3: मैं इंदिरा हूँ, हम इंदिरा है।
0: हाँ जी इंदिरा जी
1: नमस्ते। नमस्ते
3: कपिल चाचा के भी नमस्ते।
1: नमस्ते।
3: हमारे को क्वेश्चन बात पूछे के मैंने जाना था कैसे रिस्पांस दे बस
1: ना बोला
3: एगो कैंपमा मनाइबा त कितना पेस्ट आते तोहर वाजन से चाहे छोड़े की
2: नहीं एगो कैंपमा के विषय बहुत चीज हमें हम बोली ना तोरा कैसे माफ करिया हमरे ते एगो कैंपमा तुम नहीं जाने से कर कडनुआ कैसे गुवेना जानेला कभी एगो कैंपमा लेबा कोनो कैंपमा जोड़ल बा एगो दूगो तीन गो सब संगे बा एगो चीज है तब देखब नहीं सकब सही कुमार जे है ऊ कॉप में वहाँ ओके कुमार जे को डिस्टेंस छोड़े बस ओकर मिराई ओकर मिराई के सट के बनावल जला ई एक दूसरा अब तुहर एगो कुमार जे बा एक जगह तुहरा मन बा हुआ एगो कॉप में बनाई के जैसे हमने के कानून बोले ला हमेशा दूगो आदमी कब एगो वाजें रहेला तो चाहे ला तीन पियर छोड़ के मिशवा बगल या हो बगल कुमार जे हो मदमुआ बगल
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: बस की तीन तीन पिए चैला छोड़ के तब बिछुआ में मिरयुआ वेला तो जहाँ मतलब कि जहाँ मिरयुआ बा हुआ से छोड़ के तू भीतरे बनाई के तोरा चैला तीन पिए छोड़े के अनमन कंपमा के सब रही मिसलमा कंपमा जोड़ेला तब तब तब मिरयुए में बनावेला तब कुछ है नहीं बा।
0: चला ये तो हमने विषय से बाहर रहा लेकिन फिर भी जवाब दे देना बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपन जो सब्जेक्ट बा एकर में आगे बढ़ जा।
2: अब हमने बात तो कर दिली सर नाम नो शो सब बोल ली सर शादी कब हो जाला कैसे नाम सजेला जीवोश हो जाला कैसे बे हमने देखब सर अभी बस सर्टिफिकेट आग देने सांस ये काहे हमने बताई सर ये तो नमो में आई
0: समझे।
2: हाँ हमने देखा था एगो आग देने सांस ये एगो आग देने सांस बस सर्टिफिकेट खून छी है एक लोग सैप सैप कौन से ही कुमार जी बड़ी कभी इम्पोर्टेंट ये एगो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है जो आवेला हर सिटुआइयन के वो जब ने होवेला उकर नाम में आवेला
0: उकर में उकर नाम आवेला माँ बाप के नाम आवेला कौन समय में पैदा हलो अंजा कहाँ पैदा हलो अंजा लुपिताल में पैदा हलो अंजा कोनो गांव में घर में पैदा हलो अंजा जितना कोई और एक में विटनेस भी रहला।
2: हाँ विटनेस भी रहला कब जब लड़का के दिखलारे करे के चाहे गुते मुँह में हम देखते हैं कमा तू लिमन से कर देवा देख ले ले कोई बात हाँ लाख देने सांस देख ले रहा कौन सी बाहू में तो हमने देख ला सर एगो आग देने सांस ये गुवेनमा बगल से मिलेला गुवेनमा बगल से मिलेला मिला जो सेक्शन है मजे रिस्पॉन्सिबल वो लेता सिविल है मैं बगल गुवेनमा बगल से है मिलेला ये एगो लेता है लेता सिविल इशू करेला एगो कुमार जे लाख दे नेसेंस आले आग दे नेसेंस जैसे बोल रहा बहुत सा इंफॉर्मेशन ओकर में मिलेला जैसे हमने से बोला है कौन तो नहीं

0: कर इन्फॉर्मेशन बहुत सा एगो आदमी के जैसे कि पहला चीज का बड़बड़ एगो लाग देने सांस तो जनबू आदमिया के एदा चीते का एगो पास जना सब देताई बा जैसे बोल ओकर भैनो रही ओकर नाम रही ओकर दात रही कबने से प्लास कहाँ ने होल बा
1: पिता बजे
0: हाँ सब बा सब। हमनी हमनी आ आली एगो बोली कि तू तोरा मन बा शादी करे के एक मिनट की शादी नहीं कर ले एगो शादी करे खोजत हुआ तो लाग देने संसवा से जान जाइबा वो पैदा ही कहाँ होल बा मॉरिशस में कि या दूसरे देश में उसे की दिखे में तरी वो तो अनमन मॉरिशिया लोग था मैं यहाँ कब ओकर लाग देने सांस देखत हो तो देखता कि नहीं से बुझे इंडिया से बा सी पकम

0: बा पिता
1: बजे
0: हाँ सब बा सब। हमनी हमनी आ आली एगो बोली कि तू तोहरा मन बा शादी करे के एक मिनट की शादी नहीं कर ले एगो शादी करे खोजत हो तो लाख देने संसुआ से जान जाइबा उ पैदा ही कहाँ होल बा मॉरिशस में कि या दूसरे देश में उसे की दिखे में तरी उ तो अनमन मॉरिशिया लोग था मैं यहाँ कब उकर लाख देने सांस देखा था तो देखा था कि नहीं से बोझ इंडिया से बा सी फकमरा मिला था यहाँ जब तू कुमा जा वो लड़को आ देख तू देख ला रहे हो लोग ते को सर्टिफिकेट नंबर डाले ला से बोझ 465 से बा कुछ भी हुई तो वो देख ला एक उन्नी में हुआ तो हरा कुमा जा बड़ी है पोत है वो चले ला जहाँ तू जाइबा तो यहाँ देख ला सब चीज देख ला राश आज ये उकर खीसा उकर माँ बाप परिवार उठ के सब जाफे एगो लाख देने सांस उमे से कुमजे है बोलेला उ आदमी कौन है खाली एगो लाख देने सांस कितना लैंग्वेज में लिखल जाला
1: हमनी तो जाइला सांगले में या फ्रांसे में अंग्ले में
0: हाँ तो मॉरिशस में पहले लिखत रहन सन सिपोज अंग्ले में अभी मॉरिशस के लाख देने सांस या जइब निकाले एगो नया तो देखब अंग्ले और फ्रांसे में बा बस ही काहे ये गो कुमा जे अब आदमी के नहीं देवे ला कुमा जे है था का कि दूसर देश में एप्लीकेशन कब कर लग तसे बुझो लिख दे ले भाई फ्रांसे में अब हुआ अंग्ले के कुमा जे है करता तो एगो चाला के कुमा जे ट्रांसलेट करे के भेजे के नहीं अब का हुए ला ऑफिशियल लेता सिविल देवे ला एगो है लाख देने सांस जोन बा अंग्ले और फ्रांसे में बोलते हैं सही में लाख देने सांस में कुछ छोटा चीज बोल दे ला जाने ला अभी तोरा कोई कुमाजे चाहेला तोरे गो खत ए दांचीते कुमाजे है निकाले के तन पहिले तो जातली से चाहेला कुमाजे एगो पपीवा मिले के ना खत ए दांचीते वा के कुमाजे तब ना तोर खत वा मिले सब मैं अब सब अब जब तोरा देवेला एगो लाख देने सांस लईकुए कैसे जन्म ले लेबा भूल ना भी अभी तो कुमाजे कितना बरिस नहीं होल बा जिस भी तो नहीं होल बा मासे कैसे ने होलबा अभी के लिए लेता सिविल दे तोरा एगो सर्टिफिका आग दे नेसांस जोन में अंग्ले बा फ्रांसे बा और तोहर आईडी नंबर उमे बा
1: लैकवा के
0: ना लैकवा के हर आदमी जोन इंसान अब ने होएला उही बकतवा ओके कुमा जे एगो कहते दा चीते के नंबर मिलेला खाली खाल देख लिया अब
1: तू दा पर देखे के लेकर
0: हां देख लिया जो जोन एगो निकलवा एगो नया तो देखबा उमे बा कुमाजे सब बा है है दिलेबा आ जैसे बोली ना लिखल बा अंग्ले या फ्रांसे में और ये हमने देखिला सा कि लेता सिविल में हर आदमी के कब ने हुए लंसन ते एगो रजिस्ट्री बा एगो पा है बा रजिस्ट वो रजिस्ट्रा में लिखल बा सब डिटेल उ लोग रखे लंसन सब दोने एगो रिकॉर्ड वो है में इंपोर्टेंट है आलू तो हुआ एगो लड़का जैसे देख ले रही सा चाहेला 60 जू के आगे 60 जू तक मिलेला मैं 60 जू के आगे ओके डिक्लेयरी कर दे के जाए के चाहेला लेता सिविल एक बार आदमी का करेला वक्त नहीं मिलेला ओके नहीं गल बा कोनो तक कुमा जा आज ऐसन करेला कि कुमा जो के नहीं जान ले बाबू लड़को आके छोड़ दे भाई मैं रजिस्ट्री करे के गो लड़का एगो नाम ऑफिशियल कुमा जा है जाए के लेता सिविल में डिक्लेयरी करे क्योंकि डिक्लेरेशन है करे नाम तो चाहेला 60 जू में कुमा जे आगे पहले रहल कावन सैंक तो अब कुमा जे एक बार देखे लन सन आदमी के कुमा जे वर्क उक नहीं मिलो या जाने का है लेता सिविल उ जाने गुवेर में जाने का है मिसिल में 60 जू के कुमा जे तोहरा देवेला जाके हुआ लेता सिविल में डिक्लेयरी करे के उ कुमा जे लईकुआ कब कुमा जे
1: तो एगो लईका मान ले एगो लईका मिलल बा कोई के कहूँ पर जंगल में फेंकल या कहूँ पर एगो लईका फेंकने लईका बा अपने जाने से कहाँ पैदा होल बा ओकर माँ बाप के बा लईकवा हुआ कैसे गल तो वो लईकवा के लेके जयन सा के एगो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेला
0: हाँ जैसे देख ली ना जब एगो लईका नहीं हो रहा बोल जैसे बोतली मको है
1: सरकार अपन तरफ से
0: हाँ एगो बिस्तो भिया नहीं होल बा तो जो जे ओके देख ले बा मवा तसे बुझो लईकवा हो के छोड़ के वहाँ बवा में चल गल बा सिपाही पहते में तो ऊ तो कुमा जे कोई नहीं जाने सा कोई ना तो एगो आदमी आई सी बोझो हम ही है एगो बोलियो कि जाके कुमा जे लग गल लईकवा के अब हमके मन होई है बोलत है तो हम साके सब लेता सिविल जाई ऊ लईकवा के दिखलारे करे मैं का करे लन तीन कार में पूछे ला ना हो लेता सिविल के कहाँ लईकवा होल ला पुलिस से बोझो ऊ उठा के
1: सरकार के
0: तो हुआ सकेला कुमा जे है लेता सिविल वा एगो नाम दे एगो आदमी के कुमा जे जोन या कुमा जे एगो एगो एगो नाम दे के चला हर आदमी के ना तो जमे एदा चीते जानल जाई तो यहाँ देख लो हो के जोन आदमी गल बा दिखलारे करे नॉर्मल माँ हुई तो माँ के नाम में रही, बाप हुई तो बाप के नाम हुई में हुई, कभी तो दोनों के नमुआ में डाल।
1: अच्छा,

0: अब एगो सवाल और तोहर से हम करे खुआ थे मान लेगो पति पत्नी डिवोर्स ले ले लंजा से पागे हुए लंजा तब मान ल 40 बरिस के बाद काफी लंबा समय बाद या 50 साल के बाद ना डिवोर्स ले वत होन जा त पत्नी जोन बा शादी करले त अपन पति के नाम ले लन अब शादी जब हो गल बा तब जब डिवोर्स हो गल तब पत्नीवा वो अपन पति के नाम सेवी करी या माना पति बोलक नहीं उकर धुआनी है सेवी करे की
1: हाँ जैसे बोले तेरे लुआ सदिया के विषय हुआ में कब घर हल दिखलारे करे शादी तो बोले रल ओकर नमुआ कौन सी है ना तो ओकर नाम बोले हुई ओकरे मामजलोए के नाम रखे को जाता या पतिया के आजूते करे हाँ। या कौन सी अब यहाँ उतना बड़ी सोगल सिबुजों का आंता होगल अब जीवोस मजे होगल है इसे
0: सब कोई हुए नमुआ से महिला के जाना थोड़ा जा अब महिला वा बोला था हम नाम कैसे समझे करो
1: हाँ सकी एगो मांग करी तेरे वा दिखले सब रिप्चुए दे ला वी कोमेन सेपारेशन और मजे जाके बोली कि बा ऐसा था कि हम चाहते हैं मर मिशेवे के नाम रखे के हाँ मिशेवे के नाम मेम की जीवोस हो गलबा वो नमुआ रब नई मतलब की तो अब जीवोस हो गलबा तो तोरा चाहना सांसे ही करे के
0: वो चाहना सांसे करे के
1: हाँ जिस नहीं यही ना बोला था अब जी तोहर नाम शादी कर ले हुआ ममजिलवाए के नमो में अरे अब तस जीवोस हो गई ला तू तो कर तो वह तो वही रही
0: हाँ।
1: जोन कुमा से पहला शुरू अब वो में डाल दे रहा तो हर मिशेवा के नमुआ से हाय कुमा जी चले अब थोड़ा ऑप्शन बा थोड़ा मन बात सांसे करे कि सांसे कर बा अब नहीं मन हुई सांसे करे तो मिशेवा के नमुआ में कुमा जी जाई बना किसे नहीं दिख रही सर एगो प्रोफेशन में हुई सी बोझों वो एगो दुखतेर हुई तो दुखतेर वा के नमुआ में वही शादी कर ले तो इसने जीते रहे
0: मान ला कि पति पत्नी म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले वंचा और पति बोल ले बा कि हम नहीं चाहते हैं कि वो हमार सनाचिया सेवी करे हई नमुआ सेवी करे मदामा बोलक हाँ ठीक बा सीए ओ कर दिलक सब कुछ होकर अब वो अपन कौशनाची नहीं सौंझे करे खो जाता तो उस तक की जब अपन कहूँ पर जब ओकर फॉर्म उभर के रही तब अपन मैडम मैडम मैडन नेम जो बा यानी कि जो माँ बाप दिल दे बा वो नमुआ सेवी करे मैं अपन कौशनाची जैसे कि नहीं सेवी करे आई मीन सेवी करे अपन कौशनाची मैं ओकर नाम नहीं यूज करे
1: म्यूचुअल एग्रीमेंट कब कर ले बा तो उस तक की कुमा जो ऊ बखत हुआ कब मांग करे वो एक जाने ना कभी को जीवोस कर बा म्यूचुअल एग्रीमेंट में तो पहला चाहे गो प्लान उपलैत में रही तब सिगुआ तुअरा चाहे गो डिक्लेरेशन करे कि कौन कौन पोताज हो कि कितना पैसो देबा के घर का होला वो आता से होला उपलैतवा से समझ ला ना दोनों संगे चलेला तो वो में नहीं हुई एगो बोली के वो में नहीं बा चेंज ऑफ नेम की हम कैसा ही कब जीवोस कर ले म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं दिल्ली हरलंसन की अमर नमुआ सौंसे करब सर्विस सकी करे
0: आज पति डाल दिले बाकर में कि हम नहीं चाहते मर पत्नी हमारे नाम सेवी करे
1: तब सकी एक चीज करे कब किसवा कब लाकूर आई मांग करे कि उनमुआ उही में उके हाई करे तो लाकू के दुआ बा से जीज जो सुना था वो आजूते करे कि या बोले कि नहीं सेवी कर बे या से कॉन्स्टेंस दे के चाहे ला उस अगर वो डिसीडे करके एगो जीज आ शाम या जीज आ कब हाई कर बा जीवोसवा तब वो थोड़ा बोली सांझे कर या नहीं सांझे कर मिशेवा नहीं सकी फोर्से करे कि जाने ले तू सांझे ही कर बे हम नहीं चाहते हैं हमारे नाम ये नहीं बा
0: कहूँ नहीं बा
1: नहीं बा जीज दे सीधे कर बा कभी गो एप्लीकेशन कर बा जीजुआ के कि हम चाहते हैं कि आई न मुआ किसी तरह लोग दिखली से ना एगो शादी का भूल था उसी बोझ वो आदमिया एगो दुखते रहल मदम मुआ खूब जान सब कोई जाने लगा ओकर नमुआ ओकर बुढ़वा के नमुआ से
0: 40 बरिस 50 बरिस
1: अरे हाँ अब का करी हुआ कब दुख में बुगवा बोला था कि मजे ओकर पति नहीं अब हम नहीं चाहब तो जिजुआ के जाए ना कब हुआ एक्सप्लेके करी कि देख हम नमुआ जानी ला ये हमार नाम से जेवा हम खुशी रहती हमार नाम हाँ तो जीज के बा उदुआ हुआ कौन सी करे के उदे मैं मिशेवा नहीं करी वो एप्लीकेशन तो माचिक सर्वी करते जाता जो ओकर नाम कुमाजो के मन हुई थे
0: मैं शर्मा जो पापिये में दला गल बा सीए हो गल बा जीस बोल दे लखा जीवोस हो गल अपने ओकर में डालर बा नाम नहीं सेवी करी तमदा मौके दुआनिया नाम सेवी करे के
1: ई तला कानून है ना कानून कब दे सीधे करेला एगो चीज त चाहला ओ बिया करे
0: मैं शर्मा कहूं पर नहीं दिखलवा की मदा मौ अपन कोच दौचते चेहरा सेवी नहीं नहीं सेवी करे के यानी कि ओकर जन कोच दौचते में ओकर में ओकर ओकर नाम बा ओकर पति के नाम बा ओ त कोच दौच
1: नहीं सौजे करे खोजेला बस की जैसे बोली ना सब चीज में कुमा जे उन्नमुआ से जोड़ल बा तो नहीं सौजे करे कोई फोसे नहीं सकी करेला मैं का

0: l'insan sanze kare l'insan. Ab sanze kare ki ukar kot identite wa. Sempa, ukar lei ki chan la uzuzma wa, John Miller rakal la ku wa me, a dusra ukar kuma ya lak dene sans wa, John kan ukar nam hai lak ma ya zwa, jahan le hai sadi kare rel, u bhi leke jai ke hai l'état civil. जहाँ हमारे आइडेंटिटी कार्ड वहाँ मिलेला तो वहाँ बोली देखा हमार नाम रहल मिशेवा के अब हम मिशेवा के नाम नहीं जानते हैं हम चाहते हैं वो कते दान चीते वहाँ निकाली के हमार नाम में हाँ तो लोग तोरा अम्प्लास करके फोटो वा तो डिजिटल हो सब अम्प्लास वहाँ डाल के अब तोरा दे दे ये देख ला ना अब एगो चीज देख पहले चाहत कुमा जे एगो लाख देने सांस का मांग करता एगो आदमी के 20 बरिस एक दो बरिस नहीं 20 बरिस आतान करे के कब एगो ए पहले के बात बताइए कब एगो लाख देने सांस मिली आदमी आके मैं दिन दिन का होल चाहत सांसे हो गल 7 दिन अभी त्वरा तब का होल 7 दिन चाहत आतान करे के तब एगो लाख देने सांस मिले मैं अब नहीं अब तक कैसे जब सब डिजिटल है अरे बापो कर पूछियो कर नमुआ हा खाली वो ताके पैसे के कंप्यूटर हुआ में तो देख ला आप लास लाख देने सांस हुआ निकाल के मिल गल खाली थोड़ा बोलिए वो टाइम लेके आइए 25 कॉपी के टाइम है लापूस से और नहीं बस वो लेके जाके हुआ दे दिला आप लास थोड़ा मिली ये कुछ दूसरा चीज थोड़ा नहीं जाए के चाहे ला लेता सिविल के बीर हुआ में वो कही लाख देने सांस हुआ के कुमा जाए मांग करे घर ही से सब लोड करे अपन कंप्यूटर में मन मन बैठ के तोर घर के आगे को माजा कम जुको दे तोर लगता बुआ में हिया कंप्यूटर बा हुआ तोर बा है प्रिंटर तो देख बा तोर मिल गल हिया तोर नहीं जाई के चाहे ला
1: अब जरूरी नहीं बाप सब मिल जाता
0: सब मिल जाला पस जैसे ने बोले डिजिटल बा अब बा उलो के वेबसाइट सब मिलेला तोर अब घर घर जैसे ने बोला घर बैठ ले उपपीवा जाई के चला नहीं चला जाई के लिए तस्वीर
1: थी तो बहुत बड़ा काम होगल बा
0: हाँ नहीं नहीं तब
1: बस ये कहे धीर कोई बोले लाना कि तो हर जो 3 महीना की मान कोनो कहूँ कोनो काम के जात हुआ कुछ चीज कीने जात हुआ तो हर जो कबो कबो मांगे लन जाना तो हर लाख देने सांस मांगे लन जाता तो बोले लन जाने जो रिसेंट बा हाउ जहला लेके आई के
0: हाँ ना हाँ तो यहाँ प्लस निकाल के घर वे में
1: निकाल प्रिंटर वे तो घर वे में निकाल
0: बस निकाल के टेम डाल के कुमाजी वो चल गई ला सब कुमाजी तो रही हाथ में मिल गल
1: बहुत बढ़िया
0: बिना है जाए के नहीं अच्छा मैं देखा सही सिर्फ ही देश हुआ में नहीं दुनिया में अब सब चीज कर लेता कुमाजिया जन है डिजिटल कुमाजिया अभी तक
1: सबके काम आसान हो जाता नहीं तो कोई के पड़ेला काम छोड़ के जाके एक दिन मिजूने डाले के हाँ सब करते करते तो समय निकल जाला लेकिन आज ऐसा काम हमने के हो गल बात तनी कुन किस वजह रहा तनी फासिल हो गल बात तो जस्ती अच्छा वाला
0: हाँ आली अब देख सामने एगो मवेशियाँ रहता एगो पे एतहाजे में
1: हाँ
0: इतना हमने के बहुत भाई बहन के हुए रही समस्या अरे अब ओके मन बा एगो लाख देने सांस सी बुझो हुआ मंगले बा एगो लाख देने सांस
1: हाँ
0: और हुआ तो बेचारा होकर यहाँ नहीं बा हमें तो गर ली यहाँ देश से अंगले तेरे तो हम तक खाबे में 1 लाख देने सांस तो नहीं लेके गर ली तो हमने सोचा अब ओके हुआ मांगल था एगो लाख देने सांस ओकर कुमाजे मॉरिशस के जहाँ नहीं होल बा वहाँ किसी बुझो एगो एगो एगो दिपोत में मांगो तो या जहाँ काम करत हो बोले तो लाख देने सांस कहाँ बा अमरीके चाहे ला तो वो आदमिया के ऊ पे एतहाजेवा से चाहे ला एगो दिमान करे के लेता कुमाजे सिविल डिविजन जो मॉरिशस में बाहियाँ सकिन कैसे मांग करे सकी कुमाजे एगो ईमेल डाले एगो फैक्स करे एगो लापुस में कुमाजे हुआ डाले या एगो रिप्रेजेंटेंट जो हिया बा एगो भाई हुई बहन हो या कोई भी हो वो एगो जाके मांग करे एगो लाग देने सांस तब भेज दे कुमाजे ओकर परिवार वहीं जो हुआ कुमाजे बा बस वो तो आई नहीं देहा से करे एगो लाग देने सांस के ना तो देख लो ईमेल से तो वहाँ जिक्र हुआ कब देखी सब मंसूर तब बा हमने के कानून में
1: अभी जैसे बोले सब डिजिटल हो गल बात मान लो कोई परदेश में बात ओकर लिए आसान हो जाए अपन लाग देने सांस कहीं ना कहीं प्रिंट करे के
0: हाँ वहाँ तो सब मिली ना तो हिया जो डायरेक्टर लेता सिविल है ओके से चाहे ओके मांग करे के जो आदमिया बा हुआ हिया तो हिया प्रोसेस करी ओकर एप्लीकेशन या देवेला तोरा एगो सांस कि सकब अपन एगो परिवार के एगो ले दे दे भेज दे से बुझे भाई के एगो बहन के जो लेता सिविल में हो एगो हाँ कब हिया देखिए सन कि उपमा जो पोस्ट बा ओकर हो परिवार वा से तो सकी हुआ उपमा जे एगो लाख देने सांस ओके।

0: T'as des là, il y a, ah ben, t'es un type toi à bolter la grève des sens mais. Ça admet que autorisation n'est pas. Qui ce qui dit que ego la grève des sens n'est calé, pas il est. Quoi que la grève des sens calé ego bolila, pas il est. Toi à man bah, hamar la grève des sens n'est calé que. Allez, courir j'ai été l'état civil.
1: हां
0: ओके बोल वो पूछन से ना का कर गया हुआ बोले हम लेता से आलेंगे बोला देने सांस मिश्रा गुणदान के लिए देने सांस निकाले हां फसिल रख अन मन तोरा को मजे दे दे उमे भाई रही बहन रही सिपाकार ही त
1: कोई भी जाके कोई के निकाल
0: कोई भी जाक तरहल अरे एगो लेपो काल लेता सिविल गवर्नमेंट सांस ए कर लक ई पोछे जेवा बस की बहुत आदमी जब एगो आदमी के खाली से बुझो हमरे जाने खोजत हो हम हमर बाप हमर माँ हमर सब को मजे जैसे देख ली सभी को लग देने सांस में कौन कौन चीज ए फो माश बा तो खाली जाके निकाल दे लू हाँ तो गवर्नमेंट बोले एगो का आ रहा हो तो मजे एगो का बोले चिकन नहीं आना सो में के कर का खा तो हुआ बोल तो ये आदमी आके नहीं सकल लाइक कौन आदमी के मन हुई आके से बुझो हमर बुढ़िया के लग देने सांस मांग के सब जान रहे हो कर का ये हाल चाल कहाँ कौन कौन परिवार तो एगो चीज नहीं रहा तो अब का करलक लाइटा सिविल तोहरा नहीं दे तब ले तू ही जोड़ल नहीं हो वो आदमिया से कैसे देख अभी कभी आदमी लाफी लाफी दे सक्सेशन करता अरे बाप तो खाली चाहे ला दुखी माँ तो सी बोझो जो आदमिया मर गल बा बपुआ के ओकर लाग देने सांस नहीं बा सिवा लाग दे से नहीं बा गुजर गल बा तो वो तो मांग करे के चाहे तब ना लाफी दे विद्य सक्सेशन वहाँ बनाई बा तो हिया नहीं कुमाजा नहीं मिला था आवो का आवोए के भी नहीं मिलेगा कुमाजे ही कब हाइब करेगी इस आदमी आवो का लोग बोले लावो तो मर गल बा तो तू अपन दिमाग कर लाग देने से सांस पर लाग देने से वो परिवार के है तू लेता सिविल में मांग कर तोरा दी अनशन तो देख बो ओके मिली वो कुमाजे है लाख देसे या लाख देने सांस हुई जब ओकर माँ बाप हुई या पन परिवार हुई और ओकर कहते दे देखी कि ये आदमिया औसन आदमिया है तब ओके एगो से एगो बहन एगो भाई या एगो माँ रही ओकर कहते दे लेके जाए हुआ बताए तो सकेला ओके है ललिता सिविल के है उफ सेवा एगो है दे ओके एगो लाख देने सांस
1: तो आगे बहुत आसान रहल
0: बहुत आसान रहल अभी बहुत डिफिसिल डिफिसिल एंड हम बताए यहाँ
1: पर सीधे डिफिसिल नहीं जे गलत काम करे खो जाता उकड़ ये डिफिसिल बा
0: हाँ।
1: लेकिन जे अच्छा काम करा था जैसे परिवार में कोई के निकाले के बाद उकर उकर बर्थ सर्टिफिकेट तब बोल दे भाई हमर निकाल दे हम तो के दुआ देवते दे जाके निकाल के लेके चलन
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं तोरा बोली अब वो का वो ही कि नहीं मिला था
1: अच्छा
0: हाँ तो कैसे ओकर दूसरा छोड़ के ओकर भाई बहन कैसे बुझा
1: हाँ, भाई बहन के बोला था
0: हाँ, भाई बहन के भाई बहन के ओकर कहते दांत से लेके
1: जाए भाई के बोली भाई देखता हमर तनी कहते दांत से निकाल के लेके चलाओ
0: हाँ
1: तो के दुआ देवा थे जो लेके चलाओ तो जाके लेके चला
0: हाँ एगो पापी दे दे यार सब
1: हाँ बाकी कोई के दुआ नहीं बा
0: दुआ की कोई के दुआ नहीं बा ये देख ला सिर मैं एक बात करे लंसन हई मांग करे लंसन कब आबो या वो का एगो ले देवेला एगो की कुमा एगो लाफी दाफी दे सक्सेशन से बुझो बनाई एंटेल एंटेल आपके लाख देने सांस ओके चाहे ला तो वो तब कौन कौन सी देख करके सकेलन सन दे अली हमने अब देखा सर कौन लैपोटेंस है ये एगो लाख देने सांस ओके लैपोटेंस है अभी तो सब चीज वा देख ले ली सर
1: हाँ तो जल्दी जल्दी कर दे ला सर कहीं कार्यक्रम थोड़ा कहीं में समाप्त हो जाएगी वा
0: तो पाफ है ना ये हमने आप सब को मजे बस ये तो अब शुरू कर थे सर एगो हाई आग दे नेसेंस ओकर लैपोटेंस एगो लाग बस एगो लंबा चीज है एगो लाग दे नेसेंस ई इंपोर्टेंट है बस की एगो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है ऑफिशियल मतलब
1: सरकार बगल से
0: सरकार बगल से ये आतेस्ते करेला ये बतावेला कि इस सिचुएशन वा कहां से आवेला
1: कहाँ से आलबा यानी कि केकर बेटा है ओकर माँ के है ओकर बाप के है
0: हाँ।
1: कौन काम करेलन जा माँ हाउस वाइफ है कि दुखतेर है बाप कहाँ काम करेला साथ में कौन लुपिथान में
0: हाँ।
1: कई बजे पैदा होल बा ये सब रह ला करना
0: सब तो ऊ जान जेबो ऊ आदमिया के आँची ओकर ए दाँची ते भी हर जाने ला कहाँ से आलबा एक बही से एगो ओकर एगो लाख देने सांस इम्पोर्टेंट है अब हमने देख लिया सर ये लाख देने सांस हुआ ये का बतावेला एगो ए दाँचीते एगो आदमी के कैसे को लड़का है तो करे दाँची तो कर माँ बाप सब जैसे तू बोल रहा सब उमेल लिखल बा एगो चीज है अली पहला चीज ए है पोतांस एगो लाख देने सांस के तुहरे एगो लड़का बा ओके तुहरा आदमित करत हुआ लिकोल में

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ. नमस्कार.
4: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार. आज देश की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई है, जहां प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शाम 5 बजे वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगे. आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट से आम जनता, व्यापार जगत, निवेशकों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से काफ़ी उम्मीदें हैं. महंगाई, क्रय शक्ति, आवास, रोजगार के अवसर, कृषि क्षेत्र की मजबूती तथा आर्थिक विकास को नई गति देने वाले कदमों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है. वहीं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे ठोस प्रावधानों की अपेक्षा कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके. आज सुबह RM1 के कार्यक्रम में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुले ने भी बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी. बातचीत के दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि ये बजट जनता के लिए राहत लेकर आएगा या कठिन फैसलों का संदेश देगा. नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए. बजट भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर किया जाएगा. साथ ही क्रियोल, भोजपुरी और अन्य माध्यमों से भी दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए विशेष अनुवाद की व्यवस्था की गई है. बजट प्रस्तुति के बाद विशेष विश्लेषण कार्यक्रमों में राजनीतिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी तथा उनके संभावित प्रभावों का आकलन किया जाएगा. संगीत की कोई सीमा नहीं होती और यही संदेश लेकर MBC में इस वर्ष भी संगीत दिवस मनाया जा रहा है. इस खास अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने रोजमर्रा के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर अपनी एक अलग पहचान दर्शाई है. किसी के लिए संगीत एक जुनून है तो किसी के लिए दिल की अभिव्यक्ति का माध्यम, और इसी भावना के साथ सभी एक बड़े कराओके कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उत्साह, मित्रता और संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला. प्रतिभा, मेलजोल और संगीत के प्रति प्रेम को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम दर्शकों के लिए इस शनिवार रात 8:30 बजे MBC 2 पर प्रसारित किया जाएगा. विदेश के खबरों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में रात भर हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं. ये घटना उस समझौते के एक दिन बाद हुई है जिस पर अमेरिका और ईरान ने मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लेबनान में शत्रुता को स्थायी रूप से रोकना भी शामिल है. और उधर अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को नाइजर के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर बंदूकधारियों के हमले में 35 लोग मारे गए हैं. 5 महीने से भी कम समय में ये दूसरा हमला है. नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मृतकों में 22 हमलावर, 11 सैनिक और 2 नागरिक शामिल हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली 4:11 ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है और 94.5.6 98.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन पा रहे हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपकी चिट्ठी कार्यक्रम को लेकर, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं बिल्कुल दिल से साथ निभाइएगा। वैसे आपको याद दिलाते चले, आज ठीक शाम के 5 बजे आप सुन पाएंगे बजट का सीधा प्रसारण RM3 रेडियो पर, और इसी कारण आज का ये कार्यक्रम हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे 4:15 तक। आपके खतों को हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आपके प्यार भरे खतों के लिए हम आपसे बहुत बहुत तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और बेशक आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यार से इस कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं टेलीफोन के माध्यम से, जो है 402-402-8070। जी हाँ, 402-8070, और रेडियो मनोरंजन के व्हाट्सएप या मोबाइल का नंबर है 5250-6200। ये केवल टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नंबर आपको दिया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में बेशक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आशा करते हैं कि आप भी हमारा बहुत ही प्यार से साथ देंगे। आज की ये जो चिट्ठी आई है, ये घर के बिगड़ते माहौल को लेकर इसमें दर्शाया गया है, क्योंकि कई बार हम वॉइस आउट नहीं कर पाते, कई बार कुछ मन में दबे हुए ऐसे जज्बात हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, और यहाँ पर हमारे साथ एक श्रोता ने ये बिल्कुल शेयर किया है, तो हम ज़रूर आपकी इस चिट्ठी को आज के इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। आप लिखते हैं कि हमारे घर का जो माहौल है बहुत ही ख़राब रहता था। जब देखो आए दिन मेरे माता पिता के बीच झगड़ा रहता, तनाव रहता,

मेरे पिता मेरी माता को बहुत ज़्यादा मारते थे और यही सब देखकर मैं बड़ा हुआ। जब छोटा था तो पिता के गुस्से के आगे मैं सहम जाता, पर जैसे तैसे बड़ा हुआ, मेरे अंदर एक गुस्सा, एक नफ़रत की आग लावा बनकर बढ़ती जा रही थी। मानो मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो बनता जा रहा है। इस झुलसती आग ने मेरे भीतर पिता की छवि को एक बुरे दृष्टिकोण से ही देखा। मैं कभी पिता शब्द को सम्मानजनक नहीं समझ पाया। मेरे घर में मैं जब अपने चाचा, अपने मामू को देखता और जब वे अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते, ये सब मैं देखता, तो मुझे लगता कि मेरे पिता ऐसे क्यों नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मेरे पिता से मेरा रिश्ता कड़वाहट से भरपूर बनता गया। ऐसे में एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने पिता से इस कदर नफरत करने लगा कि जब वे बीमार हुए तो उनके प्रति मुझे कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी। वो महज मेरे लिए एक जिम्मेदारी, एक बोझ लगते थे। मेरे पिता की बीमारी ने उसे निगल लिया, पर मेरे मन में उनके लिए आज भी कोई फीलिंग्स नहीं। क्या मैं बुरा हूं? आपकी इस अधूरी चिट्ठी ने आपके दिल के उस दर्द को छेड़ा है जिसे बहुत कम लोग बयां कर पाते हैं। बेशक कई बार बच्चों के लिए उनके रोल मॉडल्स होते हैं उनके माता पिता, और इसीलिए आपको याद होगा, बहुतों को याद होगा, जब एक समय होता था जब अगर मान लो घर में कोई ऐसा तनाव से भरपूर वातावरण रहे या कोई ऐसी ऊंच नीच बात हो जाए तो हम बच्चों को दूर करते थे कि बच्चों के मन पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। पर सच में देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एक बुरा बर्ताव, एक हरकत जो आपके बच्चों की मनोस्थिति को पूरी तरह से हिला कर रख सकता है, इसका हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कई बार आज के समय में भी में ही आप देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि बड़े जब बात करते हैं, गाली गलौच के साथ बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और अगर आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो तो आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते कि हम जो बात कर रहे हैं या हमारी जो हरकतें हैं वो उस बच्चे पर किस तरह से प्रभाव डालती है, किस तरह से बुरा प्रभाव डालती है। क्योंकि कई बार अगर बच्चा गाली बोलना सीखे तो बच्चों को रोकने के बजाय आज के समय में हंसा जाता है, मजाक समझा जाता है, कई बार शाबाशी दी जाती है कि ओए होए मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। पर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस बच्चे के विकास पर बल डाल रही है और आप इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके मन पर कैसा प्रभाव पड़ता जा रहा है। जब बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है तो उसका असर आपको तुरंत नहीं दिखाई देता। कई बार ऐसा होता है कि उसका असर आपको उसके बड़े हो जाने के बाद लगभग हो सकता है कि जब वे अपने टीन्स से गुज़र रहा हो या यंग एडल्ट्स के एज के से गुज़र रहा हो तब जाकर इसका असर दिखाई देता है उनकी हरकतों में। कई बार ऐसा होता है कि जज्बातों को उन्होंने इस कदर अंदर दबा के रखा है जिसके कारण वो ना किसी को बता पा रहे हैं, ना किसी से डील कर पा रहे हैं, और इसका गुस्सा कहीं और किसी अलग रूप में निकलता है जिसके द्वारा रिश्तों में जो कड़वाहट होती है

या रिश्तों को संभालने का जो हुनर होता है वो कहीं ना कहीं वे खो बैठते हैं। बिल्कुल, हम आपकी इस चिट्ठी से हम यही कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं और आप जो भी कह रहे हैं अपने पिता के लिए, आपने जो भी फील किया, बिल्कुल मन एक आईने की तरह होता है और जो छवि आपके पिता की आपके आंखों के सामने थी बस वही रिफ्लेक्ट हुई। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप बुरे हैं, बस हम ये कहेंगे कि आपके मन में जो कड़वाहट है उसे आप बढ़ने ना दें। पिता शब्द को लेकर या पिता के लिए जो भावनाएं आपके मन में आपने पाल रखी हैं, बस दिल से उन्हें माफ़ करने की कोशिश करें, क्षमा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कार्य है जहाँ पर आप अपने पिता को जब तक दिल से माफ़ नहीं करेंगे आपके अंदर की वो कड़वाहट कम नहीं होगी। चलिए, इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली जहाँ पर आप ही के खतों को हम शामिल करते हैं रेडियो मनोरंजन पर हर शुक्रवार की शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच।

जी हाँ, आपकी चिट्ठी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन पर। और हम आपको ये भी याद दिला दें, आज का कार्यक्रम कुछ पहले समाप्त होगा। बिल्कुल आज प्रसारित किया जाएगा बजट 2026-2027, जिसका सीधा प्रसारण MBC TV1 साथ ही साथ MBC 7 RM1 तथा RM2 पर किया जा रहा है किया जाएगा। और बेशक आप RM3 पर भी बजट का भोजपुरी अनुवाद सुन पाएंगे। और इसे प्रस्तुत करेंगी श्रीमती उमा गुरबीन और श्री अभी उदय। और विषय इस वक्त 4:27 हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने भी अपने पिता की छवि के बारे में कुछ वर्णन किया है और हम ज़रूर उनके कही हुई बात, उनके कहे हुए जज्बात आप तक पहुँचाएंगे। उनका कहना था कि जब उनकी माता गर्भवती थी उनके लिए, तो उनके पिता को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे कुछ नाखुश थे। और ये सिलसिला बिल्कुल 8 महीने तक चला, काफ़ी लंबा चला, क्योंकि वे नहीं चाहते थे या नाखुश थे उनके आने से। पर जब उनका जन्म हुआ, जिस दिन उनका जन्म हुआ, वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी जो नाराज़गी थी वो बिल्कुल ही भांप बनकर उड़ गई। और जब उनके हाथों में ये नन्हा सा बालक आया तो उनकी खुशी जो थी वो सातवें आसमान पर थी। और वो इसीलिए क्योंकि वो हूबहू अपने पिता की तरह दिख रहा था। और ये प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा बालक बिल्कुल अपने पिता की फोटोकॉपी। और जो भी नाराजगी

की थी वो बिल्कुल छुमंतर हो गई और उस दिन के बाद उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया, जो भी काम वे करते थे, जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, जब जब वे कुछ काम करते थे तो उनको साथ लेकर जाया करते थे, और इतना ही नहीं इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने अपने पुत्र को दिया, अपने बेटे को दिया। आज ये पुत्र बहुत ही बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल आज वे याद करते हैं वो दिन, और सच में ये जो कहानी हमने अभी भी सुनाई उनको बिल्कुल उनके पिता की छवि याद आ गई, और रवि कहते हैं कि उनके लिए उनके माता पिता भगवान से कम नहीं। और ये जो गाना है उनके दिल के बहुत ही करीब का ये गाना है, उनके दिल का बहुत ही स्पेशल गाना है, जो फिल्म संबंध से लिया हुआ गीत है, हेमंत कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। चलिए, फरमाइशी गीतों का सफ़र तो है नहीं, पर ये गाना आपकी कहानी को मिलता जुलता, आपके रिश्ते को और भी गहराई से परखता हुआ गीत, और ये गाना हम आपके नाम करना चाहेंगे।

तो श्रोताओ, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी हम समाप्त कर रहे हैं। आपको याद दिला दें, अभी थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण, और इसका भोजपुरी अनुवाद आप सुन पाएंगे RM3 रेडियो पर। अभी थोड़ी ही देर में सुरेखा जी आपका साथ देंगी, तो बस हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक रही। अगले शुक्रवार फिर भेंट करेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

जैसा कि आप जानते हैं आज बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण होगा और आज 2026-2027 का बजट आप सुन पाएंगे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा. सो इसका सीधा प्रसारण टीवी वन पर एमबीसी सैट रेडियो रेडियो मनोरंजन पर होगा और M1 और M2 पर होगा, लेकिन रेडियो मनोरंजन पर और M3 पर आप इसका भोजपुरी अनुवाद सुन पाएंगे. और बस थोड़ी देर में आप इसका प्रसारण इसका भोजपुरी अनुवाद सुन पाएंगे, लेकिन उससे पहले करुणा लालू से एक कुछ जानकारियां हमें ज़रूर प्राप्त होगी. बस थोड़ी ही देर में हम मिलेंगे करुणा लालू से सबसे पहले.

थोड़ी देर में हम करुणा से सुनेंगे आज इस साल के बजट यानी कि बजट 2026-2027 के प्रसारण के बारे में थोड़ी जानकारियां।

नमस्ते सब दर्शक श्रोता लोग के नमस्ते। बजट 2026-2027 से संबंधित एक खास प्रोग्राम में आप लोग के हमने स्वागत करत हैं जा। ये प्रोग्राम के सीधा प्रसारण भोजपुरी चैनल संगे संगे MBC रेडियो और M2 और ORM फ्री पर भी करल जात बा। बेशक बजट दे देश खातिर एगो अहम दिन है। अब से कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री जिनकी वित्त मंत्री भी हवन डॉक्टर नवीन राम गुलाम राष्ट्रीय सभा में बजट भाषण प्रस्तुत करियन जेकर सीधा प्रसारण आप MBC TV और रेडियो पर भी देखे सक बजा सुने सक बजा। और जैसे जानत हवा कि ये बजट जुन बाते लालियों जी सौजमों के दूसर का बजट है जिनके एगो कठिन आर्थिक स्थिति में पेश करल जात बा। ऐसे में सरकार द्वारा ऐलान करल गल हुला उपाय के जनता और आर्थिक ऑपरेटर द्वारा बेसब्री से इंतजार करल जात बा। एगो और महत्वपूर्ण बात ई बजट के लाए भोजपुरी अनुवाद हमने के सहयोगी उमा मूरत और अभी उदय द्वारा करल जाए जिनकी ई बखत पोर्ट्रीस में हवन जा यानी कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री संगे संगे भोजपुरी के अनुवाद में आप लोग के समझे में सहायता होए आप लोग के इस सुविधा देवल जात बा। ई बजट एगो कठिन संदर्भ में पेश करल जात बा जैसे कि हमने बतैनी जा। खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहल तनाव के चलते कहूँ परी युद्ध तो कहूँ परी क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के समस्या पाल जात बा। इस सब के चलते कयन गो चुनौती सामने बाते और ये आर्थिक कठिनाई भी बाते जकर उल्लेख कई दफा प्रधानमंत्री कर ले हवन। ता आज बजट दिवस है और पूरा देश में लोगन के निगाहें बजट के घोषणा पर टिकल रही जिनकी अब से कुछ ही समय बाद शुरू हुई। परिवार कर्मचारी उद्यमी और रिटायर्ड लोग सब कोई महंगाई और बढ़ल जीवन लागत से राहत पाए खातिर ठोस उपाय के उम्मीद करत हवन जा। ई बजट संगे बजट की तैयारी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक विभिन्न साझेदार संगे सलाह मशवरा भी करल गया है। ये उल्लेख्य बात है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम लगातार इस संकेत दिले हमन कि देश के आर्थिक स्थिति चुनौती पूर्ण बाती। उनका अनुसार वर्तमान सरकार के गल सरकार से एगो नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिलल बाते। एकर अलावा अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ईंधन के कीमत समुद्री फ्रेट और महंगाई में वृद्धि होइला के चलते जकर सीधा असर आप आम लोगन के जेब में पड़ता। प्रधानमंत्री बोले हवन कि सरकार के वित्तीय क्षमता अक्ते के तुलना में कमती हो गल बाते फिर भी वो बजट खातिर 5 को मार्गदर्शक सिद्धांत बतैले हवन। जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एकजुटता सोलिडारिटी आर्थिक दक्षता इकोनॉमिक एफिशिएंसी सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और कमजोर वर्ग के सुरक्षा। वित्तीय आंकड़ा भी चुनौती के गंभीरता के दर्शावता। गौरतलब है कि मार्च 2026 के अंत तक मॉरिशस के सार्वजनिक कर्ज 675.4 बिलियन रुपया तक पहुँच गए रहल जिनकी देश के घरेलू उत्पाद जिनकी GDP कहल जाला के लगभग 89% है। बजट के प्रमुख जन अपेक्षा बातें लोगन के बीच महंगाई और बढ़ल जीवन

0: 55 लागत से राहत पाए के कर्मचारी और निम्न तथा मध्यम आय होला लोगन के समर्थन पेंशनधारी और कमजोर वर्ग खातिर अतिरिक्त सहायता व्यवसाय और उद्यमी खातिर प्रोत्साहन शिक्षा कौशल विकास और मानव पूंजी में निवेश सार्वजनिक ऋण के नियंत्रित करे के ये भी स्पष्ट रणनीति के इंतजार करल जा बा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बजट संतुलन बनाए रखी और जनता की अपेक्षा के पूरा कर सकी। तो जैसे कि अभी दिखत हवल जा कि राष्ट्रीय सभा में सब मंत्री लोग के आगमन हो गल बाते, कुछ ही समय बाद बजट की प्रस्तुति शुरू हुई। देश खातिर एगो अहम दिन, स्पीकर भी प्रस्तुत हो गल हवन, उपस्थित हवन राष्ट्रीय सभा में। बजट के प्रस्तुति शुरू हो अब से कुछ ही पल बाकी रह गल
1: बातें।
2: Be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye.
3: Aye.
2: Those against say no. The ayes have it.
4: Statements by ministers none. Public bill, first reading.
2: Yes, Honourable Prime Minister.
5: Madam Speaker, I move that the appropriation 2026-2027 bill number 9 of 2026 be ready first time.
2: Yes, motion is seconded.
6: Second.
2: Honourable Deputy Prime Minister seconds the motion.
4: Bill, second reading.
2: Sergeant at Arms, you may allow members of the press now to enter the chamber for the customary photograph session.
7: सभी को नमस्ते। जी हाँ, इस समय हमने एक पोर्टलिस में है सा और हमने के संगे बातें अभी उदय अभी तो हमने घैजापरी राष्ट्रीय सभा में आज बजट भाषण 2026-2027 के प्रस्तुतिकरण के बारे में संक्षिप्त में आप लोग के जानकारी देवब जा। अभी जैसे कि देखते जा कि राष्ट्रीय सभा में कुछ फोटोशूट लेवल जाता घैजापरी फोटोग्राफ लोग द्वारा पत्रकार लोग द्वारा तो राष्ट्रीय सभा में जो बातें कितने मंत्रिमंडल के सदस्य लोग उपस्थित हवन जा और इस सीधा प्रसारण जोन बातें हमने के सहयोगी करुणा लालू जैसे कि बोलन कि MBC टीवी 3 यानी भोजपुरी चैनल MBC रेडियो यानी RM2 RM3 एवं AM2 यानी रेडियो मॉरिशस पर प्रसारित करल जाता। तो हमने संक्षिप्त में भोजपुरी भाषा में हजा बजट भाषण प्रस्तुति के बारे में आप लोग के कुछ जानकारी देवब जा।
8: जी हाँ बिल्कुल उमा, सबसे पहले नमस्कार और आदाब। बजट 2026-2027 के प्रस्तुति के लिए के यहाँ पर ही एगो सीधा प्रसारण करल जाता MBC टेलीविजन के तीसरे चैनल पर।
5: The beginning, but you can start where you are and change the ending. This does not come from me, Madam Speaker, but from Clive Lewis, a famous British author and literary scholar. Madam Speaker, upon taking office in November 2024, we had to make fundamental and difficult choices. We could have chosen the path of least resistance, but we did not. Instead, we chose the most challenging path to reform.

0: Mauritius must stand prepared. Mauritius must be future ready. Our actions should be underpinned by the principles of good governance and responsibility. Let me therefore, Madam Speaker, turn to our policies for a future-ready economy centered on a forward-looking, inclusive, higher growth. We have a strategy anchored on the following seven pillars. First, leveraging AI and digitalization. Second, unleashing a startup revolution and SMEs potential. Third, expanding and modernizing our economic space. Fourth, re-engineering the major existing sectors. Fifth, unleashing the potential of our blue economy. Sixth, addressing investment constraints. I will speak about our strategy on AI and digitalization. The AI revolution must not be something that happens to Mauritius. It must be something that Mauritius prepares for, participates in, and benefits from. This is why government is acting on three fronts. First, following my request to the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, at the recent AI Impact Summit in New Delhi, he used his good offices so that Mauritius could benefit from the participation in Google's America-India Connect initiative. This is a major international subsea connectivity that can add a new layer of resilience to our existing submarine cable systems and therefore strengthen strategic routes towards South Africa, India, and Singapore. Second, we are positioning Mauritius as a trusted base for AI and cloud services. Government is engaging with leading American and European AI and cloud companies to explore opportunities for the AI infrastructure and AI-enabled services serving Mauritius, the Indian Ocean, and the SADC region. Thirdly, and most importantly, we are investing in our people. Following the successful MIT GPT education pilot projects in 10 schools, government will now scale up AI-enabled learning across our education system in a safe and responsible manner. Over the next year, all 8,000 secondary school teachers in Mauritius will be trained and enabled with access to a personalized AI teaching tool to support them in lesson preparation, classroom teaching, assessment, feedback, and student support. In parallel, 12,000 grade 9 students will be supported with access to AI-enabled learning tools.
1: बजट 2026-2027 के भाषण के अंतर्गत प्रधान तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम इबुल्लन की भावी पीढ़ी के भविष्य के उज्जवल करे खातिर हमनी के अपन जुन घरेलू सकल घरेलू उत्पाद बाते ओकरा बढ़ावे के बहुत ही जरूरी बाते। एक संगे संगे इन्फ्लेशन साल 2022-2024 जे 11.3% के रहल उ घटकर 3.7% के हो गल। एकर संगे संगे टूरिस्ट के आगमन करे खातिर उ लोग के आकर्षित करे खातिर जस्ती से जस्ती निवेश करल जाता और ICT और फाइनेंस सेक्टर माने वित्त आर्थिक क्षेत्र में 4.5% से बढ़ा के 5% कर देवल गल बाते और जहाँ ले हमनी के जुन लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ल जुन नियम बाते ओकरा बरकरार रखल जाता।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी कुछ संक्षिप्त में बोलन और हजाबरी प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम खासकर AI एवं डिजिटलाइजेशन पर विस्तार से जानकारी देवत हवन उबलत हवन कि ई एगो अभी चुनौती बाते और एकरा विकसित करे खातिर हर तरह से कोशिश बाते और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अभी AI इम्पैक्ट समित जोन लगल रहल नई दिल्ली में हौजा परी उनकर से वो मांग कलन की एकरा कौन तरह से मॉरिशस

0: में लाभ खातिर सकल जाय जापरी स्थापित करे और यही नय जो सात गो प्रमुख स्तंभ के बारे में स्ट्रैटेजी यानी नीति अपनावे के बारे में बोलल गल बातें उनमें विशेष रूप से एआई डिजिटलाइजेशन इस तब बातें जैसे एसएमई के बारे में फिर बातें जो अभी आर्थिक स्पेस बातें ओकरा भी विस्तार करे के और ओकरा आधुनिक बनाए के साथ में जो मौजूदा सेक्टर बातें प्रमुख सेक्टर ओकरा भी पुनर्व्यवस्थित करे के बारे में भी बात करलन साथ में ब्लू इकोनॉमी के बारे में उबलन की ई एगो अहम सेक्टर बातें और जो निवेश के कुछ कंस्ट्रेंट बातें ओकर पर भी उ बात करलन.
1: Second pillar is about unleashing a emerging startup revolution, key to democratize our economy.
2: जहाँ ले शिक्षा संबंधी जो एक क्षेत्र बाते वहाँ पर ही माइटी जीपीटी एजुकेशन जेकी एगो पायलट परियोजना बाते ओकरा 10 स्कूल में चलावल जाय जहाँ पर एआई एनिबल लर्निंग माने जो अधिगम बाते ओकरा जस्ती से जस्ती बढ़ावा देवे के काम होय एकर संगे संगे 8000 से जुड़ल जो माध्यमिक शिक्षक बातें जो मॉरिशस में उन लोग के फिनो से ट्रेन करे के परे के चाही जहाँ पर ही जो शिक्षण विधि बातें एक संगे संगे जो असेसमेंट मूल्यांकन और फीडबैक और स्टूडेंट सपोर्ट से जुड़ल जो बात बातें ऊपर भी जस्ती बल देवल जाए जहाँ तक ग्रेड 9 स्टूडेंट्स यानी कि ग्रेड 9 छात्रों की बात बातें तो 12000 से जस्ती जो लड़का बातें उन लोग के समर्थन देवे खातिर एआई एनेबल लर्निंग टूल्स से समर्थित करल जाए सरकार के बगल से ऐसा प्रकार के पायलट परियोजना चलावल जाए जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों माध्यमों में दोनों स्तरों पर एआई के सुरक्षित रूप से और कारगर रूप से इंप्लीमेंट करल जाए.
1: Policies to support SMEs. The new policies include an SME bill to create a more conducive business environment.
0: जी हाँ, AI पर अभी जैसे कि जानकारी देवल गल और प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री बोलन कि भारत सरकार के संगे सहयोग प्राप्त करल जाता चैंपियन ऑफ AI प्रोग्राम खातिर इन्हें 25 मिलियन प्रदान करल जाता एगो नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म खातिर एकर अलावा जो बाती AI हायर एजुकेशन एवं सिविल सर्विस खातिर भी प्रयोग में आनल जाता और अभी जो बातें प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री स्टार्टअप एवं SME के प्रमुख मुद्दा जो बातें एक पर कुछ इस तरह से जानकारी देवता.
1: This also follows my participation at the recent AI summit in New Delhi. Infrastructure works for the SEZ at Côte d'Or are being completed, and an SEZ incentive scheme is being implemented. We expect the SEZ to attract significant high impact investment.
2: प्रधान तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस स्टार्टअप रिवोल्यूशन पर जस्ती बल देवत हवन जहाँ पर ही हमनी की जो आर्थिक क्षेत्र बाते ओकरा आर जस्ती विस्तृत करे खातिर नवा जो अपॉर्चुनिटी बाते नवा जो चांस बते संभावना ओकर बारे में भी बात करल जाता एक संगे संगे ई में नौकरी माने रोजगार के भी संभावना सामने आई या मॉरिशस स्टार्टअप रिवोल्यूशन के तहत एगो स्टार्टअप एक्ट भी कायम करे के बात हुआ था एक संगे संगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जे कुदो में स्थापित करल जाए और निजी तथा सार्वजनिक स्टार्टअप काउंसिल के लेके एगो उच्च स्तरीय कमिटी भी गठित करल जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के एक्सेलरेटर स्कीम पर जस्ती बल देवल जाए एक संगे संगे डिजिटल पेटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कायम करे के भी प्रावधान बाते
1: स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स representing a total investment of around 7 billion rupees.

0: government is also considering a new project of a 41 arpent adjoining the cruise terminal. This project will cut across most key sectors of our economy, from residential to tourism, to commerce, entertainment and leisure, to digital finance center, among others. Together with the Harbour Bridge, it will be a major urban regeneration project.
1: हजाबरी जैसे कि आर्थिक स्पेस के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के बारे में जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा ये पतावल गर्ल की मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी एवं कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में एगो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट जो न बाती कितने स्ट्रैटेजिक परियोजना जो न बाती उस सब के लागू करल जाए करीब 7 बिलियन रुपए के एगो निवेश के करल जाता
2: जहाँ ले हमने के देश के हवाई अड्डे बाती हौजा के ओकरा आधुनिक बनाए खातिर 2.7 बिलियन रुपए निवेश करल जाए एकर संगे संगे एगो डिजिटल बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम कायम करल जाए जहाँ पर ही बायोमेट्रिक ई गेट्स के जितने सारे जो लोग खासकर जो यात्री बते वो लोग जस्ती से जस्ती वो लोग प्रतीक्षा नहीं करियन जा और ऐसे प्रकार की व्यवस्था करल जाता एकर संगे संगे जो धोखाधड़ी बते और आतंकवाद बा और जुन व्यवस्थित जुन अपराध बाते उस सब ऐसन प्रकार के जुन दुर्व्यवसन ओकरा कमती करे खातिर अलग प्रकार के प्रणाली कायम करल जाता
1: और ये कुछ समय पहले जैसे कि आप लोग सुनना जा कि 41 बीघा जमीन जो न बाते क्रूज टर्मिनल खातिर ये नया परियोजना के लेके सरकार द्वारा ध्यान देवल जाता ये तरह जो न हमने के अर्थव्यवस्था के मुख्य विभाग बाते ओकरा खातिर फायदा होय खासकर पर्यटन से व्यापार तक जो स्थिति बाती उस सब के बढ़ावे खातिर एक डिजिटल फाइनेंस सेंटर के भी स्थापना करे के बारे में बात करल गल
0: ग्लोबली कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब एंड एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म आई नाउ टर्न टू एग्रीकल्चर टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन टू अटेन द टारगेट ऑफ 250,000 टन्स By 2030, I'm providing 100 million rupees yearly over the next 3 years for the rehabilitation of 500 hectares of land owned by small and medium planters.
2: साल 2030 ले 250,000 टन के टारगेट करे के जो उत्पादन बते ओकरा खासकर गन्ना उत्पादन बते ओकरा बढ़ावे के प्रावधान बते और इमें 100 मिलियन रुपया निवेश करे के प्रावधान बाते 3 बरिस लेके और इमें 500 हेक्टर जमीन जे हमनी के जुन खेतिहर बाते उन लोग सकियन जा लाभ उठावे एकर संगे संगे हमनी के जुन चाय के खेती बाते ओकर उत्पादन में 50% के रिप्लांटेशन कॉस्ट पर भी जस्ती से जस्ती बल देवल जाए जे ओकर मैक्सिमम माने कि अधिकतम जुन मूल्य बाते उ 25,000 रुपये प्रति पेंट रही जहाँ पर ही हमनी के जितना जुन चाय खेती के जुन काम करवा बाते उ लोग के जस्ती से जस्ती लाभ उ लोग सकियन जा उठावे एकर संगे संगे जुन चाय की खेती से जुड़ल जुन वृद्धि बाते साल 2029 ले 50% ले ओकरा बढ़ा देवल जाए जहाँ तक एग्रोफोरेस्ट्री के बात बाते हमनी के जुन वन संख्या हमने जो कृषि वन जो संख्या बाते ओकरा भी बढ़ावे के काम करल जाता कहे कि हमने के देश जलवायु परिवर्तन से जुड़ल बहुत प्रकार के समस्या के सामना करत हवन त इ बखत सरकार के बगल से फॉरेस्ट बिल भी इंट्रोड्यूस शुरू करल जाए जहाँ पर ही एग्रो फॉरेस्ट्री परियोजना के भी लागू करल जाए और ई विधेयक के माध्यम से एगो संसाधन केंद्र कायम करल जाए जहाँ पर जुन अनुसंधान करता और खासकर जुन पशुपालक के जुन लोग बैठे उ लोग अपन खाद्य

0: की सुरक्षा और हमनी की स्थानीय मंडी के आर जस्ती मजबूत करे खातिर उन लोग अपन कार्य करियंजा और फूड सिक्योरिटी पॉलिसी पर भी जस्ती बल देव थवंजा और कृषि क्षेत्र के आर जस्ती गति देवे खातिर सरकार के बगल से लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पर भी जस्ती बल देवल जाया। इमें 45 मिलियन रुपया के अपग्रेड फॉर्म बिल्डिंग्स एकर संगे संगे जुन हमनी के जुन फॉर्म्स बाते ओकरा बढ़ावे के काम करल जाए। 75 मिलियन रुपया के सब्सिडी देवे देवल जाए जहाँ पर ही जुन पशु बाते उ लोग ओकर प्रयोग सकें जा करे जितना जुन ब्रीडर्स बाते। एकर संगे संगे 27 मिलियन रुपया के जुन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम पर निवेश करल जाए। 50 मिलियन रुपया निवेश करल जाए खासकर निर्माण के निर्माण क्षेत्र के आर जस्ती आधुनिक करे के और जितना जुन पशु चिकित्सा अस्पताल के खासकर उन लोग के मूल ढांचा के आर जस्ती आधुनिक करे खातिर 50 मिलियन रुपये निवेश करल जाए।
1: Sharing of the customer financial data between licensed banks, virtual asset service providers, and authorized fintech providers. Madam Speaker, our banking legislations date back to 2004. Over the past decades, the banking sector has changed beyond recognition. Our laws, therefore, must keep pace. To this end, I will introduce before the end of this year a new Bank of Mauritius Bill, a new banking bill, and an appropriate resolution regime. These three pieces of legislation will strengthen governance, sharpen prudential regulation and supervision, enhance consumer protection, and bolster financial stability while fostering innovation in the delivery of financial services. Madam Speaker, I will now outline policies for our construction industry. Our construction industry must evolve in lockstep with our energy and environmental imperatives. Buildings should increasingly function as power producers and not merely as power users. We are therefore amending the relevant legislation to enforce a green building code.
2: जयकर से पहले जैसे कि आप लोग सुनना जा कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री एगो नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना करे के ऐलान करलन ताकि भ्रष्टाचार मनी लॉन्डरिंग तथा कॉम्प्लेक्स ट्रांसनेशनल क्राइम की बारे में रोके के व्यवस्था करल जा सके। साथ में कुछ अन्य ऐलान भी करलन उबलन के एगो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ मॉरिशस की स्थापना करल जाए नेशनल फ्रॉड के रोके खातिर। यही नई बैंक ऑफ मॉरिशस के लेके उथ्रत इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म के एगो स्थापना करल जाए। एकर अलावा अभी बैंक लेजिस्लेशन जो न साल 2004 से मौजूद बाती गल दो दशक से बैंकिंग सेक्टर में बदलाव आल बाती और एकर बारे में उबलन कि बरिस के आखिर लेक एगो न्यू बैंक ऑफ मॉरिशस बिल ए न्यू बैंकिंग बिल तथा अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन रिजीम के पेश करल जाए। और निर्माण सेक्टर के जहाँ बात बाती तो हैजा परी काफ़ी जानकारी हैजा परी प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री दिलन, तो अभी यहाँ पे कुछ विस्तार से आप बताओ।
0: जी हाँ उमा जी, जिस प्रकार से प्रधान तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम निर्माण सेक्टर के भविष्य में गति देवे खातिर अलग अलग प्रकार के प्रावधान पर बात कर लें, खासकर निर्माण सेक्टर के बारे में एक लॉक स्टेप पर जस्ती बल देवल जाता, खासकर ऊर्जा पर को खासकर निर्माण सेक्टर में ऊर्जा के शामिल करे खातिर विभिन्न प्रकार के परियोजना चलावल जाए। एकर संगे संगे एगो सार्थक लेजिस्लेशन

0: की एनफोर्स करे खातिर ग्रीन बिल्डिंग कोड पर जस्ती बल देवल जाया जहाँ ले पर्यटन सेक्टर की बात बते तो इमें पर्यटन इंडस्ट्री के आर जस्ती कारगर बनावे खातिर एगो ग्लोबल ट्रेंड के अपनावल जाए। एकर संगे संगे जुन टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी रिकमेंडेशन बाते एकर मतलब यह जुन पर्यटन की टिकाव से जुड़ल जुन सुझाव बाते एकर खातिर एगो ब्लूप्रिंट कायम करल जाए हमनी के देश की लगून बीच और जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करे खातिर टूरिज्म सेक्टर माने जुन पर्यटन क्षेत्र बाते हौजा परी रणनीति कायम कर अपनावल जाए जहाँ परी एगो विभिन्न प्रकार के जुन पर्यटन से जुड़ल जुन अनुभव बाते ओकरा विकसित करे खातिर एगो कोस्टल मॉडल भी कायम करल जाए।
1: Madam Speaker, now turn to our policies to usher in a new era of development for the creative industry, making it another key pathway to higher levels of investment and growth. We are putting artists first. We are amending the appropriate legislation to give them the proper recognition as cultural workers. Government will promote the establishment of an artistic
2: जी हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में जैसे कि हजापरी प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री बोलन कि 1 बिलियन के वित्तीय मदद देवल जाता पर्यटन यानी टूरिज्म पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन के समर्थन करे खातिर ओमें 490 मिलियन रुपए जोन बाते MTPA खातिर बाते यही नई एकल ओतेलिए सगायत जीवाल के भी पुनः व्यवस्थित करे खातिर ओकर उत्थान खातिर भी काफ़ी कुछ करल जाता और एगो डिजिटल सिस्टम के भी स्थापना करल जाए सब गैर नॉन सिटीजन लोग खातिर ताकि वो लोग ई वीज़ा के सेकेंस अप्लाई करे जे मॉरिशस के तरफ अपन यात्रा करियन स और इस तरह जोन किसी वजह लंबा कतार बाते टर्मिनल पर आवे बखत ओकरा कमती करल जाय सकी और एगो नेशनल सिक्योरिटी के भी मजबूत करल जाता।
1: कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम एट मेबर्ग
0: हमने की देश के जो सृजनात्मक उद्योग बाते ओकरा विकसित करे खातिर कई गो पॉलिसी भी व्यवस्थित करल जाए और खासकर हमनी के देश के जो कलाकार बाते उन लोग की फायदा देवे खातिर खासकर हमनी के जो सांस्कृतिक जो कर्मचारी बाते ओकरा जस्ती पहचान देवे खातिर सरकार के बगल से अलग अलग प्रकार के प्रावधान बाते तो सरकार खासकर जो कल्चरल आर्टिस्टिक और कल्चरल हब के व्यवस्थित करे पर बल देवत हवन एकर संगे संगे एगो नेशनल म्यूजियम हब कायम करल जाए जहाँ पर हमनी के देश एक ही छत के नीचे जस्ती से जस्ती जुन कलाकार बाते जुन जुन हुनर से जुड़ल जुन व्यक्ति बाते उन लोग सकियन जा जुटे और आर्टिस्टिक एंड कल्चरल जोन के भी कायम करे के बल देवत हवन एगो वन स्टॉप शॉप की अवधारणा अपनावे के काम करल जाता एगो क्रिएटिव आर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलावल जाए ओकर लॉन्चिंग करल जाए और ओकर जो प्रारंभिक एलोकेशन हवन ओ है 30 मिलियन रुपया जे लोटो फंड से निकालल जाए। ऐसा प्रोग्राम से विभिन्न प्रकार के स्तर पर जो कलाकार बाते उन लोग सकें जहाँ अपनी सृजनात्मकता का प्रदर्शन करे और नई मंडी में भी उन लोग के एगो नवा एक्सेसिबिलिटी सकें जा प्राप्त हो या कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के बगल से नवा कार्य करल जाए बुनियाल दे लुसियों इंडियन जे 2000 जे सितंबर 2027 में ओकर जो मेज़बानी बाते ओकर से जुड़ल तैयारी करल जाता ता ऐसन प्रकार के जो समा

0: रूबाते ओकरा इलाकाई प्लेटफॉर्म देवे खातिर हमनी के देश और दूसर देश के बगल से एगो आर्टिस्टिक एक्सचेंज माने उलू के कलात्मक आदान प्रदान करे खातिर काम होवा था, जहाँ पर हमनी के देश के खासकर हमनी के जो स्थानीय कलाकार बाते उलू के जस्ती से जस्ती विजिबिलिटी माने दृश्यता सकियंजा प्राप्त करे।
1: तो संक्षिप्त में अभी जैसे हजापरी ऐलान करल गल कि नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जोन मेबर्ग में बाते ओकर पुनर्व्यवस्था खातिर जोन मदद देवल जाता यानी कुल 100 मिलियन रुपए नेशनल लॉटरी से प्राप्त यही नहीं 124 मिलियन आते 3 वित्तीय साल खातिर लेमोन कल्चरल लैंडस्केप के पुनर्व्यवस्था खातिर एकर अलावा जा नेशनल हेरिटेज फंड के भी बढ़ावल जाता और हजा प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ब्लू इकोनॉमी के महत्व पर भी बात करलन। तो हजा परी कुछ इस तरह के निर्णय लेवल गलबाती
0: हमने के देश की ब्लू इकोनॉमी के आर जस्ती विस्तृत करे खातिर खासकर अनुसंधान के बढ़ावा देवे की दिशा में ऐसन प्रकार के सेक्टर को आर जस्ती विकसित करे खातिर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ओशन स्टडीज के कायम करल जाए जे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के तत्वावधान में संचालित हो। द नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल भी ऐसन प्रकार के शोध पूर्ण कार्य के समर्थन करियन और एक संगे संगे मॉरिशस ओशियानोग्राफी इंस्टीट्यूट और एल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर के मिलल जुलल सहयोग से ऐसा प्रकार के कार्य करल जाए और समुद्री अनुसंधान के समर्थन करे के दिशा में एगो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खासकर हाइड्रोग्राफी और एगो मैपिंग एगो रोड मैप भी कायम करल जाए। मॉरिशस ओशन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के स्थापना करे के भी प्रावधान बाते। हमने के जो मच्छी मरुआ और एक्वा फार्मिंग सेक्टर बाते हौजा परी भी एगो सेमी इंडस्ट्रियल फ्लीट एक्सपेंशन और एगो आर्टिजनल समर्थन प्रस्तुत करल जाए और इमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड अपन जो अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति बाते खासकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओकर से उन लोग जस्ती से जस्ती दिलचस्पी दिखावा जा।
2: For business licensing and permits, a new business facilitation bill will be introduced to address bottlenecks and facilitate the ease of doing business. Madam Speaker, we are introducing the principle of a silent agreement, which will be to put an end to this long waiting time. We will leverage AI technologies to enhance effectiveness of investment policies. A multilingual chat box and other AI-powered automation tools will be deployed on the National Electronic Licensing System platform to provide 24/7 support to investors and businesses. A similar AI tool will be introduced at the Financial Services Commission. Our labor market, Madam Speaker, the labor market policies will close gaps, boost supply, and align skills with demand. First, the government will formulate a comprehensive migration policy to attract foreign talents and address labor shortage and skills mismatch. Second, a national e-diaspora platform will be established by the EDB to harness diaspora expertise in support of national development priorities. The Public Procurement Act will be amended to allow public bodies to directly engage qualified diaspora experts for specialized services on mutually agreed terms and conditions. Third, to tackle skills mismatch at its source, we're improving trainer quality. The Mauritius Qualification Authority, MQA Act, will be amended to make it mandatory for the registration of all trainers at the technical and vocational education and training.
1: निवेश के जो छठा स्तंभ बते कर पर बात करते हुए ऐलान करल गल कि हजापरी एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ावे खातिर विभिन्न निवेश के जो

0: बातें ओकरा अपनावल जाए। एगो मल्टीलिंगुअल चैट बॉक्स एवं एआई पावर्ड ऑटोमेशन टूल्स के हजापरी डिप्लॉय करल जाए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के जरिए। और 24 घंटा समर्थन देवल जाए निवेशक एवं व्यावसायिक लोग के। एगो एआई टूल के भी पेश करल जाए फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन में।
1: जी हाँ बिल्कुल, जहाँ ले श्रम मंडी रणनीति में बदलाव लावे खातिर भी जस्ती से जस्ती कार्य करल जाता, जहाँ पर ही जो कारगरता और जो कौशल से जुड़ल जो कार्य बातें उ में भी बढ़ावा देवल जाए। सरकार के बगल से एगो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी स्थापित करे के काम करल जाता, जहाँ पर हमनी के देश जो विदेशी हुनर और श्रम बातें ओकरा जिन कमती बातें ओकरा निपटावे खातिर विदेशी हुनर अपनावे के काम करल जाता। एगो नेशनल ई डायस्पोरा प्लेटफॉर्म स्थापित करल जाए, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड डायस्पोरा के एक्सपर्टाइज उ लोग के विशेषज्ञता के प्राप्त करे खातिर एगो नेशनल डेवलपमेंट प्राथमिकता पर जस्ती बल देवल जाए। पब्लिक प्रोक्यूमेंट एक्ट में सुधार लावल जाए, जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अपन डायस्पोरा से जुड़ल जिन कागजात बाते जिन डॉक्यूमेंट्स बाते ओकरा निमन से सकियंजा भरी। एक संगे संगे मॉरिशस क्वालिफिकेशन अथॉरिटी एक्ट माने कि MQA एक्ट में भी सुधार लावल जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जो ढांचा बातें और उकर जो शिक्षण कौशल बातें उ में भी एगो नवापन लावल जाए। और नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लागू करे खातिर एगो महत्वपूर्ण कदम उठावल जाए। HRDC के बगल से एगो स्किल्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग करल जाए,
2: इंक्लूडिंग ट्रेड फेयर्स, शॉपिंग मॉल प्रैक्टिसेस एंड हॉकर इश्यू एंड ई-कॉमर्स बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड। मैडम स्पीकर, नाउ टर्न टू द 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। The central aim of this project is for Mauritius to be able to produce at least 25% of its food requirements with a minimum dependence on imported inputs by the year 2035. Food insecurity is an existential risk. It is a serious threat, Madam Speaker, to the well-being of our people, and we are therefore confronting it now. We are amending the Food and Agricultural Research and Extension Institute Act of 2013 to empower the Institute to implement and deliver the 25x35 Food Security Flagship Project in a coherent and holistic manner. We will also introduce a Food Security and Nutrition Bill, promote contract farming, double the amount of land devoted to food production to 25,000 or upon by 2035, and fast-track the recruitment of foreign labor across all skill levels in agriculture. STC will also invest in a national food reserve storage facility to increase the reserves of grains, pulses, and other essential commodities. The third flagship, Madam Speaker, aims at improving water access for everyone. I'm allocating this year 175 million rupees to provide some 11,000 households with facilities such as tanks and fittings for continuous water supply. And at the same time, we are investing in the long-term sustainability and resilience of our water system. I'm earmarking 6.4 billion rupees over the next 3 years to expand the national water catchment capacity and improve the water delivery system. Construction of the Rivière des Anguilles Dam is at last scheduled to start later this year. In addition, there will be an investment in the drilling of 20

0: more boreholes, pipe replacement, and the construction of 15 more containerized pressure filtration units. The fourth flagship project is about building energy secure Mauritius with a clear goal to achieve 60% of renewable energy mix by 2035. Our strategy is anchored in expanding storage capacity.
1: और जल उपलब्धता के बारे में जैसे कि हैजा परी ई ऐलान करल गल कि ई बरिस 175 मिलियन प्रदान करल जाता 11,000 हाउस होल्ड के यानी परिवार के इस सब सुविधा के संगे यानी टैंक फिटिंग्स और जो न लगातार पानी सप्लाई बाती इस सब सुविधा खातिर एकर अलावा कितने निवेश करल जाता लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एवं रेजिलियंस वाटर सिस्टम में यही नहीं 6.4 बिलियन रुपए के व्यवस्था करल जाता आते 3 बरिस खातिर एगो नेशनल वाटर कैचमेंट कैपेसिटी खातिर और वाटर डिलीवरी सिस्टम के भी सुधारल जाता कविया देसाओगी डैम के निर्माण करल जाता एकर बारे में ये बतावल गल कि कार्य शुरू करल जाता यह नए निवेश करल जाता 20 से अधिक बोहोल्स के खुदाई में पाइप रिप्लेसमेंट करल जाता और 15 से जस्ती कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन यूनिट्स के भी निर्माण करल जाता और हैजा परी बिल्डिंग एनर्जी एवं सेक्यू मॉरिशस के क्षेत्र में ई सब ऐलान करल गल बाती
2: जहाँ बिल्कुल जहाँ परी बिल्डिंग एनर्जी सेक्यू मॉरिशस के तहत उन लोग की जुन उद्देश्य बाते अपन आप में बहुत ही स्पष्ट बाते जहाँ परी रिन्यूएबल एनर्जी की 50% हावल जाय होला जुन परियोजना पाते साल 2035 ले प्रावधान बाते एगो स्ट्रैटेजी माने एगो रणनीति अपनावल जाय जहाँ परी जितना सके हो या जुन ऊर्जा की जुन कारगरता और उनकर जुन स्थिरता बाते ओकरा अपनावे पर बल देवल जाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपन बिड्स आमंत्रित करे खातिर 220 मेगावाट के सोलर पीवी जनरेशन के बैटरी से जुड़ल बात बातें ओकरा ऊपर पर भी जस्ती जोर देवल जाता और एकर संगे संगे ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में जस्ती गति लावे खातिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जुन सोलर पीवी किट्स बातें ओकरा स्थापित करे के काम करत हवन जहाँ पर 1,000 से जस्ती लाभार्थी मॉरिशस के जुन परिवार बाते उ लोग सकियंजा लाभ उठावे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपन फीडिंग टैरिफ के भी बढ़ावे पर काम करत हवन और 15% ले बढ़ावे पर भी जस्ती बल देवल जाता है एकर से 4.20 से 4.83 रुपया पर यूनिट करल जाए इसे लाभार्थी अपन जुन मासिक इलेक्ट्रिसिटी बिल बाते ओकरा सकियंजा कमती करे
0: आई एम इंक्रीसिंग द कंबाइंड बजट्स एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टर्शियरी एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च बाय 2.6 बिलियन रुपीस आवर डीप कन्विक्शन is that no child should be left behind. Guided by our values of equity, dignity, and opportunity, we are therefore further strengthening the foundation program, an effective, inclusive approach that ensures every student can live up to his or her full potential. I'm allocating 133 million rupees for the acquisition of textbooks, and learning materials and the setting up of 3 new MITD multi-sector training centers to deliver the foundation practical programs for children in grades 7 to 9. To the same end, government is coming up with a basic literacy

0: and numeracy programs for grade 1 and 2 to address learning gaps at an early stage. The special education needs, SEN, is yet another sector where this government's compassion and inclusiveness policy converge. I'm therefore providing for the creation of a specialized early intervention unit in primary schools for children aged 3 to 5. Recruitment of occupational therapists.
1: और ये हैजापरी, जैसे कि आप लोग सुनना चाहे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जी हाँ, हैजापरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एवं ह्यूमन रिसोर्स एवं मिनिस्ट्री ऑफ टर्चरी एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च खातिर 2.6 बिलियन रुपए के एलोकेशन देवल जाता और ये हैजापरी ये ऐलान करल गल कि सरकार नहीं चाहता कि कोई भी लड़का पीछे रही, बल्कि उ लोग के शिक्षण खातिर काफ़ी व्यवस्था करल जाता। 133 मिलियन रुपए प्रदान करल जाता लड़का लोग के टेक्स्ट बुक एवं लर्निंग यानी पढ़े के जोन मटेरियल बाती और यही नहीं, 3 गो नवा MITD यानी मल्टी सेक्टर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करल जाता। फाउंडेशन प्रैक्टिकल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन खातिर यानी ग्रेड 7 से 9 के लड़का लोग खातिर, यही नई सरकार एगो बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम फॉर ग्रेड्स 1 यानी ग्रेड 1 और 2 खातिर एगो व्यवस्था करता लर्निंग गैप्स अर्ली स्टेज पर जो बातें एकरा शुरू करे खातिर। और ये जहाँ लेक स्पेशल एजुकेशन नीड सेक्टर बाते तो हैजा परी एकर पर अभी ये सब बात बतावता।
2: जी हाँ बिल्कुल, मॉरिशस के शिक्षा क्षेत्र में स्पेशल एजुकेशन नीड्स यानी कि सेन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बते, जहाँ पर सरकार द्वारा सैन स्कूल्स पर जस्ती से जस्ती बल देवत हवन। एक से 3 से 5 बरिस जो लड़का बते उन लोग खातिर जो सरकारी जो स्कूल बते ऊपर जस्ती ओकरा बढ़ावे पर जस्ती बल देवल जाए। और ऐसा प्रकार के लड़का लोगन खातिर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट के भी प्रावधान बाते, जहाँ पर उन लोग अलग अलग सैन स्कूल्स में जाके ऐसा प्रकार के लड़का के इलाज और उन लोग के मदद सकियन जा करे। जहाँ तक सैन लर्नर्स की बात बाते, उन लोग खातिर एगो सपोर्ट सर्विस भी कायम करल जाए और सैन रीजनल डेवलपमेंट सेंटर भी कायम करल जाए, जहाँ ले तर्शरी माने कि तृतीयक लेवल की बात बते एगो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर हायर एजुकेशन कायम करल जाए साल 2025 से 2035 ले। और उकर जुन मुख्य उद्देश्य बते उह जितना सके होए मॉरिशस के तृतीयक शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लावे के।
0: और टैक्स पेयर्स मनी एवरी ईयर ऑन हेल्थ केयर, येट वी विटनेस अ ड्रामेटिक डिटेरियोरेशन इन द हेल्थ सर्विसेज अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट। वी शेयर द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन, वी आर नॉट इनसेंसिटिव to the distress calls of our doctors, our nurses, and other healthcare workers who continue to serve under very difficult conditions. It is deeply concerning that during the period 2019 to 2024, life expectancy in Mauritius stagnated, while healthy life expectancy, according to WHO data, actually regressed. These adverse trends must now be urgently addressed through decisive prevention focused and outcome driven reforms. Since November 2024, the Ministry of Health and Wellness has successfully started the reversal of the decade-long decline, putting considerable efforts and devoting a lot of resources to improve quality of service delivery in the public health care sector. But there is still a lot to do. Today we are proposing further steps to address the concerns of patients and improve working conditions in the public health care system. I am providing for the recruitment

0: क्षेत्रमें जैसे कि ऐलान करल गल खासकर हमनी के जनता की बेहतरी खातिर और बेहतर सेवा खातिर 2220 गो मेडिकल एवं पारा मेडिकल स्टाफ जोन में नर्स भी शामिल बाते उ लोग के भर्ती करल जाता और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम बाते ओकरा और आगे बढ़ावे खातिर हजाबरी इलाज खातिर एगो विजिटिंग डॉक्टर स्कीम खातिर भत्ता यानी एलोकेशन देवल जाता 40 मिलियन रुपया खातिर ताकि एगो अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तर के कंसल्टेंट यानी स्पेशलिस्ट सकी काम करे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और हजाबरी जो न कमी बाते ओकरा पूरा सकल जाय करी और जो न मरीज लोग हवन सा अगर उ लोग के जरूरत पड़ी तो उ लोग के विदेश में भी इलाज करे खातिर जो न व्यवस्था करल जाता ओकरा भी तनी घटावल जा सकी यानी ओकर से छुटकारा पाई जा सकी। हैजा परी जैसे कि ऐलान करल गल कि ट्रेनिंग प्रदान करल जाता 26 गो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लोग के एनेस्थेसिया रीएनिमेशन एवं रेडियोग्राफ रेडियोलॉजी के क्षेत्र में इन इमरजेंसी मेडिसिन खातिर यही नई ई सब ट्रेनिंग 62 गो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट खातिर 154 गो नर्स जोन मिडवाइफरी ऑन्कोलॉजी इंटेंसिव केयर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन तथा डायबिटीज बाते इस सब खातिर स्पेशलिस्ट नर्स लोके ट्रेन करल जाए।
1: एकर संगे संगे एगो इलाकाई स्वास्थ्य एडवाइजरी बोर्ड कायम करल जाए जहाँ पर इलाकाई अस्पताल के आर जस्ती मजबूत करे खातिर और साथ ही साथ जितना जो मरीज बाते उन लोग के बेहतर इलाज प्रदान करे खातिर ऐसा प्रकार जो के जो बोध बाते उन लोग संचालित होयन जा और अस्पताल के प्रशासन में भी नवापन लावल जाए जहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजर्स भी उन लोग के भर्ती करल जाए।
2: To introduce fixed penalties for illegal or improper disposal and storage of waste that create breeding grounds for rodents, mosquitoes, and other health public health pests. Government is also strengthening surveillance in the community at airports and other seaports. An investment of 1.4 billion rupees will be made to modernize and expand our healthcare infrastructure.
0: स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट एवं हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट में ही मेडिकल स्टाफ लोग के मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देवल जाए यही नए कुछ निवेश करल जाता स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम में हजापरी जैसे एगो हेल्थ लिटरेसी प्रोग्राम लागू करल जाए स्कूल में यही नई सरकार एगो नेशनल प्रोग्राम के बढ़ावा दे खातिर एकर शुरुआत करता स्वस्थ खान पान यानी हेल्दी न्यूट्रिशन फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक व्यायाम एवं स्ट्रेस के मैनेज करे खातिर और ई बचपन से ही हजापरी एकर शुरुआत करल जाता ताकि वृद्धावस्था लेक एकर से जो न बाते लाभ हो सकी और इमें 40 मिलियन रुपए के निवेश करल जाता डायबिटीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के फिरो से गति दे खातिर और एकरा पुनः व्यवस्थित करे खातिर।
1: हमने के देश में ऐसा अलग अलग प्रकार के संक्रमण और बीमारी होवेला और फैलेला और हमनी के मॉरिशन जनता के स्वास्थ्य संबंधी जोन खतरा बाते ओकर से जुड़ल जोन कीड़े मकोड़े बाते ओकर से छुटकारा पाए खातिर एगो टेक्निकल फैसिलिटी माने एगो तकनीकी सेवा प्रदान करल जाए खासकर ससिव सागर राम गुलाम नेशनल हॉस्पिटल में और एकर से हौजा परी ऐसा प्रकार के कार्य करल जाता जहाँ पर ही साप्ताहिक रूप से 1 लाख से 4 लाख के जो मच्छर बाते ओकरा इस्तेमाल करे के काम करे के प्रावधान बाते
2: implement new technologies.

0: improving efficiency and strengthening healthcare delivery. I now turn to our housing policy, Madam Speaker.
1: अजा बड़ी जानकारी भी देवल गल की लेप्टोस्पिरोसिस जो समस्या उत्पन्न होल बाती पब्लिक हेल्थ एक्ट में हजा परी सुधार आनल जाए और फिक्स पेनाल्टी लेवल जाए जे लोग गैर कानूनी रूप से या फिर स्वच्छ रूप से जो न कचरा बातिश उकरा फेकेलंस और इतर ई सब जो न विरस फैलावे होला जंतु बाते ई उत्पन्न होवेला और सरकार सर्वियंस के बढ़ावता कम्युनिटी एवं एयरपोर्ट तथा बंदरगाह पर और सरकार के तरफ से निवेश करल जाता 1.5 बिलियन रुपये के हेल्थ केयर मूल ढांचा के आधुनिकीकरण एवं एकर विस्तार खातिर ही नहीं एगो नवा SSON अस्पताल के निर्माण के जरिए जिनमें रिसर्च फैसिलिटीज रही पॉम्पलेमूस में यही नहीं अफ्रीका फर्स्ट आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के भी स्थापना करल जाए और ये जो न बाते भारत से पहला इस तरह के एगो केंद्र रही एगो नेशनल हेल्थ लैबोरेटरी के भी आधुनिकीकरण के बारे में भी इन निवेश संबंधित बातें एगो डायलिसिस यूनिट ENT हॉस्पिटल में भी एकर बारे में भी ध्यान देवल जाता एगो इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी सर्विस खास कर जोन स्ट्रोक हुवेला एकर खातिर भी व्यवस्था बाती और मॉरिशस एगो इलाकाई हब के रूप में अपन स्थान बनावता मोटापा के इलाज खातिर डायबिटीज या फिर हृदय रोग संबंधी बीमारी खातिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कार्डियो मेटाबॉलिक केयर एंड रिसर्च की स्थापना करल जाए और ई केंद्र जो न बाते उच्च स्तर के जो इलाज बाते या सेवा बाते डायग्नोसिस बाते एकरा प्रदान करी और जो न दिल से संबंधी बीमारी बाते ओकरा रोके खातिर और एकर पता लगाई के बारे में भी सकी कदम उठाई और ई वुमेन हेल्थ सर्विस के भी स्थापना करल जाता महिला लोग खातिर और ई हैजा परी ई भी ऐलान करल गल कि भविष्य खातिर एगो हेल्थ केयर सिस्टम की तैयारी करल जाता हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग खातिर और भावी क्लिनिकल लीडर्स लोग खातिर जहाँ पर वो लोग सेकेंड सा ट्रेनिंग ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और ई हेल्थ केयर इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करल जाए ताकि जो न व्यवस्था बाती ओकरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओकरा प्रदान करल जा सकी उच्च स्तर के हाउसिंग के क्षेत्र में हैजा परी खास कर जो न कम आमदनी होला परिवार बाती हैजा परी ई नवा पॉलिसी बाती जी हाँ हैजा परी अभी सब बताई
2: 2 बिलियन रुपया निवेश करल जाए या खास कर ऐसन जो परियोजना बाते जहाँ पर 8,000 से जस्ती जो घर बाते ओकर निर्माण के लेकर के 2 बिलियन रुपया निवेश करल जाए एकर संगे संगे 25 मिलियन रुपया उ लोग खातिर निवेश करल जाए खासकर हाईलैंड्स और रिश्ते से जुड़ल जो मूल ढांचा खासकर जो नाली से जुड़ल जो परियोजना बाते ओकरा चलावे खातिर 25 मिलियन रुपया चलावल जाए
0: मैडम स्पीकर टू इंश्योर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ आवर पॉलिसीज टू सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ आवर सिटीजंस वी आर रिव्यूइंग द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड फॉर SRM टू

0: reflect the impact of rising prices. The threshold for eligibility under the SOIM system will be raised from 14,000 rupees to 16,400 rupees as from the 1st of July and to 17,500 rupees as from the 1st of July next year. We will also review the disability allowance to improve fairness, efficiency, and effectiveness. For that purpose, a high-level technical committee comprising relevant ministers.
1: Housing के क्षेत्र में ही हजापरी स्थित लैंड जो न बाते यानी जो सरकारी जमीन बाते उकरा प्रदान करल जाए करीब 1,000 आवास के बनाए या खातिर खास कर जोम जो न मध्यम वर्ग के परिवार लोग हम जा उ लोग खातिर और एकर में प्राइवेट सेक्टर यानी निजी सेक्टर के सहयोग प्राप्त बाते और ये एगो पायलट बेजी रही है जहाँ पर 150 मिलियन प्रदान करल जाता 100 गो सर्विस प्लॉट्स प्रदान करे खातिर और ये सब जो न बातें है जहाँ पर ये सब परिवार लोग खातिर खास कर जेलों के आमदनी जो न बातें मध्यम स्तर के बातें उन लोग खातिर ये जरूरी मूल ढांचा की व्यवस्था करल जाता पायलट बेसिस पर
2: एक और संगे संगे जो फर्स्ट टाइम बायर बाते खासकर एगो अपार्टमेंट या फिर एगो घर किने खातिर ओकरा एगो एग्जाम्पशन मिली खासकर जे एगो ऐसन व्यक्ति बाते जे 6 मिलियन रुपया के एगो एक्विजिशन प्राइस लेवत हवन और उबखत 6 मिलियन रहल बकेर अब उ 5 मिलियन रुपए रही
0: Game and the African Games of 2027. We are also expanding access to quality sports families facilities across our country. To this end, I'm providing funds for 2 new swimming pools, one each at Triolet and the other one at Flak. And the upgrading of Marie Justin and Auguste Vollère stadiums. In all, Madam Speaker, I'm allocating 1.2 billion rupees to the Ministry of Youth and Sports. I now turn to another crucial feature of our social.
1: Ori garibi ghatave khatir haija pari bhi e vishesh elan karal gal ji ha. हैजा परिश जुलाई 2026 से पहली बार जो न बाते एसआरएम सिस्टम के बढ़ावल जाता 14,000 से 16,400 करल जाता और 17,500 जो न रहल ई एसआरएम सिस्टम के हैजा परी एकरा पहला जुलाई 2027 से बढ़ावल जाता और ये डिसेबिलिटी अलाउंस के जो जानकारी है जा परी प्रदान करल गल एगो उच्च स्तर के टेक्निकल कमिटी जो न बाते उ है जा परी व्यवस्था करल जाता जोन में मंत्रालय बाते साथ में एक्सपर्ट लोग भी बाते ये स्थापना करल जाता ताकि हैजा परी अलाउंस के जो न प्रदान करल जाता एकर बारे में अध्ययन करल जाए सकी
2: जहाँ ले यूथ एम्पावरमेंट माने युवा सशक्तिकरण के बाद बते एगो नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन के इंट्रोडक्शन हो रहल साल 2012 में तो एकरा गति देवे खातिर ए पर भी एगो अंतर सांस्कृतिक बातचीत पर जस्ती से जस्ती बल देवल जाए और हमनी के देश खासकर स्पोर्ट्स सेक्टर के मजबूत करे खातिर विभिन्न प्रकार के जो न पॉलिसी बाते ओकरा आर जस्ती मजबूत करे खातिर काम करल जाए हमनी के देश के जो न खिलाड़ी बाते जो न एथलीट बाते जिनके बहुत सारे सपने बाते उन लोग के सपने के साकार करे खातिर समर्थन देवल जाए और इस समर्थन में सरकार के बगल से 110.5 मिलियन रुपये निवेश करल जाए एकर संगे संगे 4 जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल बाते इंटरनेशनल

0: नेशनल गेम्स इमें इंडियन ओशन आइलैंड्स गेम्स साल 2027 यूफ ओलंपिक गेम द कॉमनवेल्थ गेम्स और अफ्रीकन गेम्स साल 2027 ई चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल खातिर जस्ती से जस्ती बल देवल जाए, खासकर हमनी के जुन खिलाड़ी हमनी के जुन एथलीट्स बते उन लोग के तैयारी खातिर ऐसा प्रकार के निवेश करल जाता। एक संगे संगे स्पोर्ट्स से जुड़ल जुन सेवा बते उमें भी वृद्धि लावल जाए और अलग अलग प्रकार के फंड्स देवल जाता देश के दो तीन जगह पर नवा तरंगताल माने स्विमिंग पूल्स के नवा बनावे खातिर, खासकर थ्रियोले और फ्लैक में दुगो नवा स्विमिंग पूल्स बनावे खातिर निवेश करल जाए। और मारीज जुस्टिन और ऑगस्ट वेले स्टेडियम के अपग्रेडिंग ओकरा निमन से पुनर्निर्माण करे खातिर ओकर सुंदरता के आर जस्ती बढ़ावे खातिर फंड देवल जाता। और एकर संगे संगे युवा और खेलकूद मंत्रालय खातिर 1.2 बिलियन रुपए के प्रावधान बाते।
1: We are therefore uniting law enforcement agencies, government institutions, NGOs, and all stakeholders in a cohesive, holistic, and relentless war against this scourge. Each one must play its role fully. Government will ensure that all public sector bodies and institutions contribute to a fight against drugs. I am therefore allocating a sum of 50 million rupees to be used by each ministry for integrating the fight against drug trafficking and substance abuse across their policies and operations. The law will be amended to criminalize a broader range of synthetic drugs. Regarding the use of cannabis, an island-wide consultation is currently being undertaken by NADEC, following which government will come up with a proposal. Madam Speaker, it is the firm intention of government to dismantle the network that supports the activities of drug smugglers and dealers, to sustain the actions already initiated to revamp the anti-drug and smuggling unit. I'm allocating an amount of
2: सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में एकरा अपग्रेड करल जाता और हजापरी जैसे कि बतावल गल कि जहां लेक न्यायालय बाते या फिर डाकघर बाते पुलिस स्टेशन और अन्य जो न सुविधा प्रदान करे होला इमारत बाते हौजा परी कार्य करल जाता, सबके आधुनिकीकरण के एगो रूप देवल जाता। यह नए ड्रग के खिलाफ संघर्ष करे खातिर और परिवार लोग के रक्षा करे खातिर हैजा परी सरकार द्वारा 14.2 बिलियन रुपए के अलाउंस प्रदान करल जाता लो एवं ऑर्डर खातिर। और दूसरी तरफ सरकार 125 मिलियन रुपए देवता जो न गाड़ी बाते ओकरा आधुनिक बनाई खातिर यह नई 531 मिलियन अतिरिक्त रुपया देवल जाता अन्य सामान खरीदे खातिर, ताकि एगो ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द मॉरिशस पुलिस फोर्स खातिर एकरा मजबूत करे खातिर। उधर 200 मिलियन रुपए जो न बाते प्रदान करल जाता नेशनल क्राइम एजेंसी खातिर। और हैजा परी पब्लिक सेफ्टी एवं कम्युनिटी सिक्योरिटी खातिर भी हैजा परी काफ़ी कुछ ऐलान करल गल। तो हैजा परी अभी
0: जी हाँ बिल्कुल, मॉरिशस पुलिस ताकत के फिनों से एगो ढांचा देवे खातिर एगो कम्युनिटी पॉलिसिंग के अपनावे पर बात देवल पर जस्ती बल देवल जाता। और नेबरहुड ऑफिसर्स यानी कि अफसर के बगल से एगो डायरेक्ट कांटेक्ट माने एगो प्रत्यक्ष संपर्क सकियन जा स्थापित करे, खासकर जुन अभिभावक बते जुन बर्जना लोगन बते अपन लयिका के सुरक्षा खातिर। एक संगे संगे स्पेशल मोबाइल फोर्स अपन जुन सुरक्षा बते ओकरा आर जस्ती मजबूत करे खातिर जस्ती पेट्रोलिंग कार्रवाई करिया जा। और सेफ सिटी

0: सेफ सिटी सर्वेलेंस कैमरे के आर जस्ती एक्सपान करे के प्रावधान यहाँ पर करल जाए, सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलावल जाए और एकर संगे संगे विभिन्न प्रकार के कार्रवाई चलावल जाए जहाँ पर ही हमने के देश के जुन लोग बाते, हमने के जुन लयिका बा, हमने के जुन पिती बाबू बाते, हमने के जुन बर्जना लोगन बाते, जो नाजुक वर बाते, उन लोग के सुरक्षा सुनिश्चित सकियन जा होई।
1: और ये जा परी जवान लोग के बारे में ये भी बोलल गल कि उन लोग के ड्रग के से कैसे बोला जला दूर रखे खातिर एगो प्रिवेंशन पॉलिसी पर विशेष रूप से ध्यान देवल जाए ताकि जवान लोग जो हवन जा उ लोग ड्रग के से दूर रहन स और एक खातिर 80 मिलियन रुपए प्रदान करल जाता नादेक के यानी नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के और राष्ट्रीय स्तर पर कितने अवेयरनेस कैंपेन भी चलावल जाए ताकि जनता के ई शिक्षा देवल जाए सकी कि ई ड्रग अब्यूज एवं ट्रैफिकिंग जो बातें ई कितना खतरनाक बातें और अर्ली वार्निंग सिस्टम के भी शुरू करल जाता और ई अस्पताल से जुड़ी यह नई लैबोरेटरीज से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के संगे भी एकरा जोड़ल जा सकी ताकि जल्द से जल्द ई पहचान करल जा सकी और समुदाय के सूचित करल जा सकी नवा साइको एक्टिव सब्सटेंस के बारे में और सरकार काफ़ी फैसला लेवता जल्द से जल्द ई जो ड्रग बाते एकर खिलाफ कदम उठाए खातिर और लापुलिस के भी मजबूत करल जाता और सरकारी संस्था एनजीओ सब जितना स्टेक होल्डर्स बातें सब एक साथ मिल के अपन अपन भूमिका निभावत हवन सा ड्रग के खिलाफ संघर्ष में और एकर अलावा सरकार 50 मिलियन प्रदान करता मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेटिंग के जी हाँ ई ड्रग के खिलाफ ट्रैफिकिंग ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ संघर्ष करे खातिर
2: टू रिबिल्ड सोशल रेजिलियंस वी मस्ट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड स्ट्रेंथन वुमेन एम्पावरमेंट वी मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी वी एक्सटेंडिंग नेशनल जेंडर पॉलिसी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स टू एंश्योर जेंडर इज फुली इंटीग्रेटेड इन डिसीजन मेकिंग I'm therefore providing 5 million rupees for a dedicated incubator for women under the SME scheme.
0: Pradhan Tata Vitt Mantri Dr. Navin Chandra Ram Gulam Anti-Drug or Smuggling Unit se jur okra जस्ती से जस्ती आधुनिक बनाए खातिर इस सेक्टर के जस्ती आधुनिक बनाए खातिर और अजसु के समर्थन करे खातिर 436 मिलियन रुपए की प्रावधान दिलन एकर संगे संगे एगो ऑपरेशनल कैपेसिटी के मजबूत करे खातिर MRA नाडेक FCC इस सब ऐसा और अन्य इलाकाई तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के मिलल जुलल सहयोग से काम करल जाए और एकर संगे संगे आजसु के आजसु डिपार्टमेंट विभाग के जस्ती मजबूत करल जाए जहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से जुड़ल जो विशेषज्ञता बाते ओकरा हासिल करे खातिर आजसु अवसरों की ट्रेनिंग भी देवल जाए और विभिन्न प्रकार के जो एडिशनल टूल्स बाते अतिरिक्त औजार और इक्विपमेंट देवल जाए जिनमें उन लोग अपन पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस कार्रवाई निमन से सकियन जा करे और आजसु अवसरों की आर जस्ती समर्थन देवे खातिर एगो एडहॉक अलाउंस देवल जाए जहाँ पर 2000 से बढ़ करके अब 5000 मासिक रूप से बढ़ा देवल गल बाते और साथ ही साथ जहाँ पर

0: फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के आधुनिकीकरण बाते और ओकर क्षमता के बढ़ावे के दिशा में 85 मिलियन रुपया के जिन रुपया बाते जिन प्रावधान बाते दिवल जाता और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्राइवेट लैबोरेटरी माने अंतर्राष्ट्रीय निजी प्रयोगशालाओं और मॉरिशस यानी कि लोकल स्थानीय प्रयोगशालाओं के साथ विशेषज्ञता के आदान प्रदान कर जाए। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी 72.5 मिलियन रुपए या निवेश करियन खासकर फॉस इंटरसेप्टर बोट और ऐसा प्रकार के जिन वाहन बाते जहाँ पर स्कैनिंग मशीन से लैस हवन और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से लैस हवन जहाँ पर उन लोग सकियन जा समुद्री कार्रवाई के आर जस्ती मजबूत करे के ड्रग के पहचान करे के और ड्रग तस्करी खासकर इलाकाई क्षेत्र में ओकर से निपटे खातिर
1: which was widely acclaimed internationally will be reviewed
2: trafficking ke khilaf sangharsh ke तहत सरकार जोन बाते रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जोन बाते ओकरा बढ़ावता ताकि जे लोग ड्रग अधिक हमनसा उलो के मदद सकल जाय करे। स्वास्थ्य मंत्रालय हैजा जोन अस्पताल बाते नेशनल प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ओकर खातिर हैजा परी कार्य करता और इलाज करे खातिर फ्लक अस्पताल के कन्वर्ट करल जाता एगो विंग के जी हाँ हैजा परी एगो रिहैबिलिटेशन सेंटर के रूप में जहाँ परी समर्थन सेवा प्रदान करल जाए परिवार एवं ग्रुप थेरापी खासकर ई ड्रग के खिलाफ संघर्ष में और यह नई नेशनल ड्रग हॉटलाइन की स्थापना करल जाए नादेक इस तरह जल्द से जल्द सहायता प्रदान सकी करे काउंसलिंग भी सकी करे परिवार लोके जे लोग अफिकते होला हवंस और जुडिशरी के क्षेत्र में हैजा परी ई सब ऐलान करल गल।
1: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर रिडिक विल नाउ रीच 11.2 बिलियन रुपीस एंड प्रोवाइडिंग फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान फोकस्ड ऑन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
0: हमने के देश की न्याय प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जहाँ पर हमने अपनी अपने देश के सामाजिक ढांचा के आर जस्ती सुरक्षित बनाए खातिर एकर से सरकार के बगल से विभिन्न प्रकार के कदम उठावल जाए उठावल जाता। सबसे पहले 15 मिलियन रुपया निवेश करल जाए खासकर अतिरिक्त कोर्ट ऑफिसर्स प्रशासनिक तथा टेक्निकल स्टाफ लोगन खातिर और ई बात पर भी जस्ती बल देवल जाए कि किस प्रकार से जुन टेक्निकल अवसर बाते उन लोग न्याय से जुड़ल जुन काम बाते उन लोग सकेंजा निपटे करे। सुप्रीम कोर्ट इमारत के आर जस्ती आधुनिक बनावे खातिर विभिन्न प्रकार के कदम उठावल जाए और जहां पर कोर्ट ऑफ अपील एगो नवा कोर्ट ऑफ अपील पर भी जस्ती से जस्ती जोर देवल जाता।
1: 295 एंड द वर्ड ऑफ द 18th मार्च 2015 ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सेट अप अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी in the case which I had initiated against the UK government. Mauritius is thus the only state lawfully entitled to exercise sovereignty over the Chagos archipelago. Because of the delay of the UK to ratify the agreement, we are short of around 10 billion rupees in this budget, Madam Speaker. However, as I said, we won't just stay and wait, but I'm confident that the final solution will soon be found. I now come to the imperative of fiscal consolidation. We are rebuilding the kind of resilience that was handed over to the country in 2014 when I was at the helm. A debt to GDP below 60%, a budget deficit of 3% of GDP. It was an ideal, prudent economic management that we need to rebuild now. Both ratios were in line with the OECD norms and that of the European Union.

0: From 2014 to 2024, that legacy has been totally destroyed, abused, I should say, and mismanaged, to the point that the country ended up with a 9.3% budget deficit and nearly 90% of debt to GDP ratio in the financial year 2024-2025. This fiscal situation is now the major constraint to our development, and it is not something that can be reversed overnight. However, I can reassure the House that our resolve to rebuild fiscal resilience is unwavering. We are continuing our task of fiscal consolidation with the conviction that we will succeed. We must succeed. We owe it to the next generation. Let me stress that despite severe external shocks, we are pursuing fiscal consolidation, not austerity. The arithmetic is clear. Madam Speaker, you don't have to be a rocket scientist to know, to understand this. When expenditure exceeds revenue, deficits automatically rise, borrowing increases, and of course debt rises. But the laws of economics are more complex with higher interest rates.
1: और ये हमने के सरहद के सुरक्षा खातिर जैसे कि ये बतावल गल कि एगो नेशनल मैरिटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर की स्थापना करल जाता भारत सरकार के सहयोग से निगरानी एवं इंटेलिजेंस शेयरिंग एवं इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन खातिर और ये कर में सुधार भी आने खातिर एगो अलाउंस 2.3 बिलियन प्रदान करल जाता ई समुद्री निगरानी खातिर और हमी के जोन क्षेत्रीय इलाका बाती ओकरा और हमी के आर्थिक सुरक्षा के मजबूत करे खातिर एगो कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम एगो ऑफशोर पेट्रोल वेसल और चार गो हैवी ड्यूटी बोट एवं चार गो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रदान करल जाता पुलिस फोर्स के और इतर हैजापरी मदद मिलता भारत फ्रांस और अमेरिकी सरकार से।
2: जी हाँ बिल्कुल, जहाँ तक लिंग समानता, नारी सशक्तिकरण और अब बाल सुरक्षा की बात है तो सरकार के बगल से विभिन्न प्रकार के कदम उठावल जाता और इमें 5 मिलियन रुपया इंक्यूबेटर फॉर वुमेन अंडर द SME स्कीम देवल जाता और एक संगे संगे खासकर जो पैरास्टेटल बॉडीज की जो महिला रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व हवन ई पर भी जस्ती बल देवल जाता माने कि ऐसा प्रकार के बोर्ड कायम करल जाए जहां पर कम से कम 25% महिला शामिल रहियन जा। एगो शी इन्वेंट्स प्रोग्राम स्थापित करल जाए जहां तक महिलाओं को अनुसंधान माने कि रिसर्च और नवाचार यानी कि इनोवेशन में शामिल करे खातिर महिला के संख्या के जस्ती से जस्ती बढ़ावल जाया और जहां ले डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद बाते ओकर से जुड़ल जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स बाते ओकरा मजबूत करे पर जस्ती बल देवल जाए। एगो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोऑर्डिनेशन कमिटी गठित करल जाए जहां पर मल्टी एजेंसी रेस्पॉन्स सकेंजा प्राप्त करे।
0: Training and development, the Institute of Technical Education and Technology, and the Skills Development Authority will merge into one institution to avoid duplication, wasteful duplication. Third, the Ministry of Arts and Culture currently oversees 34
1: हैजाबरी जरूरतमंद लैका लोग के बारे में ई बुलल गल कि एगो नवा नेशनल अडॉप्शन बिल स्थापित करल जाए। यही नहीं, हैजापरी फोस्टर केयर एडवाइजरी यूनिट के मजबूत करल जाता फोस्टर केयर रेगुलेशन पर फिर से अध्ययन करल जाए। एगो स्ट्रीम लाइन असेसमेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव फोस्टर पेरेंट्स एवं खातिर और इतर जोन बातें क्वालिफाइड फोस्टर फैमिलीज

0: के एगो नेटवर्क के स्थापना करल जाए। इतर 10 मिलियन रुपया के प्रावधान करल जाता। नवा शेल्टर खातिर स्पेशलाइज केयर गिवर ट्रेनिंग खातिर और हाफवे होम खातिर।
1: हमनी के देश के तटवर्तीय इलाके के और उकर से जुड़ल जो जलवायु परिवर्तन से के जो समस्या बाते, जैसे कि आप लोग जाने लगा हमने के जो समुद्री इलाका पर ही विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होवेला, तो सरकार के बगल से 4 बिलियन रुपया निवेश करल जाता, खासकर कोस्टल इरोजन अडेप्टेशन प्रोग्राम के कायम करे खातिर। और 5 बरिस में 11.5 किलोमीटर की जो इरोडेड शो लाइन बाते ओकरा फिनो से रिहेबिलिटी करे खातिर 17 प्राथमिक जो इलाका बते ओकर जायजा लेवल जाए। और ओ इरोजन यानी कि भूक्षरण से जुड़ल जो समस्या बते ओकरा निपटावे खातिर विभिन्न प्रकार के कदम उठावल जाए। सरकार के बगल से विभिन्न प्रकार के कार्य भी करल जाए और सॉल्यूशन बेस यानी कि जो निवारण से जुड़ल जो कार्य बते ऊपर खासकर रिफोरेस्टेशन प्रोग्राम पर जस्ती बल देवल जाए।
2: प्रोडक्ट्स सच एज स्वीट्स फ्रूट जेलीज जैम्स क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स बिस्किट्स वाफल्स वेफर्स एंड च्युइंग गम्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st ऑफ अक्टूबर ऑफ दिस ईयर। I will move for the financial resolution regarding the increase in the rate of excise duty for tobacco, strong alcoholic drinks and sugar sweets and products later.
0: Auri Rodriguez tatha outer island vikas khatir hajapari sarkar ke taraf se 5.5 billion rupai ke allowance pradan karal jata aur 825 million capital expenditure khatir Rodriguez regional assembly khatir aur itara overall government expenditure jan bate sarkari kharch jan bate Rodriguez khatir u pahunchata 11.2 billion रुपए के। और यही नए हजापरी जो समझौता होल बाते सागस द्वीप समूह खातिर त हजापरी भी काफी ऐलान करल गल और हजापरी करीब 10 बिलियन रुपया के अग्रीमेंट पर बात करल गल बाते। और फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में हजापरी भी काफी ऐलान करल गल बाते।
2: एनी चार्जेबल इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 मिलियन रुपीस विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 35% एंड दिस टैक्स बैंड विल रिप्लेस द फेयर शेयर कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स। I'm setting up a high-level committee under the aegis of the Ministry of Finance to fundamentally review our tax system with a view to enhancing its fairness, its efficiency, and international
1: जी हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने विभिन्न प्रकार के जो कदम हैं उठाने की बात की है, जहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन पर बात की। और ये भी बताया जा रहा है कि हमने की जो सकल घरेलू उत्पाद के जो रेशियो बते वो 60% के कमती रहल। अब एगो डेफिसिट बते जे 3% ले ओकर रिप्रेजेंटेशन करत हवन। साल 2014-2024 के दरमियान ये भी बोलल जाता कि एगो ऐसन डेफिसिट हो रहा जहाँ पर 9.3% के बजट डेफिसिट हो रहा। बकर अब फाइनेंशियल ईयर माने कि जो आर्थिक साल 2024-2025 बाते ऊ में भी एगो सुधार लावल जाता।
2: द पब्लिक सेक्टर डेट इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी reaching 85.5% of GDP by the end of June 2027. And through our continued commitment to restore fiscal sustainability, balance with inclusive growth, we expect public sector debt to fall below 80% of GDP by June 2029. Madam Speaker, despite this downward trend, we must remain mindful.

0: mindful that our debt level is still significantly higher than that of our peers and continues to be closely monitored by the rating agencies. We cannot, I've explained this before, we cannot afford a downgrade.
1: डुप्लीकेशन के पहचान करे खातिर खासकर पब्लिक सेक्टर के एफिशिएंसी के बढ़ावे की दिशा में एगो स्टीयरिंग कमिटी गठित करल जाए और इस कमिटी के बगल से पारदर्शिता लावल जाए जहां पर जितना हो सके और जो सेवा बाते जनता खातिर निमन से सक्यंजा प्रदान करें
2: जहाँ खर्च के घटावे खातिर और एक नियंत्रण खातिर ई कमिटी जोन बाते कर स्थापना करल जाए ई अध्ययन करे के कि खर्च जोन बाते हर मंत्रालय के वो कितना हुआ था और ये भी देखे खातिर कि कौन तरह से चाहेला सब के सुधारे के
1: और जी हाँ और समिति के आरजस्ती पारदर्शी बनावे खातिर एगो डेप्यूटी फाइनेंशियल सेक्रेटरी के भी नियुक्त करल जाए
0: इम्पॉसिबल नॉट टू मिस द ह्यूज एलिफेंट इन द रूम
2: हजा परी है जैसे कि आप लोग सुने जा कि संसद के जो सदस्य हवन जा अब से वो लोग एगो जुति फ्रिश गारी जो न बातें ओकर खातिर एलिजिबल हो जनसा वो भी व्यक्तिगत प्रयोग खातिर और अपन हर जो न कार्यावधि के समय बातें ओकर दौरान जहाँ पहले 3 बरिस के रहल
1: एकर संगे संगे मॉरिशियस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हौजा परी विभिन्न प्रकार के मतलब कौशल पर जस्ती बल देवल जाए जहाँ परी स्किल्स डेवलपमेंट ऑथोरिटी के एगो मतलब ओकरा मतलब जस्ती मजबूत करे पर काम करल जाए कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के बगल से भी 34 पारास्टेटल और अफिलिएटेड बॉडीज के मिलल जुलल सहयोग पर काम करल जाए जहां पर जितना हो सके एगो रैशनलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कार्रवाई पर जस्ती बल देवल जाए
2: और हजापरी जैसे टैक्स पॉलिसी के बातें तो हजापरी एक्साइज ड्यूटी के जो रेट बातें खास कर तंबाकू के सामान में और जो शराब बातें ओकरा बढ़ावल जाता 10% से और यही नहीं जो मीठा यानी सामान बातें जो ओकरा भी बढ़ावल जाते जाता 12 से 15 सेंट से जी हाँ हर ग्राम के जोन मीठा सामान बाते और ये 20 जून 2026 से एकरा अमल में आनल जाता एकर अलावा कुछ अन्य सामान जैसे फ्रूट जेली जाम क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट बिस्किट वाफल्स वेफर्स और च्युइंगम ये सब पर ये जो बढ़ोतरी आनल जाता ओकरा लागू करल जाता पहला अक्टूबर 2026 से
1: फाइनेंशियल रिजोल्यूशन को ध्यान में रख करके खासकर तंबाकू और शराब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बते और खासकर शुगर स्वीट एंड प्रोडक्ट्स बते ओकर दाम पर भी मतलब वृद्धि होवे के अनुमान लगावल जाता और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स बाते ओकरा शुरू करे पर जस्ती बल देवल जाता खासकर साल 2027 जनवरी महीना से इफेक्ट माने कि वहाँ से शुरू हो या
0: Accordingly, we announce a progressive realignment of the eligibility age for BRP with the statutory retirement age of 65. In the same speech, I announce the setting up of a commission of experts to conduct an in-depth, holistic and comprehensive review of the entire pension landscape of the country and make recommendations for fair and sustainable reforms. After conducting wide-range consultations with all stakeholders, inviting some

0: the Vice President, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. We are putting an end to the entitlement to multiple non-contributory state pensions. These pensions will now be limited to a maximum of 2/3 of the highest salary, less any private pension than contributory state pensions, if any. For such public officials whose pensions are either in payment or pause, the pension will be immediately delinked from the PRB. Further increases will be aligned with what is proposed for public officers and workers at large. Therefore, with effect from the 1st of July 2026, the emoluments of the serving president, the serving vice president, and the pensions of retiring president and vice presidents, and wherever applicable to pensions of surviving spouses, will become fully taxable. In relieving pressure on distressed public finance, public officials are also being made to contribute towards fiscal relief and consolidation efforts. Such public officials as stewards of the public trust will therefore lead by example, and I must say public officials, I've just mentioned who they are, accepting immediate cutbacks in the benefits and demonstrating solidarity with the rest of the nation. To sum up the headlines of the pension reform package, to make it clearer, as a caring government, we have been attentive and receptive and responsive to the representations made by the expectation of stakeholders and the general public, enabling eligible beneficiaries flexibility to decide when to draw the pension, that is, between the age of 60 and 70. They have the choice. Secondly, directing scarce resources to those who most need it, namely the low-income earners, regardless of the employment status. The employment status doesn't get in it at all now. Thirdly, reinstating a meaningful national contributory retirement scheme which will pay out decent benefits.
1: हमने की जो बरजना बातें खासकर जे लोग तीन कोरी या फिर तीन कोरी दस बरिस के उमीर हवन जा उ लोग खातिर एगो विकल्प मिली कि कब उ लोग सकें जा अपन बेनिफिशियरीज फ्लेक्सिबिलिटी लेवे के खासकर उ लोग के संगे एगो विकल्प मिली और उ लोग ही निर्णय लियन जा कि कब और कैसे अपन लाभ उ लोग सकें जा लेवे
0: एज पेंशन इंक्लूडिंग ओवर 75% ऑफ फुल पेंशन सो 90% ऑफ पेंशनर्स विल एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम. What we're saying is that the very, very, those who are above this, which is a small amount, 10% I think it is, around 10%. Before concluding, Madam Speaker, I'm announcing several measures to better protect the most vulnerable. First, I'm increasing the monthly carer's allowance from 3,500 to 4,250.
1: प्रधान तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ई बात के ऐलान कर लें कि मासिक केयरर्स अलाउंस की 3,500 से 4,250 रुपए ले बढ़ा देवन थवन.
0: For special education needs learners from 562 million to 619 million.
1: एकर संगे संगे पूर्व प्राथमिक स्कूल के जो ऐसन लड़का हवन जा जहाँ पर उ लोग विकलांगता जैसे लोग प्रभावित हवन जा उ लोग खातिर टैक्सी फेयर्स की रिफंड करे खातिर भी सरकार के बगल से कदम उठावल जाता. एकर संगे संगे स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स खातिर एगो ऐसन बजट पर निवेश करल जाता जे 562 मिलियन से बढ़ा के 619 मिलियन कर देवल गल बाते.
0: सिक्स एल्डरली पर्सन एज 18 अबव विल बी एलिजिबल ऑन रिक्वेस्ट.
1: जोन जोन लड़का स्पेशल एजुकेशन नीड्स के स्कूल जालन सा और उ लोग डिसलेक्सिया जैसन समस्या से प्रभावित हवन जा तो उ लोग खातिर 15 से जस्ती साइकोलॉजिस्ट माने मनोचिकित्सक की सेवा देवल जाया.
0: द फर्स्ट 6 मंथ विल बी पेड एट फुल सैलरी एंड द रिमेनिंग 6 मंथ्स व्हिच विल बी ऑप्शनल at half pay.
1: जिन बर्जना बते जी

के चार कोरी दस बरिस के उमिर हवन जा उ लोग खातिर एगो चिकित्सा सेवा देवल जाए, खासकर घर पर ही चिकित्सा सेवा देवल जाए। एकर खातिर 58 मिलियन रुपया के निवेश करल जाता।

0: हमने के देश खासकर ऐसा जो गर्भवती महिला हो जा उन लोग के मैटरनिटी लीव के बढ़ा देवल जाता
1: Closing this recognition gap isn't just policy fairness. It is a moral imperative to honor hard work, unlock talent across our island, and build a future where every path to contribution and dignity is respected.
0: Maternity leave ke sange sange paternity leave ke jun दिन बाते ओकर संख्या के बढ़ा देवल गल बाते एकर मतलब यह कि 4 सप्ताह के बजाय अब 6 सप्ताह कर देवल गल बाते
1: members of the national assembly and all the stakeholders for their contribution I would also like to thank the financial secretary the staff of the ministry of finance the chief economic advisor and my other advisors as well as the staff of the prime minister's office who have worked diligently on this budget In conclusion, Madame la Présidente, au terme de cet exercice, il faut regarder la vérité des comptes avec la lucidité qu'exige le moment. Ce budget n'est pas celui de la facilité, il est celui du devoir, le devoir de vérité. Nous avons fait le choix difficile mais nécessaire. La consolidation fiscale pense qu'une nation Une nation ne saurait bâtir durablement sa prospérité sur le sable mouvant de l'endettement perpétuel. Impossible. Chaque roupie de pensée engage non seulement le présent, mais aussi l'avenir de nos enfants qui hériteront soit de nos imprudences, soit de notre courage.
2: जैसे कि अभी एजा परी ये बतावल गल और खासकर जैसे आप भी एक में संक्षिप्त में बोला कि जो मैटरनिटी लीव बाते ओकरा बढ़ा देवल जाता 12 महीना लेख यानी 1 साल तक और 6 प्रथम महीना खातिर उ लोग के पूरा यानी फुल सैलरी प्रदान करल जाए और बाकी के 6 महीना खातिर उ लोग के ऑप्शनल रूप से वेतन देवल जाए यानी आधा वेतन प्रदान करल जाता और आप जैसे ये बोला कि पैटर्निटी लीव के 4 से 6 समय लेख बढ़ावल जाता ये भी बतावल गल कि जोन पब्लिक हॉलीडे बाते सार्वजनिक छुट्टी जोन दिमास के परता अब अगर दिमास के अगले दिन यानी सोमवार के अब एगो पब्लिक हॉलीडे दिखलिया खरल जाए और जोन जवान लोग हवन जा मॉरिशस में उ लोग के जोन बातें समान अवसर प्रदान करल

0: FM 3 Radio. Radio. Radio.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम द्वारा प्रस्तुत साल 2026-2027 बजट का लाइव प्रसारण उमा गुरबीन और अभी उदय द्वारा भोजपुरी में अनुवादित। थोड़ी देर में होगा समाचार बुलेटिन आज का, और तब तक के लिए आपके लिए कुछ म्यूजिकल ट्रैक पेश करते हैं।

0: आज का ये बुलेटिन मुख्य रूप से बजट 2026-2027 के मुख्य कदमों पर आधारित रहेगा। आज प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करते हुए इसे एक जिम्मेदार बजट करार दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने आसान रास्ता चुनने के बजाय कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट कहा है कि यह बजट केवल अगले बारह महीनों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में मॉरिशस की दिशा तय करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उनके अनुसार देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, तकनीकी बदलावों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच नई सोच और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान कहा कि कई बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि दर्ज करना नहीं, बल्कि ऐसी वृद्धि सुनिश्चित करना है जो टिकाऊ हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। तो यशना मिश्रा हमारे साथ हैं। इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों को बजट में शामिल किया है।
1: तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस को बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। उनके अनुसार आने वाले वर्षों में नवाचार, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और उत्पादकता आर्थिक सफलता के प्रमुख आधार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी, लेकिन साथ ही नए अवसरों और नए विकास क्षेत्रों को भी अपनाना आवश्यक होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने निवेश, ठेकेदारी, कौशल विकास और आर्थिक आधुनिकीकरण को विकास रणनीति के प्रमुख तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। भाषण में भविष्य की तैयारी पर विशेष बल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो नई तकनीकों का लाभ उठा सकें, युवाओं के लिए अवसर पैदा कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की स्थिति को मजबूत बना सकें। कई अन्य क्षेत्रों को लेकर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, इस पर ज़्यादा विस्तार आस्था देंगी।
0: जी, आप नज़र डालते हैं उन प्रमुख कदमों पर जिसकी घोषणा आज बजट भाषण में प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने एक जिम्मेदार और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया बजट, इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नई गति देना, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मॉरिशस को AI के युग के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें AI और डिजिटल इजेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप और SMEs को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, पारंपरिक क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, समुद्री अर्थव्यवस्था की क्षमता का लाभ उठाना तथा निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करना शामिल है। तो भारत के सहयोग से चैंपियन ऑफ AI प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साथ ही 25 मिलियन रुपए लागत से नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा जो प्रशिक्षण, प्रमाणन और AI आधारित स्टार्टअप कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करेगा। सरकार ने अगले वर्ष 25,000 लोगों को AI से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण देना है। इनमें ठेकेदार, पेशेवर डेवलपर्स और विभिन्न सेक्टरों के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा 5,000 सरकारी कर्मचारियों को भी AI के जिम्मेदार उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के सेक्टर की बात करें तो AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MyTGPT प्रोग्राम का विस्तार किया जाने वाला है और अगले वर्ष लगभग 8,000 अध्यापकों को AI आधारित शिक्षण उपकरणों का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि 12,000 ग्रेड 9 के छात्रों को भी AI समर्थित शिक्षण साधनों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप के क्षेत्र को नई गति देने के लिए सरकार स्टार्टअप एक्ट को 2 में स्टार्टअप हब, पब्लिक प्राइवेट स्टार्टअप काउंसिल और EDB के माध्यम से एक्सेलरेटर स्कीम शुरू करेगी। स्टार्टअप कंपनियों को संचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्षों की इनकम टैक्स हॉलीडे भी दी जाएगी। इनोवेशन की जहां तक बात है उसको बढ़ावा देने के लिए 10 यूनिवर्सिटी छात्रों को 5 लाख रुपए तक की इनोवेशन स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने विचारों को व्यवसायिक परियोजनाओं में बदल सकें और एसएमईज के लिए सरकार एसएमई बिल लाएगी पात्र एसएमईज को उपयोगी वाहनों पर सीमा शुल्क छूट का लाभ मिलेगा और योजनाओं ग्रांट तथा वित्तीय सुविधाओं की जानकारी के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच स्थापित किया जाएगा निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुद्दो में 83 बीघा भूमि पर हाईटेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित की जाएगी सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में वस्तुओं के निर्यात को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है और बंदरगाह क्षेत्र में यूएसडी जो 1 बिलियन यूएसडी मूल्य की आयरन कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट उसको लागू कर दिया जाएगा वहीं मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी और कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगभग 7 बिलियन रुपए के निवेश प्रोग्राम पर भी काम चल रहा है हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2.7 बिलियन रुपए का निवेश है इसमें बायोमेट्रिक ई गेट सहित डिजिटल सीमा नियंत्रण प्रणाली लागू की जाएगी सड़क मूल ढांचा को मजबूत करने के लिए फोबाग से एयरपोर्ट तक M4 मोटरवे प्रोजेक्ट हेतु 2 बिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक चीनी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के तहत अगले 3 वर्षों तक हर वर्ष 100 मिलियन रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे छोटे और मध्यम उत्पादक की 500 हेक्टेयर भूमि का पुनर्वास किया जा सके चाय उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए छोटे उत्पादकों को पुनः रोपण लागत पर 50% ग्रांट दिया जाएगा अधिकतम 25,000 रुपए प्रति बीघा तक दिया जा सकेगा इससे वर्ष 2029 तक चाय उत्पादन में 50% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए फॉरेस्ट बिल लाया जाएगा और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा पशुपालन क्षेत्र के लिए फार्मों के विकास पशु आहार सहायता पशु खरीद प्रोत्साहन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे साथ ही 50 मिलियन रुपए की लागत से एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत इस वर्ष के अंत तक नया बैंक ऑफ मॉरिशस बिल नया बैंकिंग बिल और एक नया रेजोल्यूशन रेजीम पेश किया जाएगा इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को अधिक मजबूत सुरक्षित और आधुनिक बनाना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर निर्माण क्षेत्र में सरकार ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू करने के लिए कानून में संशोधन लाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की इमारतों को ऊर्जा की खपत करने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देना होगा अन्य कदमों पर नजर याचना आपके साथ
1: पर्यटन क्षेत्र को लेकर नए वैश्विक रुझान और उभरती हुई चुनौतियां हमारे पारंपरिक मॉडल को प्रभावित कर रही हैं विविधता और टिकाऊ विकास की बात की गई लगूनों का संरक्षण और बायोडायवर्सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जैसे कि ब्लूप्रिंट में उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि लगून समुद्र तट जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर्यटन रणनीति के केंद्र में रहनी होगी साथ ही पारंपरिक तटीय मॉडल से आगे बढ़कर नए पर्यटन अनुभवों के विकास का समर्थन किया जाएगा प्राकृति आधारित पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन स्वास्थ्य पर्यटन और सामुदायिक पर्यटन पर अधिक जोर दिया जाएगा ताकि विकास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और आर्थिक रूप से समावेशी हो एक पर्यटन स्थल के रूप में रोड्रिग्स की विशिष्टता को संरक्षित किया जाएगा और साथ ही नए रनवे के निर्माण के माध्यम से इसे गंतव्य के रूप में और महत्व दिया जाएगा पर्यटन उत्पाद में विविधता लाने और स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार मॉरिशस के विभिन्न क्षेत्रों में इको इंटीग्रेटेड टूरिज्म के विकास का समर्थन करेगी ये गांव देश की सांस्कृतिक विरासत स्थानीय व्यंजन इतिहास कृषि और प्राकृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित करेंगे डेस्टिनेशन मार्केटिंग में निवेश किया जाएगा प्रमोशन कैंपेन के दौरान टिकाऊ विकास पर्यावरण प्रिय पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा सी सैंड एंड सन की नीति के परे देश को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है इन सभी के समर्थन के लिए 1 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें मॉरिशस टूरिज्म पोर्ट्स एंड अथॉरिटी को 490 मिलियन रुपए दिए जाएंगे सगायतों जुवाल संस्था को रिवैम्प करके खामियों को पूरा किया जाएगा एक डिजिटल प्रणाली बनाई जाएगी जिसके जरिए विदेशी मॉरिशस का दौरा करने के लिए ई वीजा के लिए अर्जी दे पाएंगे इससे एयरपोर्ट पर वेटिंग टाइम कम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी और शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कई कदमों का ऐलान किया गया है ताकि इस क्षेत्र को और आधुनिक बनाया जाए और बच्चों की के पूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित हो इस पर ज्यादा विस्तार आप इस रिपोर्ट में सुन पाएंगे विवरण सुमेहरा अकबर अली का है
2: शिक्षा को और ज्यादा कारगर बनाने और सबका एक्सेस बढ़ाने के लिए क्षेत्र के बजट को 2.6 बिलियन रुपए से बढ़ाया जा रहा है एक भी बच्चा पीछे ना रहे इसके लिए किताबों और शैक्षिक सामानों में 133 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे 3 नए MITD सेंटर्स को कायम किया जाएगा ताकि ग्रेड 7 से ग्रेड 9 के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके इसके अलावा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए एक बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी प्रधान एवं वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सैन स्कूलों के लिए एक खास इंटरवेंशन इकाई को कायम किया जाएगा सरकार ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के बच्चों के वास्ते एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत करने का मकसद रखती है और स्कूलों में बुलिंग के मसले से निपटने के लिए सरकार एंटी बुलिंग अभियानों में 10 मिलियन रुपए निवेश करेगी उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सतह वाली तालीम का दर्जा देने के लिए एक नए ढांचे को विकसित किया जाएगा बजट 2026-2027 में एक स्टडी इन मॉरिशस पोर्टल को लॉन्च करने का भी प्रावधान है जिसके जरिए मकामी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिले की प्रक्रिया कर सकें पूर्व प्राथमिक से तृतीय शिक्षा संस्थाओं के मूल ढांचों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा 824 मिलियन रुपए निवेश करने का प्रावधान है
0: सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूल खर्चे कम करने पर जोर दिया जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी और सभी मंत्रालयों के खर्चों पर फिर से गौर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि सांसद अब पूरे कार्यकाल में केवल एक ड्यूटी फ्री कार्ड पात्र होंगे सिगरेट और शराब पर उत्पाद शुल्क में 10% की वृद्धि लाई जाएगी अधिक चीनी वाले उत्पादों पर कर बढ़ाया जाएगा उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा अन्य मीठे उत्पादों तक भी बढ़ेगा और सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू होगा पहली जनवरी 2027 से सामान्य जो इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 5% इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स लागू होगा और विशेष या व्यक्तिगत जो गाड़ियां पंजीकरण नंबर रखने वालों पर वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा 1 मिलियन से 12 मिलियन तक की कर योग्य आय पर 20% टैक्स लगेगा 12 मिलियन से अधिक की आय पर 35% टैक्स लगेगा और VAT में कोई बढ़ोतरी नहीं लाई जाएगी टैक्स व्यवस्था पर फिर से गौर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी याचना अन्य कदमों पर नजर आपके साथ
1: खरीद शक्ति को बरकरार रखा जा सके खासकर मध्य और निम्न आय वाले परिवारों के लिए इसके वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बड़ी मात्रा में मूलभूत सामान खरीदेगा जिनका दाम नियंत्रित होगा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर पिछली बार निर्धारित 10 बिलियन रुपए के अलावा इस बजट में 2 बिलियन रुपए जोड़े जा रहे हैं कौन मटन का

0: ट्यूना, बच्चों के खाने, मैकरोनी, काली दाल, तूर की दाल, राजमा, लंचन मीट आदि पर इस जुलाई महीने से दामों में कमी लाई जाएगी। एक नया ई कॉमर्स बिल भी पेश किया जाएगा। 2035 तक आयात पर निर्भरता कम करने के वास्ते एक नई परियोजना चलाई जाएगी। खाद्य पैदावार के लिए और खेती के लिए 25,000 एकड़ जमीन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन बिल पेश किया जाएगा और कर्मचारियों की भर्ती फास्ट ट्रैक पर किया जाएगा। 11,000 परिवारों के लिए 175 मिलियन रुपए की रकम निर्धारित की गई है पानी के टैंक्स की खरीद के लिए। अगले 3 सालों के लिए पानी जमा करने के स्थलों के विकास के लिए 6.4 बिलियन रुपए की रकम निर्धारित की गई है। 2035 तक रिन्यूएबल ऊर्जा पैदावार बढ़ाने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है और मकानों और व्यवसायों से सौर्य ऊर्जा में निवेश करने की मांग की जा रही है। जिन मकानों में सौर्य ऊर्जा पैदावार की जाती है उनकी एक्सपोर्टिंग ग्रिड को 4.20 रुपए से 4.84 रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। मिठाइयां, जैम, क्रिस्टलाइज्ड फल, बिस्किट, कई अन्य मीठे खाद्य पदार्थों का दाम भी 1 अक्टूबर से बढ़ाया जाएगा। पेंशन को लेकर बजट में कदमों का ऐलान किया गया। बेसिक पेंशन सिस्टम में कई खामियां थीं जिनकी फाइनेंसिंग पूर्ण रूप से करदाताओं द्वारा किया जाता था। 60 साल की उम्र वालों को पेंशन दिया जाता था जो अन्य देशों में है ही नहीं। पूरी पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में पेशेवरों द्वारा एक गहन अध्ययन किया जाएगा। एक पेंशन रेगुलेटरी केंद्र की स्थापना की जाएगी। बीओपी में सुधार जनवरी 2027 से अमल में लाया जाएगा। मात्र उम्र को लेकर ही पेंशन दिया जाएगा, यानी यदि कोई नौकरी भी कर रहा हो तो 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर उसे उसका पेंशन दिया जाएगा। 4,000 रुपए की सीमा 14,000 रुपए की सीमा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा है जो 2025 में 28,000 रुपए की मध्य आय को का 50% है। वास्तव में ये इस सीमा से कम आय वाले प्रत्येक योग्य व्यक्ति को उनका पूरा SAP प्राप्त होगा और कृषि सेक्टर पर ज्यादा विस्तार आस्था दे रही है।
1: जी हाँ, कृषि सेक्टर में कई कदमों का ऐलान किया गया है, जैसे कि वर्ष 2030 तक चीनी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के तहत अगले 3 वर्षों तक हर वर्ष 100 मिलियन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उत्पादकों की 500 हेक्टेयर भूमि का पुनर्वास किया जा सकेगा। विधि मासीपुरन
2: 2030 तक 2,50,000 टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और मध्यम किसानों की 500 हेक्टेयर भूमि के पुनर्वास के लिए अगले 3 वर्षों में सालाना 100 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को 25,000 रुपए प्रति औपौंग की अधिकतम सीमा तक पुनर्रोपण लागत का 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय के उत्पादन में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे जंगलों के लिए जलवायु लचीलापन बनाते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फॉरेस्ट बिल पेश किया जाएगा। एक कृषि वानिकी परियोजना लागू की जाएगी। ये शोधकर्ताओं और किसानों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, साथ ही स्थानीय बाजार के लिए सुरक्षित भोजन का उत्पादन करेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा। हमारे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुधन उत्पादन बढ़ाने में निवेश कर रही है, जैसे कि फार्म भवनों, बकरी प्रजनन फार्मों के उन्नयन के लिए 45 मिलियन रुपए और प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मवेशी और भेड़ प्रजनन फार्मों को स्केल अप किया जाएगा। प्रजनकों द्वारा पशु आहार की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए 75 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। पशुओं की खरीद, उपकरणों और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सहायता हेतु प्रोत्साहन के लिए पशुधन विकास योजना के तहत 27 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और एक आधुनिक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए 50 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे।
1: बजट 2026-2027 में सरकार की कुल आमदनी 235.5 बिलियन और कुल खर्च 266.7 मिलियन रहने का अनुमान है और बजट घाटा GDP के 3.7% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक कर्ज को जून 2027 तक GDP के 85.5% और जून 2029 तक 80%

0: नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, कहा प्रधानमंत्री ने। और सरकार का कहना है कि कर्ज का स्तर अभी भी ऊंचा है और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से आयात और कर्ज की लागत बढ़ सकती है। बात करते हैं आवास के सेक्टर के बारे में। आवास नीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि एक सम्मानजनक घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि गरिमा और सामाजिक सुरक्षा की नींव है। उन्होंने कहा कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से 8,000 सामाजिक आवास परियोजना के पहले चरण के लिए आवश्यक भारी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 2 बिलियन रुपए का प्रावधान है। साथ ही हाईलैंड्स और खिष्टे में महत्वपूर्ण पानी निकासी व्यवस्था के निर्माण के लिए 25 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं इस बजट में। करुणा लालू।
1: सामाजिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए एक निष्पक्ष आवास नीति अपनाई जा रही है। एक उचित मकान गरिमा का आधार है। ये गरिमा सभी निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक हकीकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि कम आय वाली सोशल हाउसिंग के लिए बजट में 2 बिलियन रुपये का प्रावधान है, जो 8,000 आवास परियोजना के पहले चरण के लिए है। हाईलैंड्स और रिश्तेया में नहर प्रणाली के लिए 25 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। सरकार और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी से निजी ज़मीनों पर मिक्स्ड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलाई जाएंगे। इसका एक हिस्सा निम्न और मध्य वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए निर्धारित होगा। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से मध्यम आय वाले परिवारों के लिए करीब 1,000 आवासों के निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 150 मिलियन रुपये मध्य वर्गीय परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ 100 प्लॉट जमीन को तैयार करने के लिए निर्धारित किए जाएंगे। पहली बार जमीन खरीदने वालों के लिए प्रथम 3 मिलियन रुपये की लागत पर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी की छूट होगी। इसके अलावा पहली बार एक अपार्टमेंट अथवा घर खरीदने वाले के लिए प्रथम 6 मिलियन रुपये की लागत पर भी छूट होगी। एक कृषि जमीन के धारक के लिए भी ये लागू होगी।
0: कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट 2026-2027 में 14.2 बिलियन रुपए का प्रावधान है और पुलिस की गाड़ियों के आधुनिकीकरण के लिए 125 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं इस बजट में। पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 531 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना के लिए 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा ताकि पुलिस और नागरिकों के बीच भरोसा और सहयोग और बढ़े। सेफ सिटी निगरानी प्रणाली का विस्तार भी किया जाएगा। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान शुरू किए जाएंगे। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की बात है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष को तेज किया जाएगा और ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेगी और रोकथाम, तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना तथा उपचार और पुनर्वास पर खास ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल को अतिरिक्त 80 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग नशीले पदार्थों के खतरों, तस्करी के दुष्परिणामों और उपलब्ध उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित की जाएगी जिससे नए प्रकार के ड्रग्स के शीघ्र पहचान की जा सकेगी। सरकार को उभरते ड्रग्स के रुझानों पर समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा सके। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यों में नशीले पदार्थों की रोकथाम को शामिल करने के लिए 50 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है। अदालतों, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देश भर में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने और आवश्यक सुविधाओं के लिए की योजना इस पर तैयार की जाएगी और इस परियोजना में 10 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। और अब चले जानते हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट 2026-2027 में कौन कौन से कदमों का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी हमें दे रही हैं सुमेरा अकबर अली।
2: हर साल टैक्स से प्राप्त बिलियन

0: रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। मरीजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2,220 मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इनमें नर्सों की भर्ती भी शामिल होगी। 40 मिलियन रुपए निवेश करके सरकार विजिटिंग डॉक्टर स्कीम को लागू करने का मकसद रखती है। अब से हॉस्पिटल मैनेजर्स अस्पतालों की कार्यकुशलता का आश्वासन रखेंगे। मधुमेह की रोकथाम और इलाज के लिए बजट 2026-2027 में 40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मूल ढांचों को आधुनिक बनाने के वास्ते 1.5 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नए SSRN अस्पताल का निर्माण, आयुष केंद्र, एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ENT अस्पताल में एक डायलिसिस केंद्र आदि का निर्माण शामिल है। मोटापे से निपटने के लिए एक कार्डियो मेटाबॉलिक केयर एंड रिसर्च केंद्र की तामीर भी की जाएगी।
1: और अंत में बजट के कुछ मुख्य कदमों में ये भी शामिल हैं, 2,63,200 पेंशन प्राप्त लोगों का 90% हिस्सा अभी भी स्टेज एज पेंशन से लाभ उठा पाएगा। इनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। केयर्स अलाउंस को 3,500 से 4,250 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। पंजीकृत पूर्व प्राथमिक स्कूलों में विकलांगता की अवस्था वाले बच्चों के लिए टैक्सी शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स के बजट को 562 मिलियन रुपए से 619 मिलियन रुपए तक बढ़ाया गया है। अस्पतालों में डिसलेक्सिया और ऐसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 15 साइकोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी। 90 साल से ज़्यादा उम्र वालों को घर पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन का लाभ दिया जाता है। इस उम्र को 85 साल का किया गया है। मैटरनिटी लीव की बात करें तो 12 महीनों तक इसे बढ़ाया जा रहा है। 6 महीने तक पूरा पगार यानी फुल पेड लीव होगा और बाकी 6 महीने हाफ पे होगा। पैटर्निटी लीव को 4 से 6 हफ्तों तक बढ़ाया जा रहा है और यदि कोई पब्लिक हॉलीडे किसी शनिवार को पड़ रहा है तो उसके अगले दिन सोमवार का दिन पब्लिक हॉलीडे करार दिया जाएगा। वोकेशनल स्ट्रीम के नौजवानों के लिए 2 अतिरिक्त स्कॉलरशिप भी जोड़े जा रहे हैं। अब चलिए अंत में जानते हैं मौसम का हाल आस्था के साथ।
2: अंत में जानते हैं मौसम का हाल स्थानीय स्तर पर। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और कल सुबह के दौरान भी देश भर में धूप खिली रहेगी। केवल दोपहर बाद देश के दक्षिण में कुछ कुछ वर्षा हो सकती है। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की अपील की जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान अन्य इलाकों पर 17 से 19 और अधिकतम साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:38 पर हो गया है। सूर्योदय का सुबह 6:44 मिनट पर होगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। ये बुलेटिन मुख्य रूप से बजट 2026-2027 के मुख्य कदमों पर केंद्रित रहा। अभी के लिए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर यशराम मिश्रा के साथ। धन्यवाद।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। कानपुर लेन नोवेल फॉन्स में पचासी साल के 85 ईयर्स ओल्डर के श्री दीनदयाल रामबजू जो जगदीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी बेटी बबीता मंदब के मकान कानपुर लेन नोवेल फॉन्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30।

0: 7 AM. नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थोंगबाओ पोटली में. नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थोंगबाओ पोटली में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री रामजीत हरिमन सिंह जगदेव जो रामगीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थोंगबाओ पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM. नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे में. नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद रामसामी जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी चिंता रामसामी के मकान नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM. ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दाउमत ओरी जो कुमारी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल ओहे के मकान ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओहे लेन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM. सवान रोड न्यू वेल्फ्रांस में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गौकरण मंघा जो कस्टेलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान सवान रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोस्पेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM. रिजर्वर रोड सचीज खांबे में 42 साल के 42 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमिता रामचंद पैदाशी नाम बंधु और जो श्वेता के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति रिशाल रामचरण के मकान रिजर्वर रोड सचीज खांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खांबे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है.
1: Continuous music.

0: इस समय रात्रि के 7:38 हुए हैं और अभी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में इस रेडियो मनोरंजन पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गया होगा। यही उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए आप लोगों के लिए हम पेश करते हैं आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम, और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम रेडियो मनोरंजन पर।
1: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
0: चलिए जरा हम आपके नाम करते हैं फरीब मूवी का ये गाना, और दिलों की आवाज में आप जरा ये दिल की आवाज सुनिएगा। हमारी आपकी मुलाकात वैसे हो रही है हमारे इस कार्यक्रम में, और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में वैसे आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं। और वैसे इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के ही गाने पेश करते हैं। आपके अपनों के नाम कीजिएगा अपनी पसंद के गाने।

और पेश करते हैं हम अलबेला मूवी का ये गाना। इस गाने की फरमाइश करने वाली हैं संध्या जी, जो त्याहोश की रहने वाली हैं। संध्या जी ने ये गाना मांगा है अपने पति रमेश के लिए।

और इस बार हम तो मूवी का ही गाना आप सुनिएगा। अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ें हैं, टीना जी की फरमाइश है, इन्होंने अब ये गाना मांगा है अपने भाई अरविंद के लिए।

लोगों के नाम करते हैं वो गाने जो आपने फरमाए जिनकी आपने फरमाइशें की है। चलिए जरा लक्ष्य मूवी का ये गाना हम पेश करते हैं उषा जी के लिए। उषा जी जो रहती हैं सूरीनाम, उन्होंने ये गाना अपने पूरे परिवार के लिए मांगा है, अपने पति विनेश के लिए, अपने बेटे राघव के लिए और बेटी युष्णा के लिए।

वक्त हमारा है प्यार का ये पागलपन है प्यार की ये दीवानगी है प्यार की ये गहराई है चलिए जरा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ें सुनते हैं वक्त हमारा है मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं उमा जी के लिए जो रहती हैं घोंबे उमा जी इस गाने की फरमाइश कर रही हैं अपनी तीन सखियों के लिए सुनीता मेधा और रेखा के लिए

0: Continuous music.
1: फ्री पर रेडियो मनोरंजन पर आपका हमारा साथ है और साथ साथ रहेंगे हम फरमाइशों के सिलसिले में। चलिए ज़रा हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में इस बार आपको सुनवाते हैं हम साथ साथ हैं मूवी का ये गाना हर कयाकिंग और साथियों की आवाज़ों में। और ये गाना हम पेश करते हैं ललिता जी की तरफ से। तो योर की ललिता जी ने अपने भतीजी अश्मिता को हैप्पी बर्थडे कहा है। उनकी भतीजी अश्मिता जी अपना जन्मदिन मना रही हैं और अश्मिता जी के पति अभिषेक उन्हें मंगल कामनाएं दे रहे हैं। उनकी मम्मा ज्ञानी, उनके पापा मुनेश और भाई कमलेश, भाभी करुणा, जगमन परिवार मिलकर उन्हें कह रहे हैं आपकी उम्र लंबी हो, आपकी खुशियां दुगनी हो और आपके मन में संतुष्टि बहुत आए। यही दुआ उनके दिल से निकल रही है। और यही कि चलिए हम ललिता जी की तरफ से बजवाते हैं उनकी बहन सुदेवी के लिए, छोटी जी प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी के लिए, सुक्कलाल मौसी के लिए, उषा लोकाना के लिए और ललिता चाची आप सबों को मंगल कामनाएं म्यूजिक डे की दे रही हैं।

मझधार मूवी का ये गाना आप सुन रहे हैं। ये गाना विवेक जी की पसंद पर, विवेक जी ने पोंपले मुझसे हमें फ़ोन किया और बताया कि ये गाना उनको सुनना है, उनके माता पिता को भी सुनना है। सो चलिए ये गाना हम विवेक जी की तरफ से उनके माता पिता के नाम कर

और चलिए जरा हम फ्लिक ऑफ लक के अनीता जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। देवदास मूवी का ये गाना है, उन्होंने मांगा है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और उन्होंने ये गाना मांगा है अपने पति राज के लिए, बेटे अंतिश अंकुश के लिए, बहू मनीषा अशीमा के लिए, पोती हिमेशा आद्या, पोते अंश के लिए, और उन्होंने ये गाना हमारे सभी श्रोताओं के नाम किया है। चलिए फ्रीक ऑफ लाक की अनीता जी की तरफ से ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं हम।

और इस बार चलिए हम पेश करें कुमार सानू की आवाज़ का ये गाना आ गले लग जा, मूवी से लिया गया। ये गाना आप कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में भी सुनिएगा। और इस गाने को हम बजवा रहे हैं ग्रीष्मा की देवयानी जी के लिए।

सो फरमाइशों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे और हरीश जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। हम हो गए आपके मूवी का ये गीत हरीश जी ने पसंद किया है बुबा से।

चलते चलते जो जाएंगे हम तो म्यूजिक का ये सिलसिला अपनाएंगे हम, अपना के जिस गाने को हमने फरमाइश का एक जरिया बनाया है उसको हम आप तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। चलिए जरा हम पेश करते हैं चलते चलते मूवी का ये गीत, अभिजीत अलकया अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गाना हम बजवा रहे हैं अखिल जी के लिए। अखिल जी जो रहते हैं सुरीनाम, उन्होंने गाना मांगा है अपनी बहन सुविधा के नाम।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: तो हुजूर चलिए जरा आगे बढ़ें हम राजा भैया के गाने के साथ। राजा भैया का ये गाना है स्वेनल जी की पसंद और स्वेनल जी ने ये गाना मांगा है अपने राजा भैया के लिए यानी कि भाई श्रवण के लिए, भाभी कृति के लिए, अभिनव कियान नाविया और पूरे तिलक फैमिली के लिए।

तो हुआ था लेकिन थोड़ी देर से खत्म भी होगा इसलिए अगर आपने फरमाइशें की हैं तो आप डोंट वरी अभी 9:15 बज चुके हैं जी हाँ लेकिन 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम समाप्त नहीं होगा सो आप धैर्य धरिएगा हम आपके गाने ज़रूर पेश करेंगे आपकी फरमाइश किए हुए गाने ज़रूर पेश करेंगे हमारा प्रोग्राम 10 बजे तक चलने वाला है सो इस बार जो गाना हम पेश करेंगे वो है द डॉन मूवी से लिया गया और ये गाना हम गुलशन जी के नाम करते हैं क्योंकि गुलशन जी ने इस गाने की फरमाइश की है सो गुलशन जी की तरफ से ये गाना हम उनकी मामा प्रभा के नाम करते हैं उनकी बहन दीक्षिता के नाम आयशा के नाम और भोरा परिवार के नाम और हमारी सखी हंसिनी के नाम तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़

और इस बार हम सितमगर मूवी का ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में. और सितमगर मूवी का ये गीत हमसे मांग रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी. उन्होंने ये गाना अपने बेटे निशाल के लिए मांगा है, सुबीबी से सर के लिए, नीलिमा के लिए, ऋषि के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए. सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारी सखियों के लिए भी उन्होंने ये गाना किया है, हंसनी, पूनम, उषा और रत्नाज के लिए.

और चलिए बढ़ जाएं हम इस बार फिल्म मिलन के गाने की ओर. ये गाना हम उमा जी की तरफ से उनके पूरे परिवार के नाम करते हैं और ये गाना है मिलन फिल्म का पंकज चुड़ास की आवाज़ में, साथ में साधना सरगम की आवाज़ भी सुनिएगा.

0: RM3 Radio. Radio.
1: So, आज हमने सुना बजट 2026-2027 का भाषण प्रधानमंत्री जी से. So, ये हम हमारे रेडियो मर्शिस चैनल पर और रेडियो मनोरंजन चैनल पर जो प्रोग्राम है इसकी वजह से थोड़ा बदलाव आ गया है. सो हमारा जो दिलों की आवाज़ कार्यक्रम है वो ये प्रोग्राम हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. 10 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम हम थोड़ी देर से ही शुरू करेंगे, 10 बजे के लगभग ही शुरू करेंगे. सो चलिए हम ज़रा आप लोगों के नाम करते हैं. तेजाब मूवी का ये गीत हम करुणा जी के नाम करते हैं जो रहती हैं वालिद फैद. करुणा जी ने गाना अपनी माँ के लिए मांगा है, उनकी माता खुश की रहने वाली है और ये गाना उन्होंने अपने भाई अरविंद के नाम भी किया है. चलिए सुनते हैं तेजाब मूवी का ये गीत.

यही गाना हम पेश करते हैं ज्योति जी की तरफ से, शातू बनारस की ज्योति जी की तरफ से, उन आशनी, रेखा, सुरेखा और मंतप फैमिली के लिए।

तेरे नाम मूवी का ये गाना है और इस गाने को हम बजवा रहे हैं विषया जी के लिए। विषया जी ने ये गाना अपनी सहेलियों के लिए मांगा है जो एक ही क्लास में है।

0: RM3 Radio.
1: और मनोरंजन आपका हम करते जाएंगे, गानों का सिलसिला आप तक पहुंचाते जाएंगे। चलिए जरा हम आपको सुनवाते हैं तराना मूवी का ये गाना। इस समय 9:27 हुए हैं।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अगर आपका काइंड ऑफ म्यूजिक होगा ये वाला गाना तारा रमपम मूवी से लिया गया सो रोमांटिक सो कूल तो ये गाना आपके नाम करते हैं हम. चलिए जरा शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ें सुनते हैं

आप लोगों के मनोरंजन का ये जो सिलसिला होता है बड़ा अजब सा सिलसिला होता है. म्यूज़िक हमारे जीवन को बहुत ही रंगी बनाती है. म्यूज़िक डे इस संडे को मनाया जा रहा है और आज तो कई इंस्टीट्यूशंस में स्कूल्स में म्यूज़िक डे मनाया गया. सो ये म्यूज़िक जो होता है हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है. इस म्यूज़िक को आप ज़रूर ज़रूर संजो के रखिएगा.

प्यारे प्यारे गाने, दिलचस्प दिलचस्प म्यूजिक। तो चलिए जरा एक खूबसूरत सी गजल के बारे में सुनते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी गजल लिखने वाले ने कुछ लिखा है कि उनके दिल के की गहराई में डुबा जा रहा है। चलिए जरा इस गाने में सुनते हैं उस गजल के बारे में। ये है शिकारी मूवी का गाना, कुमार सानू की आवाज़।

0: Continuous music. RM3.
1: चलिए जरा हम वो गजल सुनते हैं जो पंकज उदास ने गाया है, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा मूवी की ये गजल है। चलिए जरा हम सुनते हैं इसको और एक जमाना याद करते हैं, क्योंकि ये गजल जैसे ही चलने वाली है आप गुनगुनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आप उन दिनों भी गुनगुनाते थे, आप भी गुनगुन आज भी गुनगुनाए बगैर रह ही नहीं पाएंगे।

प्यार कोई खेल नहीं मूवी का ये गाना हम आपके नाम करते हैं और नाम करते हुए यही उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ रहेंगे, आप इस म्यूजिक के सिलसिले में घुल जाएंगे, घुलकर इस वक्त का फ़ायदा उठाएंगे, इस गाने का फ़ायदा उठाएंगे। और वैसे भी जो गाने सुनकर आप रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स करने का अलग सा मज़ा आ जाता है।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: खुशी खुशी साथ दीजिएगा, खुशी खुशी हम भी साथ दे रहे हैं और साथ जो आपको मिलेगा तो प्यार मोहब्बत की बातों का ये नज़ारा भी नज़र आएगा। कुमार सानू की आवाज़ है, आप सुनिएगा ये गाना और इस गाने को ज़रा आप उस ज़माने से जोड़ लीजिएगा जिस ज़माने में ये गाना इतना मशहूर हुआ था। प्यार हुआ बदनाम मूवी का ये गाना है, चलिए गुनगुनाते हैं साथ मिलके।

सपने मूवी का ये गाना है। सपने मूवी के गाने के बाद समाप्त होगा हमारा दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। आप लोगों का साथ मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का मनोरंजन हुआ होगा बड़ी प्रकार से उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ ही प्रोग्राम में आवर थोड़ी देर में समाप्त करेंगे और आपके लिए पेश करेंगे हम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हम रेडियो मॉर्शस से पेश करेंगे और रेडियो मनोरंजन पर भी प्रसारित किया जाएगा। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में फिर से।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का में तो है स्वागत करते हैं जान नमस्ते अभी 10:11 ठुलवा बल्कि 12 मिनट हो गल और ये हमने के कार्यक्रम अभी शुरू हुआ था भोजपुरी तड़का अब आज के हमने के साल 2026 साल 2027 के बजट के सीधा प्रसारण हुआ था हल ई खातिर हमने के कार्यक्रम में थोड़ा बहुत आगा पीछा हो गल बा और ये हमने के कार्यक्रम तनिसन देरी से शुरू हुआ था तो चला अभी से 11 बजे लेक तो हर साथ तर रहबे करी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर खातिर हमने प्रस्तुत करते हैं जा पहिल का गाना संजय सिगुलाम जी के गावल गाना है

चला मीठा मीठा बोले कि जो ना सलाह दे वधवन स्वीटी जी के आवाज़ में सुनी जाई और ये मिठास पर जरा ध्यान दे रहा जा विदुला जी सुने वधवानी गाना मोहताबाद से ये गाना विदुला जी निमिषा खातिर और प्रिया खातिर बजवाओ वधवन

यह अभिदानंद बीजन जी के गावल गाना कैसे बनी चटनियाँ कैसे बनी इमली बिना चटनी कैसे बनी चलाई गाना हमने सुने जा विश्वानी दुमन जी के पसीन पर वाकवा से मंगले हवन विश्वानी जी गाना अपन बहन इंदिरा और शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी और गीता गजाधर जी खातिर

देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या?

गीतवा जन सुना था जाए कर फरमाइश कर ले हवन फ्लिक ऑफ फ्लॉक से अनीता जी और ये गाना हमने के पूरा टीम के नाम कर ले हवन बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी और ये गाना तो हर पूरा परिवार सब संगतिया लोग के नाम

और अब चला सुनी जा हमने गिरीश रूपचंद जी के गावल सुंदर परी गाना है और सुंदर परी गाना गलगत साल हमने के बेस्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिस्ट में रहा है।

हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में चले गुरु माटी गाना और सुनी जा हमने प्रकाश दुखित से और चला सुने जाई गाना हमने मालिनी जी के पसंद पर मालिनी जी के नाम करे थे जाई गाना सह चिले ऐसे।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का तो लगाई दे हैं जा, चला तड़का लगाई जा अभरी को हमने लाज कमल चिंतामणि जी के गावल गाना संगे चला ही गाना हमने तो लगे सुनवावत हैं जा अंतिम है और ये अंतिम गाना के संगे संगे हमने के मुलाकात भी समाप्त हो जाए। सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम 11 बजे से 12 बजे लेक

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। सारे म्यूजिक लवर्स का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में, इस एक घंटे के सफर में। बस हमारा हम सफर बने रहे ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।

पुरानी फिल्मों के गीत, पुरानी यादें और वही पुराना एहसास। चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ पे आपकी खूबसूरत यादों के साथ साथ आपकी मुस्कुराहट भी वापस लेके आएंगे हम। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर उन तमाम सुनने वालों के नाम जो गिनिशा का साथ बड़े शिद्दत से दे रहे हैं सुनहरे पल में।

की रात को और भी खास बनाइए उन गीतों के साथ जो कभी आपके होंठों की मुस्कान हुआ करते थे। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है। वैसे जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं ना तो दिल अपने आप मुस्कराने सा लग जाता है और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। तो साथ यूं ही निभाते रहे, अगला गाना आपके नाम।

साथ रहिए और गीतों का लुफ्त उठाइए। दोस्तों, यादों का सफर शुरू हो चुका है और उन मधुर गीतों के साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं, ये है सुनहरे पर रेडियो मॉरिशस पर। हर उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और मुस्कुराते मुस्कुराते गुनगुना रहे हो और अपने उन खास दिनों को फिर से दोबारा जी रहे हो इन खूबसूरत गीतों के जरिए।

हैं सुनहरे पल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। चलिए जी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए वो जमाना जब गीतों में सच्चा प्यार, दोस्ती और जज्बात हुआ करते थे। बिल्कुल आज हम सजाएंगे गीतों की एक ऐसी महफिल जहां हर सुर एक नई याद जगाएगा। ये है आपका सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, तो आप बैठ के आनंद ले लीजिए।

पुरानी कैसेट, पुराना रेडियो और पुराने गीत, याद आ गया ना वो जमाना, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो चलिए फिर से जीते हैं वो लम्हे सुनहरे पल के साथ, बॉलीवुड के अमर गीत और उनकी मिठास लेकर गिनेशा हाजिर हैं। बिल्कुल, जिंदगी की भागदौड़ में हमें पता है कि इतना वक्त नहीं होता है हम लोगों के पास कि हम जाके चुन चुन कर फिर से एक एक नगमे को दोबारा जी सके, साथ में सुन सके और मुस्कुरा सके। इसीलिए हम ये काम आप लोगों के लिए करते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, रोज रात को रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लेकर आते हैं आपके मनपसंद गीत।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ NBC रेडियो, हर पल आपके साथ।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: MBC Radio, your music companion.